सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। सुबह के 7:01 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए आपको देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। अक्षय निधि कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 7:10 से। भक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 से। वतन का राग ये कार्यक्रम आप सुनते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे। आज का ये कार्यक्रम समर्पित करेंगे सिराजुद्दौला की शहादत पर। बरसात में कैसे बने इको दोस्त, बाल सभा कार्यक्रम में होगा आज का ये विषय। प्रसारण समय 8:30। कारगिल युद्ध का भाग एक आज प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व में। प्रसारण समय होगा सुबह 9 बजे। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे शाम 7 बजे। 9:30 पर विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विश्व खेल पत्रकार दिवस पर साक्षात्कार, विशेषज्ञ होंगे प्रशांत सेंगर। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें आज का विषय होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आजाद हिंद, ये कार्यक्रम आज हम समर्पित करेंगे असित भट्टाचार्य की शहादत पर। श्रोताओं परिक्रमा कार्यक्रम आज आप सुनेंगे दिन में 11 बजे, जिसमें हम आपको बताएंगे भोपाल शहर में क्या कुछ हुआ कल और क्या कुछ होने वाला है आने वाले कल में। जी हाँ, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी परिक्रमा कार्यक्रम में आप सुनते हैं। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, इसका 87 भाग आज आप सुनने वाले हैं। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: हमारे अंदर का साहस वो संकल्प है जिससे हम अनदेखे संकटों का सामना करते हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। हम तो बस ये सोचते हैं कि सामने वाले जानते हैं, पर वे लगभग हमेशा ही गलत होते हैं, क्योंकि अनुमान खतरनाक भी हो सकता है। कल्पना करना एक बहुत अच्छी सेविका है, लेकिन वो एक बुरी मालकिन भी हो सकती है। कल्पना सदा अच्छी नहीं, बुरी भी हो सकती है। कल्पना सोच समझ कर करें। कल्पना को हकीकत में परिवर्तित करने के लिए सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं।
1: जीवन सौरभ।
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 161 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: किमु श्रेष्ठः किम यविष्ठो न आजगन किमीयते दूत्यम कद्य दूचिम न निंदिम चमसम यो महाकुलोग्ने भ्रातर द्रुण इद्भूति मूदिम। हमारे पास ये कौन आए हैं, ये हमसे श्रेष्ठ हैं या कनिष्ठ? ये भ्राता अग्निदेव हम इस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हव्यान्न को दूषित न करें, आप कृपया इसके उपयोग का उपाय बतलाएं। एकम चमसम चतुरह कृणोतन तद्वो देवा अब्रुवन्तद्व आगमम सौधन्वना यद्येवा करिष्यथ साकं देवैर यज्ञियासो भविष्यथ। अग्निदेव ने कहा, हे सुधन्वा पुत्रो, आप इस अन्न को चार भागों में विभक्त करें, ऐसा देव शक्तियों का आपके लिए निर्देश है। इसी निवेदन के लिए हम आपके समीप आए हैं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप भी देवताओं के परम पद के अधिकारी होंगे। अग्निम दूतम प्रति यदब्रवीत नाश्वः कर्त्वो रथ उतेह कर्त्वः धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वातानि भ्रातरनु वः कृत्व वेमसि। हे ऋभुदेवो, आपने हव्यवाहक अग्निदेव से जो निवेदन किया है कि अश्वों गौओं एवं रथों को उत्तम बनाएं, दोनों वृद्ध माता पिता को तरुण बनाएं, इन सभी कर्मों का निर्वाह करने वाले हे बंधु अग्निदेव, हम आपका अनुगमन करते हैं। चक्रिवांस ऋभवस्तद पृच्छत क्वेद भूद्यः स्य दूतो न आजगन यदा वाख्यच्च मसान चतुरः कृतानादित्वष्टा ग्नास्वंतर्न्या नजे। हे ऋभुदेवो, कार्य करने के बाद आपने पूछा कि जो दूत रूप में हमारे समीप आए हैं वे कहाँ चले गए। जब त्वष्टा ने चार भागों में विभक्त अन्न उन अग्निदेव को अर्पित किया, तभी वे दूत स्त्रियां मंत्र प्रकट करने वाली वाणियां में समाहित हो गए। हना मैनां इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपान मनिन्दिषुः अन्या नामानि कृणवते सुते सचाम अन्यै रेनान कन्या नामभिः स्परत। त्वष्टा देव ने निर्देशित किया कि जो देवताओं के लिए उपयुक्त हविष्यान्नों की निंदा करते हैं उनका संहार करें। परस्पर सहयोग से अभिषुत सोम को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। तब त्वष्टा की कन्या अर्थात वाणी भी उन्हीं नामों से संबोधित करती हैं। इंद्रो हरि युयुजे अश्विना रथम बृहस्पतिर विश्वरूपा मुपाजत ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाम अगच्छत स्वपसो यज्ञियम भागमैतन। इंद्रदेव अपने अश्वों को जोत कर अश्विनी कुमार अपने रथ को तैयार करके यज्ञ में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। बृहस्पति देव ने भी विभिन्न स्तोत्र रूप वाणियों को प्रारंभ कर दिया है। अतएव ऋभु विभवा और वाज भी देवताओं के समीप गए और यज्ञ भाग प्राप्त किया। निश्चर्मणो गाम ऋणीत धीतिभिर या जरंता युवशा तारकीणो तन सौधन वना अश्वादश्व मतक्षत युक्त्वा रथमुप देवाम अयातन। हे सुधन्वा पुत्रो, आपके श्रेष्ठ प्रयासों से चर्म रहित गौ को पुनर्जीवन मिला। अतिवृद्ध माता पिता को आपने तरुण बनाया। एक घोड़े से दूसरे घोड़े को उत्पन्न करके आपने अपने रथ में जोत कर देवों के समीप उपस्थित हुए।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 161 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: MHz पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

हे प्रभु, मैं आपका हूँ, जो मेरे लिए सही हो वो रास्ता दिखाइए। बल, बुद्धि, विद्या दीजिए कि मैं अपना कर्म कर सकूं। यदि कोई संकट हो तो कृपया उस संकट को हर लीजिए।

हे प्रभु, मेरा मन भटकता है, आप ही सच्चा कर दो। प्रार्थना सुन लो या ना सुनो, किंतु मेरा साथ ना छोड़ना।

भक्ति मन को भटकाव से हटाकर एक जगह टिकाती है। जब हमारा ध्यान किसी बड़े शांत और प्रेम से भरे स्वरूप पर लगता है तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है, और इसलिए भक्ति सुखदायक है।

और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। और अब सुबह के 8 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था और 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश रजवाड़ों को अंग्रेजों ने छल से कब्जे में ले लिया था। सिराजुद्दौला बहुत ही अच्छा शासक था और बहुत संस्कारवान भी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की इजाजत कभी नहीं दी। इसके लिए अंग्रेजों ने कई बार बंगाल पर हमला किया लेकिन हमेशा हारते रहे। अंग्रेजों ने कभी भी युद्ध करके भारत में किसी राज्य को नहीं जीता था। वे हमेशा छल और साजिश से काम करते थे। उस समय का जो बंगाल था वो बहुत बड़ा राज्य था। उसमें शामिल था आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर के सातों राज्य और बर्मा। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच भयंकर लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमेशा ये सवाल रहा कि आखिर सिराजुद्दौला जैसा शासक हार कैसे गया, और ये सवाल भी कि आखिर अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास कितने। भारत में पलासी के युद्ध के ऊपर जितनी भी किताबें हैं उनमें से किसी में भी इस संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। इस युद्ध की सारी जानकारी उपलब्ध है लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसमें उपलब्ध दस्तावेजों के हिसाब से अंग्रेजों के पास पलासी के युद्ध के समय मात्र 350 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। किसी के भी लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि एक तरफ जहां 350 सिपाही हों और दूसरी तरफ 18,000 सिपाही, तो युद्ध कौन जीतेगा। लेकिन 350 सिपाही वाले अंग्रेज जीत गए और 18,000 सिपाही वाला सिराजुद्दौला हार गया। अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन में ये कहा जाता था कि अंग्रेजों के 5 सिपाही भारत के 1 सिपाही के बराबर थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने मजबूत 18,000 सिपाही उन कमजोर 350 सिपाहियों से हार कैसे गए।

अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने का युद्ध हुआ तो एक घंटा भी नहीं लगेगा और अंग्रेज युद्ध हार जाएंगे, और क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात बताई भी थी। इन दस्तावेजों में क्लाइव की दो चिट्ठियां हैं जिसमें उसने ये प्रार्थना की थी कि अगर पलासी का युद्ध जीतना है तो मुझे और सिपाही दिए जाएं। उसके जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से ये चिट्ठी भेजी गई कि हम अभी नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और पलासी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये युद्ध है, तुम्हें 350 सिपाहियों से ही काम चलाना होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने तब अपने दो जासूस लगाए और उनसे कहा कि पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की फौज में कोई आदमी है जिसे हम रिश्वत दें, लालच दें, और रिश्वत के लालच में अपने देश से वो गद्दारी कर सके। उसके जासूसों ने पता लगाकर बताया कि उसकी सेना में एक आदमी ऐसा है जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है, और अगर आप उसे कुर्सी का लालच देंगे तो बंगाल के 7 पुश्तों को भी बेच देगा, और वो आदमी था मीर जाफर। मीर जाफर ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। ये बातें रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफर को एक पत्र लिखा। ये पत्र भी उस दस्तावेज में उपलब्ध है। उसने उस पत्र में दो ही बातें लिखी, पहली ये कि अगर तुम हमारे साथ दोस्ती करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करो तो हम युद्ध जीतने के बाद तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, और दूसरी बात ये कि जब तुम बंगाल के नवाब हो जाओगे तो बंगाल की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और उस संपत्ति में से 5% हमें दे देना। मीर जाफर तो दिन रात यही सपना देखा करता था। उसने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को एक पत्र लिखा कि मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। क्लाइव ने इस संबंध में अंतिम पत्र लिखा और कहा, तुमको बस इतना करना है कि जिस दिन युद्ध शुरू हो उस दिन अपने 18,000 सिपाहियों से कहना कि वे मेरे सामने समर्पण कर दें। मीर जाफर ने कहा कि ये हो जाएगा, लेकिन आप अपनी जबान पर कायम रहिएगा। क्लाइव का जवाब था कि हम बिल्कुल अपनी जबान पर कायम रहेंगे। युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को, और बंगाल के 18,000 सिपाहियों ने सेनापति मीर जाफर के कहने पर 40 मिनट के अंदर समर्पण कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव के 350 सिपाहियों ने बंगाल के 18,000 सिपाहियों को बंदी बना लिया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में बंद कर दिया। 10 दिनों तक सबको भूखा प्यासा रखा गया और 11वें दिन सबकी हत्या कर दी गई। हत्या करवाने में मीर जाफर क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद क्लाइव ने मीर जाफर के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या करवाई। उस समय मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी।

वादे के अनुसार क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बाद में क्लाइव ने अपने हाथों से मीर जाफर को छुरा घोंप कर मार डाला। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को जमकर लूटा और 900 पानी के जहाज भरकर सोना चांदी हीरा जवाहरात लंदन ले गया। वहां की संसद में जब क्लाइव गया तो वहां के प्रधानमंत्री ने उससे पूछा कि क्या तुम सारे भारत को लूट कर लाए हो, तो क्लाइव ने कहा कि नहीं, मैंने तो भारत के एक शहर कलकत्ता को लूटा है। फिर उससे पूछा गया कि ये सारा सामान कितना होगा, तो क्लाइव ने कहा मैंने इसकी गणना तो नहीं की लेकिन करीब 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का होगा ये सब। उस समय के स्टर्लिंग पाउंड की कीमत में आज 300 गुना कमी आई है और आज के हिसाब से अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो शायद हमारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ऐसा करने वाला अकेला नहीं था, ऐसे 84 अधिकारी भारत आए थे और सबने भारत को बेहिसाब लूटा। काश पलासी के युद्ध में मीर जाफर की भूमिका ये न रही होती कि अंग्रेजों आओ तुम्हारा स्वागत है इस देश में, तुम्हें जितना लूटना है लूटो, बस मुझे कुछ पैसा दे दो और एक कुर्सी दे दो।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, लेकर आई हूं आपके लिए बाल सभा कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में कैसे बने इको दोस्त। तो सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज बच्चों हम जो बात करने वाले हैं ना, वो विषय सुनकर आप और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये विषय हम सभी से जुड़ा है, आपसे, मुझसे, आपके घर से, मेरे घर से, आपके स्कूल से, हमारे शहर से, हमारे गांव से, पशु पक्षी, पेड़, नदियां, बादल, सब इससे जुड़े हैं, है ना? क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये जानना जरूरी है कि आज हम कैसे अपनी बात को आपके सामने रखें। बच्चों आज का विषय मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बरसात आने वाली है तो कैसे बने इको दोस्त। अब जब कुछ ही दिनों में, या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले से ही हमारे घर के दरवाजे पर बारिश की बूंदों ने दस्तक दे दी है। गर्मी की तपती दोपहर के बाद अब छम छम छम बारिश की आवाज़ आने लग गई है। और जब ये धरती पर बूंदें गिरती हैं तो कितनी अच्छी सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है ना। हम सब लोग बाहर निकलते हैं, कई बच्चे छाता लेकर जाते तो हैं स्कूल लेकिन फेंक देते हैं या छुपा देते हैं, गीले होकर आ जाते हैं और फिर जहाँ भी पानी भरा मिलता है वहाँ छप छप ज़रूर करते हैं, है ना, पैरों से, जूते भले ही गीले हो जाएं, भले ही मम्मी ने इस बार नए शूज़ लिए हो, लेकिन क्या हुआ, बरसात का मौसम है तो एक बार तो पानी जहाँ भरा हुआ है जिस गड्ढे में वहाँ पर छपाक करना ही है, है ना। क्योंकि ये सब हमको अच्छा लगता है। सच बात तो ये है कि मौसम जब जब बदलता है तब तब, कभी हमें अच्छा लगता है और कभी हमें पुराना मौसम इतना अच्छा लगता था कि नया वाला जो चेंज आ रहा है ना वो अच्छा नहीं लगता। गर्मी सबको बहुत पसंद होती है क्योंकि उसमें छुट्टियां होती हैं, उसमें बहुत सारे आइसक्रीम खाने को मिलती है, हमने बोला था ना बर्फ़ का गोला कई बच्चे खाते हैं। लेकिन जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना तब एक थकान हम सबको घेर लेती, क्योंकि ना कहीं खेलने निकल पाते हैं, लू चल रही है, जहाँ निकल रहे हैं गर्मी के गर्म गर्म हवाओं के ऐसा लगते हैं गाल पे थपेड़े से पड़ रहे हैं, है ना। अभी थोड़े ही दिन पहले हम शाम को निकल रहे थे तो लग रहा था नहीं नहीं मत निकलो, रात में भी ऐसा लग रहा था जैसे दिन है, क्योंकि बच्चों गर्मी का बहुत असर इस बीच हमको देखने के लिए मिला। और जब इतनी गर्मी के बाद बारिश की बूंदें गिरी ना तो ऐसा लगा जैसे एक बारिश में सारी गर्मी उड़नचू हो गई, भाग गई, डर गई बूंदों से, है ना। इसीलिए तो मुझे बारिश बहुत पसंद है। कहीं भी देखिए आप, दूर दूर तक नज़र डालिए, धरती पर आपको हर जगह ऐसा लगेगा जैसे पेड़ों का रंग कुछ और सुंदर हो गया है, पौधे जैसे पहले से अधिक खिलखिला रहे हैं, जैसे मिट्टी खुद भी नाचने के लिए इधर से उधर कूदा फादी कर रही है ना। पानी के साथ छपाक जैसे होता है तो थोड़ी सी मिट्टी कहीं किसी के कपड़े पे गुड़ जाती है, कहीं हमारे पीछे जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो छींटे पड़ जाते हैं। तो कई बार इसको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खुद ब खुद नाचना चाह रही है और खुद ब खुद वो पेड़ पौधे सब हिल के हमारा स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन हम क्या करें, प्रकृति ने तो अपना सुंदर रूप दिखा दिया है, लेकिन हम अपने सुंदर नागरिक होने का परिचय कैसे दें? तो बच्चों, बात बहुत सीधी और बहुत सरल है कि हम इको दोस्त बने और प्रकृति को, धरती को अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक, अच्छा दोस्त होने का परिचय दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इको दोस्त होता कौन है? तो बच्चों, जैसे हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है जो हमारी मदद करता है, हमारा ध्यान रखता है, वैसे ही जो व्यक्ति प्रकृति का ध्यान रखता है, पेड़ लगाता है, पानी बचाता है, जानवरों की रक्षा करता है, पक्षियों से प्रेम करता है, वो इको दोस्त कहलाता है। और इको दोस्त बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम करके भी हम इको दोस्त बन सकते हैं। अब बताऊं आपको वो छोटे छोटे से काम कौन से हैं। जैसे बच्चों, पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाना।

है कि बारिश के मौसम में अच्छे फलते फूलते हैं, उनकी जगह बदलती है, उनका घर बदलता है, तब भी वो बच जाते हैं, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस मौसम में हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब क्योंकि इन दोनों का आपस में संबंध है, तो क्या संबंध है? पेड़ धरती के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में ये मदद करते हैं, और तो और ये हरियाली जो है ना, वो बादलों को भी आकर्षित करती है, और जब बादलों को आकर्षण मिलता है तो आपको तो पता ही है, बस बारिश के आसार बढ़ते हैं। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं, आप कहीं से भी गुजरिए, जैसे जब हम भोपाल में ही कोलार की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वर्ण जयंती पार्क जैसे ही आने को होता है तो बच्चों वहाँ का टेम्परेचर कुछ हमें कम लगने लगता है, या वहाँ पे गर्मी हमें कम लगने लगती है, और जब उस पार्क के हम अंदर चले जाते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी और कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं बच्चों। कभी आप जाइए और देखिए, वहाँ गर्मी के मौसम में भी आप अंदर जाकर बैठोगे तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी। पेड़ सीधे सूरज से आपको मिलने से रोकते हैं, मतलब क्या है, दरवाजे होते हैं ये, है ना, अच्छे दरवाजे होते हैं, धूप को सीधे आपके पास नहीं आने देते हैं, और तो और ऑक्सीजन आपको जो मिलती है, जो आपकी प्राणवायु है, उसको भी ये साफ करते हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छी बताऊँ, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ चिड़िया की चूं चूं ज्यादा क्यों सुनाई आती है, कभी सोचा है? क्योंकि चिड़िया का घर होता है पेड़। और आप मान लीजिए कि उस पे फल लगे हुए हैं तो क्या ही कहने, जैसे इस वक्त खूब आम के पेड़ आपने देखे होंगे ना, जहाँ जहाँ आम के पेड़ लगे होंगे वहाँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई आम टपकेगा तब आप खाओगे, या फिर आप खुद तोड़ोगे। खुद तोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको साझा आम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो आम पेड़ पर लगे लगे पक गया तो पहले आप नहीं खाएंगे, बल्कि पहले कोई गिलहरी खाएगी, फिर कोई चिड़िया खाएगी, और वो फल सबके पास से होता हुआ एक दिन अंदर से खाली होता हुआ नीचे टपक जाएगा, तब आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पक्षियों के लिए खाना पीना होता है, पक्षियों के लिए छांव होती है, और पक्षियों के लिए उस स्थान पे थोड़ी नमी भी होती है, तो वह अच्छे से वहाँ रह सकते हैं, है ना। इसलिए पेड़ों का धरती से बड़ा गहरा संबंध है। अब बच्चों, अगर पेड़ कम हुए तो गर्मी बढ़ेगी, जल संकट बढ़ेगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी, और पक्षियों की संख्या भी कम होगी। इसलिए बरसात का मौसम पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब हमारे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आज मनीषा दीदी इतनी सारी बातें कर रही हैं, लेकिन ये तो बता ही नहीं रही है कि हम लोग करें क्या। तो बच्चों, आप क्या क्या कर सकते हैं वो अब बताती हूँ। आपका पहला कदम ये हो कि आप कभी भी कोई भी अच्छे दिन पर एक छोटा सा पौधा लगाइए, जैसे आपकी बर्थडे है, जैसे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, जैसे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपने क्लास में टॉप किया, या आपको कोई उम्मीद है, आप सोच रहे हैं कि इस बार कम नंबर आए हैं, अगले साल मैं इतने नंबर लाऊंगा, तो आप फिर ऐसा करिए कि एक पौधा लगाइए, है ना, और सोचिए कि जब पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही मेरी हाइट भी बढ़ेगी, वैसे ही मैं भी बढ़ूंगा, मैं भी अच्छी पढ़ाई करूंगा, तो आपको मज़ा आने लगेगा। और सच में बच्चों, मैंने आपको एक बार एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि हमारे कॉलोनी के पार्क में एक बच्चे ने आम खाया और गुठली वहाँ पर साफ करके, बिल्कुल साफ करके उसने मिट्टी में गाड़ दी। थोड़े दिन बाद ना उसमें से जब अंकुर फूटे, फिर छोटे छोटे से छोटे से वो बढ़ना शुरू हुआ, और मैं सच बताऊं आपको, अब तो ऐसा हो गया है कि वो पेड़ उस बच्चे के घुटने तक आ गया है। तो वो जब उस पेड़ के पास आती है ना, तब उसको इतना प्यार करती है, और हर बार हर किसी को ये बताती है, आंटी ये मैंने लगाया था। कभी अपने भाई के साथ आएगी ना तो हमेशा कहेगी, देख रहे हो वो पेड़ मैंने लगाया था। मतलब उसको इतना इस चीज़ की खुशी है, इस चीज़ का इतना गर्व है कि ये पौधा जो बढ़ रहा है वो दरअसल उसके कारण है। उसने मिट्टी में एक गुठली को सिर्फ मिट्टी से दबा दिया था। आप सोचिए, कुछ नहीं किया था, उसने आम खाया था, गुठली को साफ किया था, और
कॉलोनी के पार्क में मिट्टी

0: हाँ उसको ज्यादा दिखी, उसने थोड़ी सी मिट्टी को खोदा, उसके नीचे उस गुठली को दबा दिया। अब वो पौधा किस्मत से अंकुरित हो गया, अब वो जो गुठली थी वो अंकुरित हो गई। कितनी अच्छी बात है ना। ये आपके आत्मविश्वास में भी बहुत सहायक होती है बच्चों। अब आप आज संकल्प ले सकते हैं कि आप एक पौधा इस बारिश में जरूर लगाएंगे। मैं तो कहती हूँ एक क्यों, बहुत सारे पौधे लगाइएगा। अब आप पूछेंगे कौन सा पौधा लगाएं दीदी, तो मैं बता देती हूँ कोई भी लगा लीजिए। नीम, आम, अमरूद, जामुन, गुलमोहर, तुलसी, गुड़हल, मोगरा, कितने अनगिनत पौधे हैं बच्चों, अनगिनत। कुछ फूल वाले, कुछ फल वाले, कुछ हरियाली देने वाले, ऐसे ही घने घने वृक्ष जो आपकी प्राणवायु को बहुत शुद्ध करते हैं। तो देखना ये है कि आप इस बार कौन सा पौधा लगाते हैं, कौन सा पौधा चुनते हैं। और जैसे ही आप पौधे को लगा दें, बस उसे अपना दोस्त बना लीजिए, रोज पानी दीजिए, रोज बातें कीजिए, रोज आप चाहें तो उसकी ऊंचाई भी नाप सकते हैं। और हाँ, कभी कभी मम्मा को ले जाकर, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन होगा, तो उसकी फोटो खींचिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए किस पौधे को आपने लगाया था, है ना। और अपने नानी नाना को, दादी दादा को उसकी फोटो भेज सकते हैं, अगर वो पास में है तो वैसे ही दिखा सकते हैं। और उस पर आप एक अच्छा सा पत्र लिख सकते हैं, एक पत्र पौधे के नाम, है ना। कैसे, अब आप सोचो। तो आप लिखोगे प्यारे नीम, या प्यारे आम, या प्यारे अमरूद, मैंने तुम्हें लगाया था, मैंने इस जगह पे लगाया था, मैंने तुम्हें इस तारीख को लगाया था, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, या तुम्हें छोटी छोटी सी पत्तियां आने लगी हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक पौधे के बहाने आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी, और आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा और सच्चा दोस्त बनाया है। और अनजाने में आप किसके दोस्त बन गए हैं, धरती के, है ना। तो आप ये छोटे छोटे से काम किया करिए। बहुत से बच्चे इस वक्त सोच रहे होंगे कि दीदी इतनी सारी चीजें बता रही हैं, लेकिन हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, तो क्या करें, हम कहाँ लगाएं। तो कोई बात नहीं है बच्चों, पुराने सामान तो होंगे, उनका इस्तेमाल कीजिए। पुरानी कोई बाल्टी होगी, कोई मटका आपके आसपास होगा, कोई प्लास्टिक की बॉटल होगी, कोई डिब्बा होगा, पुराना टायर होगा, ऐसे बहुत टूटा हुआ गमला होगा, इन सब को आप सुंदर रंगों से सजाकर गमले की तरह उपयोग कर सकते हैं। और इसे ही कहते हैं कि कचरे से आप कोई उपयोगी वस्तु बना सकते हैं, और वो भी ऐसी जिससे पर्यावरण भी बचेगा और घर भी सुंदर लगेगा। बच्चे छोटे छोटे काम करके ना आप अपना घर का मिनी गार्डन भी बना सकते हैं। आप जैसे कि मैंने कहा, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे पास तो जगह नहीं है, तो आप अपने घर में, बालकनी में, छत पे, खिड़की के पास थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाइए। अगर और जगह कम है तो मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है बच्चों, वो होते हैं लताओं वाले पौधे, है ना, जिसमें बहुत मोटा तना नहीं होता, बहुत जगह नहीं घेरते, लेकिन उसकी लताएं दूर दूर तक फैल जाती हैं, बेल जिसे कहते हैं ना, जैसे चूही की बेल बहुत सुंदर होती है बच्चों, और मधुमालती की बेल बहुत सुंदर होती है, एक टिकोमा की बेल बहुत खूबसूरत होती है। टिकोमा में सर्दियों में बहुत अच्छे नारंगी फूल आते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे झूमर हो। ऐसे ही बच्चों मधुमालती में ना बहुत सारे इकट्ठे दोस्त जैसे इकट्ठे रहते हैं, वैसे ही फूल आते हैं। तो ये सब वो पौधे मैं आपको बता रही हूँ जहाँ बहुत सारी जगह ना हो, लेकिन आपको अगर उस जगह हरियाली करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक आइडिया और बच्चों, आप अपनी कॉलोनी का या मोहल्ले का ग्रीन क्लब भी बना सकते हो, है ना, क्योंकि आपको अकेले काम करना तो अच्छा लगता नहीं है, और ये बात मुझे पता है कि बच्चों को जो काम करना है वो मिलके करना है, और जब आप मिलके काम करते हो ना तो आपकी बात सुनी जाती है। तो आप अपने कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, है ना, उसका नाम आप ग्रीन क्लब रखिए, या कुछ भी, हरित क्लब, या जो आपका मन आए, या धरती मित्र मंडली, कुछ भी अच्छा सा नाम रखिए। और इस क्लब में ना 5-7 बच्चों को ज़रूर जोड़िए, और फिर आप 5-7 बच्चे मिलकर महीने में कोई एक पौधा लगाइए, या सप्ताह में एक दिन उस जगह की सफाई पर निकलिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, पौधों की देखभाल करिए। तब आपको समझ में आएगा बच्चों कि सच में कुछ ऐसे काम हैं जो करके आपको बहुत बहुत बहुत संतुष्टि मिलेगी, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कॉलोनी में खाली जगह पड़ी है, और जब वो जगह खाली होती है तो धीरे धीरे जो लोगों की प्रैक्टिस है ना बच्चों, वो क्या है कि जैसे ही जगह खाली दिखती है, या तो उस जगह पर कोई कबाड़े का सामान रख देते हैं लोग बाग, या क्या करते हैं कि उस जगह पे हो सकता है कोई कचरा ही फेंक जाए, फिर वो खाली जगह कचरे वाली जगह पर बदल जाती है, या उस जगह पे कोई गाड़ी पार्क करने लगता है, तो हमें क्या करना है, हमें उस जगह को सुंदर बनाना है। वो जो कॉलोनी का हम या मोहल्ले का हम ग्रीन क्लब बता रहे हैं ना आपको बच्चों, उस जगह पे हमने क्या करना है, हमने उस जगह को सुंदर सा पेंट करना है सारे बच्चे मिलके, क्योंकि ग्रीन क्लब में तो कई बच्चे होंगे, तो आपको पहले पेंट करना है। फिर आपके घर में जितना पुराना सामान है, जैसे बाल्टी, मटका, प्लास्टिक का जो आपकी चीज़ें हैं, उन सबको ले आइए और फिर आप देखिए कि उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हो आप लोग, है ना, कैसे आप रिसाइकिल कर सकते हो चीज़ों को। आप कॉलोनी के मम्मी पापा और जो आपके दोस्तों के होंगे और जो आंटी अंकल होंगे, उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए। एक कॉलोनी मुझे याद है, एक बार मैं दिल्ली गई थी बच्चों, आपको वो बात बताते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो कॉलोनी धीरे धीरे ज़ीरो वेस्ट बन गई है। मतलब उस कॉलोनी से कचरा बाहर जाता ही नहीं है, यहीं तक नहीं रुके हैं वो लोग। उस कॉलोनी में जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत की थी ऐसे ही छोटे छोटे कामों से, कि वो संडे को मिलते थे और फिर एक जगह बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, वो बस एक ही बात कहते थे, गीला कचरा एक जगह डालिए, सूखा कचरा एक जगह डालिए। ये एक मैसेज कॉलोनी के हर घर में देते देते देते देते आज वो कॉलोनी इतनी आगे निकल गई कि जब पर्यावरण दिवस था तब उन लोगों को इनाम मिला, और उसमें जो राशि मिली वो उन लोगों ने पता है किसे दी, उस कॉलोनी में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को। कितनी अच्छी बात है ना कि एक छोटी सी शुरुआत, छोटी सी, बहुत छोटी सी, कहाँ तक पहुँच गई। अब ये स्थिति हो गई है कि अभी तक तो गीला कचरा सूखे कचरे की बात थी, अभी वो ई वेस्ट को बिल्कुल अलग करते हैं। और बच्चों, वो लोग कॉलोनी में जहाँ जगह दिखती है, जहाँ खाली जगह है, वहाँ पौधा लगा देते हैं। उन्होंने लगभग अपनी कॉलोनी को इतना हरा कर दिया है कि उनको गाड़ियों के लिए किसी शेड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिससे धूप आने से बच सके, क्योंकि उन्होंने वैसे ही अपनी कॉलोनी को बहुत हरा भरा बना दिया है। जहाँ बहुत हरियाली होती है ना बच्चों, वहाँ धूप बहुत तेज़ नहीं लगती है, क्योंकि सूरज को भी ना आपको देखने में, आपको घूरने में ना एक पर्दा जैसा, मैंने बोला था ना दरवाजे होते हैं पेड़, वो दरवाजे जैसा फील होता है, वो एकदम डायरेक्ट आपको नहीं घूर सकता है सूरज। तो आपको क्या है, हरियाली की चादर ज़रूर बनानी है, या आपको ऐसा ज़रूर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अब बच्चे एक बार ये भी कह रहे थे कि दीदी, हम कॉलोनी में जब इतने सारे बच्चे होते तो एक दिन किसी की बर्थडे, एक दिन किसी की बर्थडे, शुरुआत में क्या होता है कि सबको आप एक एक बार तो बहुत अच्छा गिफ्ट दे देते हो, थोड़े दिन बाद आप रियलाइज़ करते हो कि अगर कॉलोनी में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, हर बच्चे की बर्थडे, मतलब एक महीने में अगर दो तीन, मतलब 12 महीने ही होते हैं ना बच्चों, 12 महीने में दो बच्चों की तो कम से कम पड़ेगी, और किसी महीने में तीन भी पड़ जाएगी, तो तीन बच्चों के लिए अगर आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लोगे तो पापा मम्मी की पॉकेट पर भी तो असर आएगा ना। तो देखिए, अगर आपने अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटी सी नर्सरी जैसी बनाई हुई है तो कितना अच्छा होगा कि आप उन्हीं में से कुछ पौधे निकालोगे छोटे छोटे से, अगर आपके किसी के घर से डिस्पोजेबल ग्लास निकलते हैं या कुछ भी ऐसा निकलता है तो उसमें आप उनको लगाओगे और गिफ्ट कर दोगे। तो पहली बात तो आपको महंगा उपहार खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, आप हर बार एक मैसेज दोगे, जब जब किसी को पौधा दोगे तब तब उसके साथ में अनजाने में एक मैसेज भी पहुँचेगा कि ये बच्चे कितने होशियार हैं और कितने समझदार हैं। देखो, ये सबको हरियाली का उपहार देते हैं, है ना, और ये देख के बड़े बड़े लोग भी आपसे सीख लेंगे। और आपको पता है, कई बार बहुत सारे लोग स्मृति में भी पौधा लगाते हैं, है ना, जैसे किसी का कोई प्रियजन गुजर जाता है तो भी वो पौधा लगाते हैं उसके नाम से। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब जब आप उस पौधे को देखते हैं, उस पौधे को बड़ा होता हुआ देखते हैं, वृक्ष बनता हुआ देखते हैं, उसकी छांव में जाकर बैठते हैं, तो आपको याद आता है कि ये बिल्कुल उसी बुजुर्ग की तरह है जो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़ गए, है ना, तो उस वृक्ष का साथ भी आपको आपके बुजुर्गों की याद दिलाता है। लेकिन बात यह है कि क्या पौधा लगाना ही पर्याप्त है? तो मैं कहूँगी नहीं, सिर्फ पौधा लगाना तो पर्याप्त नहीं है बच्चों, क्योंकि उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। एक पौधा लगाना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन उस पौधे को पेड़ बनाना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों, क्योंकि उसे आपको नियमित पानी देना पड़ता है, आपको उसे जानवरों से भी बचाना पड़ता है, ये भी देखना होता है कि आसपास जंगली घास ना आ जाए, ये भी देखना होता है कि कहीं वो पौधा सूख तो नहीं रहा। तो क्या करेंगे इसके लिए, बताइए। वही ग्रीन क्लब, किसी की जिम्मेदारी पानी देने की, किसी की जिम्मेदारी छोटी छोटी लकड़ियों से फेंसिंग बनाने की, किसी की जिम्मेदारी उसको सूखने ना देने की, और किसी की जिम्मेदारी उसकी रख रखाव की। तो बस इसीलिए कहते हैं ना कि अकेले कोई काम नहीं सजता, हमको दो तीन लोगों को तो साथ में लेके चलना होता है। अब हम बात कर रहे हैं ना कि बरसात आने वाली है तो इको दोस्त बने, तो बरसात का क्या क्या खास मूल्य है हमारे पौधों के लिए? तो बच्चों ये बारिश का पानी बहुत कीमती होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें नहाते हैं, धोते हैं, छप छप करते हैं, उचकते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं और फिर इसे बह जाने देते हैं। नहीं, बाल सभा सुनने वाले बच्चे तो समझदार होते हैं ना, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं हम बच्चों? हमें इसे बचाना है। जो घर की छत से पानी बह बह कर चला जा रहा है, पहले तो हम मम्मी पापा से बात करें कि हम वाटर हार्वेस्टिंग की कहीं कोई योजना बना सकते हैं क्या। कॉलोनी में जो आपकी समितियां हैं, जो मोहल्ले की समितियां, उसमें बात करिए। जो आपका ग्रीन क्लब है उसमें जो आप बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाएं, बात करें क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वर्षा के जल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गंभीर जवाब मिलेगा, ज़रूर आपके लोग बात मानेंगे। फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे तरीकों से टंकी में पानी को इकट्ठा कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, और ये ख्याल ज़रूर रखिए कि कैसे भी पानी को व्यर्थ नहीं बहने देना है, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलोनी और मोहल्लों में जो पार्क वाली जगह है उसको बहुत ज़्यादा सीमेंटेड ना बनाया जाए, है ना। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो पानी को धरती के भीतर जाने में मदद करती है बच्चों। उसके बाद ये भी है कि गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में पक्षियों को हमारी सहायता की आवश्यकता होती है ना। तो अपने घर की छत पर, बालकनी में, आंगन में, आप गर्मियों में जैसे पानी रख रहे थे ना, थोड़ा दाना रख रहे थे, अब चूंकि बरसात हो जाएगी पक्षियों को दाना पानी बहुत पानी की तो ज़रूरत नहीं होगी, पर हाँ दाने की तो होगी, तो थोड़ा शेड में आप ध्यान रखें कि दाना गीला ना हो, आकर पक्षी खा सकें, आप उनको देखकर आनंद ले सकें, बस यही है। इसके बाद हमें ये भी देखना है कि पर्यावरण के शत्रु कौन कौन से हैं, है ना। तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम किसका आता है? प्लास्टिक का। आप अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है दुकानों से प्लास्टिक के थैले लेता हुआ आ रहा है, उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है आंटी या अंकल अगली बार घर से कपड़े का थैला लेकर जाइएगा। या फिर वही ग्रीन क्लब अगर आपने बना लिया या बनाने वाले हो तो आप पुराने कपड़े कलेक्ट कर सकते हो, और इस चीज़ के लिए आप सबसे थोड़ी सी हेल्प लेकर या किसी बड़े को ये जिम्मेदारी देकर पुराने कपड़ों से थैले बनवा सकते हो, कॉलोनी और मोहल्ले में बंटवा सकते हो। प्लास्टिक की बोतल का भी कम उपयोग करो। इससे अच्छा होता है कि अगर हम स्टील के बर्तन यूज़ करें, है ना, स्टील का ग्लास यूज़ करें, और तो और आजकल स्कूल के लिए बड़े अच्छे अच्छे टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स आपके स्टील में भी आ रहे हैं, बॉटल्स भी आ रही हैं, उनका उपयोग करिए। ये जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक होती है ना बच्चों, उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों ये एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बात से मुझे याद आया कि कल मैं एक जगह जा रही थी तो मैंने देखा कि सड़क पर कुछ लोग ठंडा शरबत डिस्पोजिबल में बांट रहे थे, डिस्पोजिबल ग्लासेस में बांट रहे थे। चलिए वहाँ तक भी ठीक है कि आप बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पीने वाले थे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और अगर उनमें से एक दो लोग भी वहाँ थे, मैं आपको जगह भी बता सकती हूँ, बिट्टन चौराहे पर ये हो रहा था, जो दशहरा मैदान है उसके सामने की ये बात है। तो कहानी में ये हुआ कि लोग जहाँ पी रहे थे, स्कूटर पर बैठे थे तो स्कूटर से वो डिस्पोजेबल ग्लास को फेंक रहे थे, अगर गाड़ी में बैठे थे तो वो गाड़ी से फेंक रहे थे, तो अगले चौराहे तक सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस मैंने उड़ते हुए देखे, क्योंकि उनमें कोई वजन नहीं होता तो वो जरा सी भी आंधी जैसी चले तो वो उड़ते हैं। फिर कितनी गलत बात है ना बच्चों, हम सब चीज़ें बच्चों को ही सिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? हम खुद बड़े होकर ये क्यों नहीं सीखते हैं कि हमको भी इस धरती को, इस प्रकृति को, अपनी सड़कों को बचाना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, है ना। तो आप भी बच्चों अगर किसी को ऐसा करते देखें तो ज़रूर टोकिएगा, मगर प्यार से, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छी भाषा के साथ। तो आज की बाल सभा में बच्चों हमने आपको खेल खेल में इको दोस्त बनना तो सिखा दिया है। अब जल्दी से हमारी बारी है संकल्प की। हम थोड़े से संकल्प ले लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगली बाल सभा में भी हम जब आपसे मिलेंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे संकल्प इतने ही हैं। कि मैं जहां तक संभव होगा धरती की या धरती का अच्छा दोस्त बनूंगा या बनूंगी। मैं इस बरसात के मौसम में कोई पौधा अवश्य लगाऊंगी। मैं उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसका ख्याल रखूंगा या रखूंगी। मैं प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगी। मैं किसी भी ऐसे जीव को परेशान नहीं करूंगी जो मेरे आसपास है, जैसे चींटियां भी हो सकती हैं, चींटा भी हो सकता है, और बरसात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनसे हमें बचकर तो रहना है लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और हाँ, अपने आसपास मैं स्वच्छ वातावरण निर्मित करूंगा या निर्मित करूंगी। अगली बार कुछ ऐसी ही बातें फिर करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए बाल सभा कार्यक्रम समाप्त करने की। तो बच्चों, नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, जब जब भी हम अपने सेना का जिक्र करते हैं तो हमारा मानस एक आत्मसम्मान से भर जाता है, गर्व से भर जाता है और देश के प्रति एक अभिमान का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है। निस्संदेह इसका श्रेय जाता है हमारी भारतीय सेना के उन वीर सिपाहियों को जो सरहद पर आकाश, समुद्र, जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में हमारे लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। देश के प्रति उनके बलिदान, उनके पराक्रम से, उनकी वीरता और उनके साहस की शौर्य गाथाओं से ही भारतीय सेना का इतिहास लिखा गया है। श्रोता, आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व, हम एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहे हैं। कालचक्र के अब हम उस खंड में प्रवेश कर रहे हैं जो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा दूर की बात नहीं है। जी हाँ, आज से महज 26-27 साल पुरानी ही बात है। आइए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं सुदूर उत्तर के लद्दाख के पहाड़ों से, जहाँ ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने गुमशुदा याक को खोज रहा था। ये बात है मई सन 1999 की, जब ताशी नामग्याल अपने याक को खोजने के लिए लद्दाख के बटालिक क्षेत्र में काफी ऊपर के पहाड़ों पर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो देखा वो उन्हें काफी अटपटा सा लगा। उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग पहाड़ की चोटी पर हैं, जो कि अपने देश के नहीं दिख रहे। ताशी बिना हड़बड़ाए नीचे उतरे और इसकी सूचना उन्होंने समीप की भारतीय सेना की चौकी को दी। श्रोताओ, बस इतनी सी छोटी सी घटना ने एक बड़े और बेहद ही चुनौतीपूर्ण युद्ध को जन्म दिया, जिसे आज हम कारगिल की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ज्यादा देर न करते हुए कारगिल के विजय गाथा को जानने और उसे समझने के लिए आइए एक बार फिर हम रुख करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर की तरफ, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जीवन के अनमोल वर्षों को अर्पित किया है। सर, कार्यक्रम की इस नई श्रृंखला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने जो अभी कहा
3: जी,
4: जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ।
3: जी बिल्कुल।
4: अगर हम इसका जेनेसिस देखें, जो कारगिल हुआ था, इट इज द सेम प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का लीगली इंडिया में शामिल होना
3: जी,
4: पाकिस्तान को कभी भी भाया नहीं था और उसकी हमेशा ये कोशिश रही है और है कि वो किसी तरह से इसको कब्जे में करें। तो ये हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में देखा है कि हर बार जो है वो यही कोशिश में रहता है और इसी तरह से वो कोशिश करता रहा है। तो कारगिल का भी जो युद्ध था, ये भी एक तरह से पाकिस्तान का अटेम्प्ट था कश्मीर मुद्दे वाला
3: जी,
4: जो है
3: जी।
4: और स्पेशली जैसे हमने पहले सियाचिन ग्लेशियर का एपिसोड किया
3: जी,
4: तो उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान साल्टर और रिज पे जमाने में और एस्टैब्लिश करने में, पोस्ट एस्टैब्लिश करने में फेल रहा था और खासकर उसने अपनी कैद पोस्ट जो है लूज करी थी, तो उसके कारण भी जो है ये कारगिल का युद्ध जो है उसने छेड़ा था।
3: उसे भूल नहीं पाए
4: वो भूल नहीं पाए और ना भूलते हैं वाली बात है। तो ये जो है एक तरह से उनका वेल प्लान्ड ऑपरेशन था इंफिल्ट्रेशन का। अब उसी समय आप देखिए कि मई 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए थे, जिससे के कारण के सिक्योरिटी कंसर्न जो है बढ़ गए थे दोनों देशों में, टेंशन को कम करने के लिए और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए। अगर आपको याद हो, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था
3: जी, बिल्कुल, लाहौर घोषणा पत्र,
4: हाँ, फरवरी 1999 में, जो कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो थे उस समय उन्होंने किया था। हाँ, और उस समय अगर आपको याद होगा, हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने हिस्टोरिक बस यात्रा करी थी, लाहौर गए थे। लाहौर डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था
3: जी,
4: उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि दोनों जो देश हैं वो पीसफुल रिजोल्यूशन निकालेंगे जो लॉर्ड आउटस्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली ओवर जम्मू एंड कश्मीर का जो है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ दोनों देशों ने मतलब एक तरह से एक दूसरे को भरोसा भी दिया कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जो है और एक्सीडेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा, और दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। और ये सब पूरा करा था तो एक तरह से माहौल ऐसा था कि बहुत ही पीसफुल माहौल था, बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसी वक्त जो है पाकिस्तान आर्मी कारगिल के अंदर जो है इंट्रूजन कर रही थी जो है। इसी दौरान जो पाकिस्तान आर्मी है उसने कारगिल सेक्टर में जो है एलओसी को ब्रीच किया, और ब्रीच करके जो वहां की डोमिनेटिंग हाइट्स थी स्पेशली, तो उसमें जो है उनको ऑक्यूपाई किया।
3: यही दौरान था सर जिस समय हम लोगों ने समझौता किया था भारत पाकिस्तान,
4: बिल्कुल ये उसी समय की बात है। मतलब उसके आप देखिए फरवरी में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ और मई में हम लोग को मालूम चला कि मतलब ये इंट्रूजन हो गया। तो ये तो वो वक्त था जब हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है और शांतिपूर्ण माहौल है, भरोसा किया जा सकता है किसी तरह का, मतलब जो है इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन बदर का नाम दिया था, मतलब पाकिस्तान ने, और एम उनका वही था कि कश्मीर और लद्दाख को कट कर सकें और जो ट्रुप्स हैं इंडियन आर्मी के ट्रुप्स हैं उनको सियाचिन ग्लेशियर से भी जो है मतलब आइसोलेट कर सकें और भारत को मतलब वो फोर्स करें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो है डिस्प्यूट के ऊपर बात करके, और मतलब एक तरह से मतलब वो कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहते थे, है ना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये तकरीबन जो है 160 किलोमीटर की जो रिज लाइन है एलओसी है उसमें हुआ था, और जो जहाँ पे हुआ था इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये जो रोड है हमारी NH1 अल्फा, इसको पूरी तरह से मतलब नेशनल हाईवे इसको डोमिनेट करता हुआ था,
3: लेह तक जाता है,
4: जो ले जाता है श्रीनगर से जो ले जाता है उसको डोमिनेट कर रहा था, है ना। तो ये जो जैसे अब ये 160 किलोमीटर के स्ट्रेच में मतलब जो इम्पोर्टेंट हाइट्स थी जहाँ पे वो डोमिनेट कर सकते थे वो उन्होंने वो उन्होंने जो है ऑक्यूपाई करी हुई थी। अब इस इलाके में आपको मालूम है कि जो पोस्ट हैं, मिलिट्री पोस्ट हैं, जो हाइट्स हैं वो सारी की सारी 16,000 फीट से जो है ऊपर की हाइट पे 16,000-18,000 के ऊपर जाती हैं। तो मई में जैसे आपने अभी बताया कि कल से हमें खबर लगी कि जो है आइडेंटिफाइड आदमी जो है कारगिल में दिख रहे हैं, उसके बाद फिर तो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग करी गई, एरियल रेकीस हुई कंडक्ट किया, जिससे फिर हमें समझ में आया कि ये मामला बड़ा है और इंट्रूजन हुआ है। और पाकिस्तान इस बात से पूरी तरह से नकार रहा था कि ये उनकी आर्मी यहाँ नहीं है। उनका कहना था अगर वहां पे है तो हो सकता है मुजाहिदीन हो, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी आर्मी नहीं है।
3: अच्छा,
4: इन स्पाइट ऑफ मतलब डूइंग इट दे वर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इट।
3: तो सर पहले भी उनने हमेशा से इसी तरह से किया जैसे रजाकार को वो आगे कर देते थे,
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: उसी तरह से ये भी था,
4: बिल्कुल उसी तरह से ये भी था। और एम भी अगर आप देखें तो वही सेम वही उसी तरह
3: उद्देश्य उनका वही है जम्मू कश्मीर को हथियार,
4: बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने रिजलाइन तो ली है लेकिन एक तो वो हमारा एरिया है, दूसरा वो डोमिनेटिंग एरिया है, तो उससे तो उनको हमको निकालना हमारे लिए तो जरूरी था, हर हालत में जरूरी था। एंड दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखें इस एल्टीट्यूड के ऊपर जो है जब आप अटैक करने जाते हैं बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम है,
3: दुष्कर है सर, बहुत ज्यादा,
4: क्योंकि एक तो पहाड़ियां हैं,
3: ऊंचाई है
4: ऊंचाई में है, दूसरा ये है कि हाइट होने के कारण रेरिफाइड ऑक्सीजन सीजन है वहाँ पे, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस का टेम्परेचर है, तो उसके लिए आपको स्पेशल एक्रोमेटाइजेशन करना पड़ता है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, और उतना ज्यादा कम्बसम होता है, मतलब चलना बहुत मुश्किल है, एंड देन आप अटैक कर रहे हैं,
3: और सर हथियार और रसद भी आपके साथ है,
4: साथ है, और डिफेंडर जो है ऊपर बैठा हुआ है
3: ऊंचाई पे
4: बैठा है, तो उसके लिए बहुत आसान है, उसको पूरे एडवांटेज है, लेकिन इसी कारण से क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है NH1 अल्फा में, इंटरफेरेंस कर रहा है, अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो लद्दाख सेक्टर कट होता है, तो इसलिए इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी शुड थ्रो देम आउट, वी शुड डिस्ट्रॉय देम। दूसरी बात ये थी कि ये कारगिल सेक्टर में हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम कारगिल तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, टू अवॉइड ए फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान, मतलब दिस डिसीजन
3: वाज टेकन, हाँ
4: जी, तो मतलब किया है कि बाकी जगह ना, तो इसके कारण जो है एक और मतलब उन्होंने डायरेक्शन इशू किया कि भाई LOC विल नॉट बी क्रॉस्ड, आपको इनको निकालना है, आप निकालेंगे लेकिन जो है
3: लाइन ऑफ कंट्रोल को
4: आप क्रॉस नहीं करेंगे, तो बहुत से ज्यादा ये मुश्किल चैलेंजिंग टास्क बन जाता है FOs के लिए, जो
3: जी बिल्कुल,
4: जिनको ऑपरेट करते समय ये काफी दिक्कतें आती हैं, एनीवे बट दिस वाज अबाइडेड बाय, है ना, इसको बिल्कुल फॉलो किया गया। ये फिर से जो है अगर हम देखें तो तीनों जो फोर्सेस है, आर्मी नेवी FOs, तीनों का ऑपरेशन था, IAF को, इंडियन FOs को स्ट्राइक करने का टास्क दिया गया था, जो एनिमी पोस्ट है उनके बेसिस हैं, जिसको भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना क्रॉस किए हुए, एंड उन्होंने अपना पहला जो है ऑपरेशन शुरू किया था 26 मई को जो है, जिसको ऑपरेशन सफेद सागर बोलते हैं, जी, और नेवी वाज अलर्टेड एट द सेम टाइम कि अगर पाकिस्तान कोई और किसी तरह से कुछ अटैक करता है या नेवी से कुछ होता है तो नेवी वाज अलर्टेड, स्पेशली द कोस्टल एरियाज में जो हो, तो अगर मतलब उनसे मतलब उम्मीद करी जा सकती है कि वो किस तरह का रेड कर सकते, कुछ और कर सकते हैं, एंड वहां पे फिर इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो एडिशनल फोर्सेस हमें कारगिल में मतलब जो है आर्मी की जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, आर्टिलरी है, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं, मतलब सबको इंडक्ट करना शुरू किया टू डील विद द सिचुएशन। अब सिर्फ कारगिल में भी अगर आपको लड़ना है तो डिफेंस सिर्फ पोस्चर तो पूरी कंट्री में पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर आपको करना है, तो मतलब
3: तो पूरे सीमाओं की चाहिए,
4: बिल्कुल, तो पूरी की पूरी जो हमारी फोर्सेस हैं सारी की सारी जो है मोबिलाइज हुई थी और डिप्लॉय हुई थी, ताकि कहीं और किसी सेक्टर में अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ होता है, एस्केलेशन होता है, वो कोई और नया फ्रंट खोलना चाहते हैं, तो उसको हम कंट्रोल कर सकें, एंड स्पेसिफिकली इवन वी हैड टू टेक केयर ऑफ द चाइना बॉर्डर आल्सो, कि अगर ऐसे टाइम पे अगर पाकिस्तान के कहने से चाइना
3: उसका साथ
4: देता है तो इट बिकम्स अ डबल फ्रंट फाइट। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिक इनिशिएटिव लेने पड़ रहे थे, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्शंस को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान उनको भी जो है भड़का के,
3: यानी अंदरूनी हालातों पर भी नियंत्रण की उतनी ही आवश्यकता है,
4: जितना आपको जो है आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। कारगिल के बारे में तो हम पहले भी अपने एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफी हाई माउंटेन रेंजेस हैं, 18,000 फीट उससे ऊपर की रेंजेस हैं, स्नो क्लाड रहती है, बर्फ रहती है पूरी, और क्या है कि ये पहाड़ हैं इसके जो, उसमें कोई पेड़ नहीं है, तो किसी तरह का छुपाव नहीं है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं वहां पे जो है, एंड माइनस में टेम्परेचर जाता है, एल्टीट्यूड एरिया है तो -30 डिग्री उससे भी कम हो जाता है, तो जो चढ़ने के लिए है, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइंब, आपको ऊपर जाना है जिसको ऑक्यूपाई करा हुआ है, और ओपन में जा रहे हैं हम, एनिमी आपकी सारी मूवमेंट देख रहा है, किसी तरह से मतलब आपका कंसीलमेंट है ही नहीं किसी भी तरह से, तो ये सब जो थी मतलब काफी
3: कठिन
4: परिस्थितियां थी, एंड आपको ये रेरिफाइड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आपका पर्सन का और इक्विपमेंट का जो है एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है, फिर सारे के सारे जो मूव्स करने हैं आपको 140 करने हैं, क्योंकि ना तो आपकी गाड़ी जा सकती है, ना आप हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं, इन नेचुरल जो एम्पिडिमेंट्स थे, इसके अलावा एक और ये रिस्ट्रिक्शन थे कि LOC क्रॉस नहीं करना है, तो इन सबको देखते हुए जो है तैयारी की गई बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं
3: जी,
4: इससे सोल्जर जो है
3: आपके काम में बाधा है ना सर, ये
4: बाधा तो है लेकिन इसको हम बाधा मानते नहीं है।
3: सही बात है।
4: जो टास्क दिया गया है
3: जी,
4: जो ऑब्जेक्टिव है
3: जी,
4: वो तो पूरा करना ही
3: करना
4: है,
3: है। किसी भी हालत में,
4: किसी भी हालत में। और वही हमारे जो जवानों की ये एक मतलब बहादुरी है, मतलब जो है कि वो कभी भी इन सब चीजों से डिटर नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है ये मेरा ऑब्जेक्टिव है वही मैंने करना ही करना है।
3: तो सर इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग भी है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ The tough gets going.
4: Yes, exactly. And there are no obstacles for infantry. तो इन्फेंट्री के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है। तो ऑफ विजय जो था, जो कारगिल में हमने इसको लिया, इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। इसमें वंस अगेन मतलब वी शोकेस द ब्रेवरी ऑफ इंडियन फोर्सेस, देयर ग्रिट, डिटरमिनेशन एंड फाइटिंग स्पिरिट। Once again we proved that for a soldier, country is the first and foremost ever. हमेशा जो है, and soldiers fought this battle after battle without caring for their lives. एक के बाद जो है, हम देखेंगे, हम जिक्र भी करेंगे, लड़ते रहे जब तक कि आखिरी इंट्रूडर को हमने मार नहीं दिया या भगा नहीं दिया, और हमने अपना तिरंगा वहां पे लहराया नहीं
3: जी।
4: तब तक ये सोल्जर्स लड़े हैं
3: जी जी जी।
4: इट वाज ए वेरी हैवी कैजुअल्टीज।
3: हाँ सर, ये जी सर, अब तक जो हम करते चले आ रहे हैं युद्ध की बातें, उसमें कारगिल का युद्ध जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, तो उसमें ये बहुत जो कैजुअल्टीज हैं उसके ऊपर बहुत दुख होता है, और ऐसा लगता है कि ये दुश्मन से ज्यादा मौसम की मार जो थी, और चोटियों पर जो उनका कब्जा करने की जो एक उनमें एक अदम्य सोच थी, उसी के कारण हम वहां तक पहुंचे।
4: हाँ बिल्कुल सही बात है
3: जी,
4: बिल्कुल। हम जिक्र करेंगे इसका तो आपको एहसास होगा कि कितना मतलब मुश्किल टास्क था,
3: दुष्कर था,
4: बहुत ही दुष्कर टास्क था जो कि इन्होंने पूरा किया
3: जी।
4: ऑफ विजय को अगर हम डिस्कस करें
3: जी, बिल्कुल,
4: तो उसमें इट विल बी बेटर अगर हम सेक्टर वाइज जैसे डिस्कस करते हैं।
3: हाँ जी।
4: तो सबसे पहले अगर हम द्रास सेक्टर की बात करेंगे, तो द्रास जो है तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है कारगिल से। जब आप श्रीनगर से जाते हैं तो जुजिला क्रॉस करने के बाद पहले द्रास आता है, फिर उसके बाद जो है कारगिल आता है। द्रास को सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। वहां पे जो -50 तक का जो है टेम्परेचर जाता है। और ये जो इलाका था इसमें जो है तोलोलिंग रिज है
3: जी,
4: मेरे ख्याल से काफी फेमस हो चुकी है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये तकरीबन द्रास से 5 किलोमीटर नॉर्थ में है
3: जी।
4: और ये जो है श्रीनगर ले हाईवे जो है NH1 अल्फा, उस समय NH1 अल्फा बोलते थे, उसको प्रॉपरली डोमिनेट करती है। और यही जो था सबसे डीप पेनिट्रेशन था इंट्रूडर्स का, सबसे ज्यादा जो है इंट्रूजन जो हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। तो तोलोलिंग रिज लाइन थी, उसके पास आगे फिर 0.5140 हाइट आती है
3: जी।
4: ये जो कॉम्प्लेक्स था इसमें जो इंट्रूडर्स बैठे हुए थे, मतलब वो क्या कर रहे थे कि जितना वेक्लर मूवमेंट था उसके ऊपर जो है उनका जो है मतलब इंटरफेरेंस था, आर्टिलरी शेलिंग करवा रहे थे वो, तो बिल्कुल उनका मतलब जो है रोकने के लिए की पुरजोर कोशिश रही थी
3: जी।
4: तो इसको जो कैप्चर करने का टास्क था, उस समय वहां पे 8 माउंटेन डिव होती थी
3: जी,
4: उसकी 56 माउंटेन ब्रिगेड थी, उसको दिया गया था। इसमें जब अटैक कर रहे होते हैं, देखिए क्या होता है कि आपको अटैक से पहले काफी चीजें समझनी होती हैं, प्लानिंग के दौरान जो है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है
3: जी,
4: किस तादाद कितनी
3: है, उसके,
4: कितने किस तरह के उसके हथियार हैं, उसके बाद लेआउट क्या है डिफेंसेस का, उसके पास डिफेंस किस तरह के हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं नहीं है, फायर पावर सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, और क्या उसको कहीं और से सपोर्ट रीइन्फोर्समेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो ऐसा मतलब जो है सब कुछ मतलब मालूम होना चाहिए। हाउएवर ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो इतनी डिटेल में अवेलेबल नहीं थी। इनिशियली तो मतलब ये बोला गया था कि 8 से 10 इंट्रूडर्स हैं वहाँ पे, जो कि मुजाहिदीन हो सकते हैं, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने कि ये जो है फीचर्स ऑक्यूपाई करे हुए हैं पाक आर्मी के सपोर्ट से, पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट से।
3: हमें तब तक मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी सेना है या आतंकवादी है,
4: बिल्कुल हमें ये क्लियर नहीं था। और यही माना जा रहा था कि ये लोग जो है मुजाहिदीन या मिलिटेंट्स हैं, है ना। तो अगर मिलिटेंट्स होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो के उनके पास जो है स्मॉल आर्म्स होंगे, राइफल्स होंगी, ज्यादा एलएमजी हो सकती हैं, तो वही उसी तरह से जो फर्स्ट अटैक 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट है,
3: इसी सोच के साथ पहला आक्रमण किया गया।
4: हाँ, पहला आक्रमण किया गया था कि मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब आक्रमण तो आक्रमण है, तैयारी तो पूरी करी है, सब कुछ करना है, लेकिन एक जब आपका ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और एक बार जब कम इन्फॉर्मेशन होती है उसका फर्क होता है
3: सूचना के आधार पर।
4: एग्जैक्टली, तो जो फर्स्ट अटैक किया गया था 22nd-23rd मई को, मतलब उसमें भी अटैक में पूरा सपोर्ट था, आर्टिलरी का, मोटर्स का, एमजीज का। तो जब ये ट्रूप्स पहुंचे हैं उस इलाके में जहां दुश्मन थे, एनिमी लोकेशन पहुंचे, तो सडनली इनके ऊपर बहुत हैवी फायर आना शुरू हुआ।
3: अच्छा।
4: और उस फायर में मतलब ये रियलाइज किया गया कि मीडियम मशीन गन्स भी थी, हैवी मशीन गन्स भी थी, इवन एयर डिफेंस वेपन्स भी थे, आर्टिलरी का भी फायर आ रहा था, तो ये रियलाइज हुआ कि ये लोग जो है मुजाहिदीन नहीं है। इस तरह के हथियार मुजाहिदीन नहीं रखते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी के ट्रुप्स हैं जो कि वहां पे आए हुए हैं।
3: अच्छा।
4: जैसे हमने पहले जिक्र किया कि डिफेंस पे ऊपर बैठे हुए हैं, अब आप ऊपर अटैक वाले जा रहे हैं, सडनली फायरिंग आ रही है, छुपने की जगह नहीं है, तो आप उनकी हालत सोचिए, जो है दे वर पिन डाउन बाय हैवी फायर बट दे केप्ट ऑन होल्डिंग देयर पोजीशन, जगह नहीं छोड़ी
3: जी,
4: उसके बावजूद कि उनके ऊपर फायरिंग आती रही बट उन्होंने जो है अपनी जगह नहीं छोड़ी ना। अब तक जो है सिचुएशन जैसे क्लियर हो रही थी, तो इंडियन फोर्सेस में आर्मी ने जो है एडिशनल आर्टिलरी इंक्लूडिंग बोफोर्स वगैरह जो है इंक्लूड किया, और उसका जो है कांस्टेंट फायर जो है दुश्मन की पोजीशंस पे करते रहे जो है। तो इसके बाद जब और आर्टिलरी का जब सपोर्ट मिला, फायर सपोर्ट मिला, तो 18 ग्रेनेडियर्स ने फिर से अपना जो है जो अटैक था, उनके जो 2IC साहब होते थे, 2IC मतलब सेकंड इन कमांड जो होते हैं बटालियन में, कर्नल विश्वनाथन साहब थे, वो अटैक लीड कर रहे थे, और उनके जो एफर्ट्स थे और सोल्जर्स की जो ब्रेवरी थी, एफर्ट्स थे, उससे जो है ये लोग जो है एक फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में वहां पे सफल कामयाब रहे।
3: जी, जी।
4: और जो कर्नल विश्वनाथन साहब थे वो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड उसमें उनको काफी बुलेट इंजरीज हुई एंड इन दिस अटैक एक्चुअली ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, वो शहीद हुए। इसी तरह से एक दूसरे ऑफिसर थे मेजर RS अधिकारी, वो भी जो है लीड कर रहे थे, सबको लीड करते करते उनको भी ही ऑल्सो लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो ये जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लीड किया और ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके कारण जो है ये फुटहोल्ड पहले एस्टैब्लिश हुआ है।
3: पहली कामयाबी,
4: पहली कामयाबी जो थी एक तरह से वो हासिल हुई हमें। आप समझ सकते हैं जो पहली बार जब जो कोई जाता है और उसके लिए कितना मतलब मुश्किल होता है, उसके लिए हर एक चीज एक सरप्राइज थी, दुश्मन के बारे में इतना जानकारी नहीं थी और अचानक फायर आना सरप्राइज था, फिर उस टेम्परेचर में जो है कोल्ड में जो है आप बैठे हुए हैं एंड बट स्टिल जो बहादुर सिपाही थे, बहादुर पल्टन है, उन्होंने जो है अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश किया। तो आगे के अटैक के लिए देन फिर जो है 2 राजरिफ बटालियन को इसमें दास दिया गया।
3: अच्छा।
4: तो उन्होंने जो है अपना अटैक 12 जून को कमेंस किया था।
3: अच्छा।
4: अब उस समय जो है उनकी प्रोग्रेस आप देखिए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि ऊपर से आपको फायरिंग भी आ रही है, इंटेंस रेजिस्टेंस मिल रहा है दुश्मन का, स्टीप क्लाइम है, पूरा एक्सपोज टेरेन है, उसमें क्या होता है कि आपके जो नेचुरली जो आपका प्रोग्रेस होता है स्लो होता है।
3: जी, जहां तक मुझे जानकारी है जब इस तरह की लड़ाई होती है तो क्या रात में ही आगे बढ़ा जाता है?
4: रात में प्रेफर किया जाता है क्योंकि रात में ही जो है आपको आपके लिए सपोर्ट है
3: जी, दुश्मन से आप तभी छुप सकते
4: हैं, तभी आप छुप सकते हैं, तो रात को ही करा जाता है। और क्योंकि ओपन दिन में तो अगर मतलब वही होता है, दिन में जब अटैक स्टॉल हो जाता है तो आप तो बिल्कुल 100% एक्सपोज रहे बैठे हुए हैं
3: जी,
4: और आपको ऊपर से देख रहा है, तो 100% रात को ही अटैक किया जाता है ताकि हमें इसका फायदा मिले। तो ये जो एक तरह से जैसे जिक्र कर रहा था, स्टीप क्लाइम था, सब कुछ था, उसके बावजूद जो है बहादुर सिपाही हैं जो इंच बाय इंच आगे बढ़ते रहे है ना। और जब एनिमी की मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनका जो है फायरिंग भी जो है उनकी ज्यादा होने लगी,
3: ज्यादा होती जा रही थी,
4: तो कैजुअलिटीज भी बढ़ती जा रही थी, पर इन सबसे जो है फिर भी नो डिफरेंस एंड द सोल्जर्स एंड द बटालियन के जो ऑफिसर लीड कर रहे थे, दे केप्ट ऑन मूविंग आगे बढ़ते रहे एंड फाइनली दे सक्सीडेड इन रीचिंग द एनिमी लोकेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो पहुंच गए हैं ऊपर, तो सबने मिलके जो है अटैक किया
3: जी।
4: है ना, संघर्ष जो थे, क्योंकि वहां उन्होंने ना पत्थर से संघर्ष बना रखे थे,
3: जिसपे बंकर
4: टाइप। हाँ, बंकर टाइप। बंकर तो सॉलिड होते हैं, संगर होते हैं जो मतलब एक पत्थर उतर लूज होते हैं, हाँ वो बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये अटैक हुआ तो इवन मतलब अब इतना पास दुश्मन है कि देन इट बिकम ए हैंड टू हैंड फाइट। हैंड टू हैंड फाइट जो है मतलब इस जमाने में लड़ना भी बहुत बड़ी बात बनी है। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ इंट्रूडर्स जो थे वो तो मारे गए, ठीक है, और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने पोस्ट छोड़ दी। तो तोलोलिंग वॉज द फर्स्ट मेजर सक्सेस आफ्टर हैवी फाइटिंग एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। और ये 17 जून को जो है, तीन मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद जो है हमें सफलता मिली। अगर आप देखें
3: बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है युद्ध के हिसाब से, 3 हफ्ते,
4: 3 हफ्ते में ये सफलता मिली। और इसमें जो है 3 officer, 4 JCO, 16 other rank शहीद हुए थे और तकरीबन 50 से ज्यादा जो है घायल हुए।
3: इस शहादत से ही समझा जा सकता है सर वो कितनी कठिन जगह थी जिसको हमने जीता।
4: और वहाँ फिर हमें जो है पता चला
3: जी
4: कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये निसंदेह जो है पाकिस्तान आर्मी के हैं
3: जी।
4: क्योंकि उस तरह का वेपन मिले,
3: सबूत,
4: रॉकेट लॉन्चर्स थे, 81M मोटर्स थे, उसका एमिनेशन था, फिर डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान आर्मी के जो है, जो डॉक्यूमेंट्स उन लोग के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे, उससे मतलब ये प्रूव हुआ कि ये जो है कोई मुजाहिदीन नहीं है, ये मिलिटेंट्स नहीं है और ये जो है रेगुलर पाकिस्तान
3: आर्मी सेना है
4: जी। तो इसके बावजूद जो है पाकिस्तान आर्मी मानने को तैयार नहीं हो रही
3: सर, वो हमेशा से उनका यही रहा है। तो श्रोताओं, युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का वो जज्बा है, वो जुनून है जो सियाचिन और कारगिल की चोटियों से भी कई गुना ऊंचा है, जो दुश्मन को पीछे हटने को मजबूर कर देता है, बरबस कर देता है। कारगिल के इस जंग की विजय गाथा को हम आगे भी जारी रखेंगे कार्यक्रम के अगले एपिसोड्स में भी, और जानेंगे कि तोलोलिंग को फतह करने के बाद हमारी अगली चुनौतियां क्या थी। तो सर, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू बरुआ जी, जय हिंद।
3: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आपको आज आपके बचपन की यादें ताजा जो होने वाली हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए कि आपको गली में पिट्ठू की आवाज आ रही है। लंगड़ी टांग खेलते हुए गिरने की हंसी, कंचे, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, छुपन छुपाई, बाप रे कितने सारे खेल हम बचपन में खेला करते थे, बिना स्क्रीन के, बिना पैसों के, सिर्फ दोस्ती और धूल मिट्टी से ये खेल खेले जाते थे। वास्तव में श्रोताओं, ये खेल सिर्फ खेल नहीं थे, हमारी पहली टीम थी, पहली हार थी, पहली जीत थी, और यहीं से हमने सीखा नियम मानना, गिरकर उठना, टीम के लिए लड़ना। और आज उन्हीं मैदानों से निकले हैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम जैसे सफल खिलाड़ी। लेकिन इन सफल खिलाड़ियों को आखिर हम कब से और कैसे जानते हैं? सोचिए, जिस तरह बचपन में गली का कमेंटेटर होता था जो चिल्लाता था आउट है, आउट है, और हमें मानना पड़ता था, ठीक वैसे ही आज के खेल पत्रकार हैं। श्रोताओं, हर साल 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं, ताकि हम उन सभी लोगों को सलाम कर सकें जो धूप में खड़े होकर रात रात भर जागकर हमारे लिए स्कोर तैयार करते हैं, खिलाड़ियों की कहानियां हमें सुनाते हैं। बचपन के खेलों ने हमें खिलाड़ी बनाया और खेल पत्रकारों ने उन खेलों को त्योहार बना दिया। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम भी हमारे स्टूडियो में लेकर आए हैं कलम के एक ऐसे खिलाड़ी को जो बिना बैट बॉल के भी हर मैच खेलते हैं, प्रशांत सेंगर जी। आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार आपके श्रोताओं को, और बहुत सारा धन्यवाद आपको जो आपने याद किया, आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में।
0: सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है, तो हम इसे कब से मना रहे हैं?
1: इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन है
0: जी,
1: जो दुनिया भर के पत्रकारों को एक मंच दिया करते हैं
0: जी।
1: उसने लगभग 3 दशक पहले 1994 में डिसाइड किया कि विश्व पत्रकार दिवस या विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया जाए, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाए। दरअसल जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने के लिए हुआ करता है
0: जी। जी,
1: बहुत लिमिटेड पाठक हुआ करते हैं। आप हर जगह देखिएगा, बट जाएगा, आप अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन उठाएं, स्पोर्ट्स की मैगजीन उठाएं, तो उसके पाठक बहुत कम संख्या में होंगे
0: जी। जी,
1: बाकी पत्र मैगजीन्स जो रहेंगी उसमें पाठक बहुत सारे होंगे
0: जी।
1: तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको 1-2 मिलेंगे किसी भी मैगजीन में, जबकि बाकी जर्नलिस्टों के लिए बहुत खुला आसमान रहा करता है। तो उनके लिए चैलेंज रहा करता है
0: जी।
1: उनको क्या सुविधाएं दी जाएं, उनको क्या समझाइश दी जाए, उनके लिए कैसे मंच तैयार किए जाएं, इसको लेकर इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन ने फाइनली डिसाइड किया 1994 में कि 2 जुलाई को इनके लिए ये विशेष दिन मनाया जाएगा।
0: सर, आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी के लिए आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है?
1: देखिए, कोई भी दिन विशेष आपको ये तो महसूस कराता है कि ये कुछ खास चीज है, कुछ खास किस्सा है जिसको हम आज याद करेंगे
0: जी। जी,
1: बहुत सारे दिन हम लोग मनाते हैं, कुछ लोग बड़ा हास्यास्पद तरीके से बोलते हैं कि बताएं आप मदर्स डे, फादर्स डे, एक दिन याद कर लेते हैं। नहीं नहीं, उस दिन विशेष तौर पर आप सेलिब्रेट करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो खेल पत्रकारिता दिवस भी बाकी दिवस की तरह ही जताता है कि हम और ज्यादा संकल्पित हों खेल पत्रकारों के लिए, खेल पत्रकारिता के लिए, इस बड़े मंच के लिए और ज्यादा समर्पित हों, ये जताता है, और उनकी भूमिका को भी प्रदर्शित करता है
0: जी। जी,
1: अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन बड़े आयोजन हुआ करते हैं जहाँ खेल पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है
0: जी।
1: उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है।
0: सर, आप एक खेल पत्रकार हैं, तो आप अपनी आंखों से देखें तो आने वाले समय में कौन से खेल को आप एक बिग स्पोर्ट्स के रूप में भविष्य में देखते हैं?
1: बहुत सारे खेल हैं जो बड़ी जगह पाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश का जो एक सबसे महत्वपूर्ण खेल बन गया है पिछले कुछ दिनों से
0: जी,
1: वो है योग
0: जी। जी,
1: आने वाले समय में ये दुनिया भर को चकित करने वाला है। योगासन को, योग को अपनाने के लिए अब 200 से ज्यादा देश आ गए हैं।
0: जी जी,
1: आप सभी जानते हैं 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया गया।
0: जी जी,
1: बहुत साधारण सी कोशिशें थी लेकिन असाधारण परिणाम सामने आए हैं। योग को हाथों हाथ लिया गया है।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी जीवन शैली को, आपके जीवन के भविष्य को बेहतर बनाता है।
0: जी जी,
1: और हमारे प्रधानमंत्री का ये ड्रीम है, ये सपना है।
0: जी,
1: बहुत सारे महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग को आगे बढ़ाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है।
0: जी जी,
1: और बहुत सारी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं योग कवर करता रहा हूं। अभी पिछले दिनों एशियन चैंपियनशिप हुई थी।
0: जी जी,
1: दिल्ली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई, गुजरात में। ये भारत में ही नहीं, अब बाकी देशों में भी आयोजित होने जा रहा है।
0: जी जी,
1: हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, ये पॉपुलर है, नो डाउट।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इन सब खिलाड़ी को ये भी अपनाना होगा, ये तय हो चुका है। जो योग करेगा वो और ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। तो योग खिलाड़ियों के बीच में भी लोकप्रिय होने वाला है।
0: जो योग करेगा वो निरोग रहेगा निश्चित रूप से। और आपने जैसे कहा कि हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति को अपनाना

0: उससे बेटर ये होगा कि अब जैसे ऑफ ट्यूब कमेंट्री शुरू हो गई है,
1: जी,
0: अब आप दिल्ली में बैठकर लंदन की कमेंट्री किया करते हैं, वहां की रिपोर्टिंग किया करते हैं,
1: जी
0: कोशिशें बढ़ानी पड़ती हैं, वहां से आप चीजें हासिल कीजिए, वहां के रिपोर्टर्स की मदद लीजिए, वहां मौजूद जो संवाददाता है उनकी मदद लीजिए, खिलाड़ियों की डिटेल निकालिए। अब सोशल मीडिया का भी जमाना है, पर्टिकुलर उनकी साइट्स चला करते हैं। अगर आप अभी हाल ही में महिला वर्ल्ड कप चल रहा है,
1: जी जी,
0: महिला वर्ल्ड कप में देखेंगे कि किसके बीच कौन सा मैच है,
1: जी,
0: कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने घर बैठे अपने स्टूडियो में बैठकर सिंपली एक लाखों का काम सैकड़ों रुपए में संपन्न कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: तो देश के संसाधनों के लिए, आपके चैनल के संसाधनों के लिए
1: जी,
0: बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं करनी है, सिर्फ इतना करना है कि अपनी कोशिशें बढ़ा दें, आप अपने स्टूडियो से बड़े मैच बड़े इवेंट कवर कर सकते हैं।
1: अच्छा सर, बचपन के खेलों को और आज का जो आईपीएल है या वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो आपकी नजर में इन दोनों खेलों में एक जैसा क्या आपको लगता है जो अभी भी एक जैसा है, बचपन के खेल में और आज के वर्ल्ड कप में?
0: आनंद बहुत छुपा है।
1: आनंद है, क्या बात है।
0: दरअसल खेल जो है ना,
1: जी
0: हम शुरू से ये मानते आए हैं कि बच्चे को बिजी रखना है तो हम बोलते थे जाओ खेलो, जाके बाहर खेलो,
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को आपको खुश करना है तो चलो तुम्हें कुछ खिलाते हैं।
1: हाँ।
0: खेल आपके मन की खुशी से जुड़े होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और जब उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, वो खूबसूरत ज्यादा होता है, तो मन को बड़ा आनंद दिया करता है। क्रिकेट बहुत जेंटलमैन गेम है,
1: जी जी,
0: पांच पांच दिन के मैच हुआ करते थे, पांच पांच दिन लोग खेला करते थे, पहले एक दिन का गैप भी हुआ करता था, एक दिन रेस्ट डे हुआ करता था, विश्राम का दिन हुआ करता था, पांच दिन के मैच में मतलब छह दिन का मैच हुआ करता था क्रिकेट का, बहुत शिद्दत से लोग देखते थे उसको,
1: जी,
0: लेकिन
1: जी,
0: देखने वाले कम थे। आज एक नन्ना बच्चा और किचन में रोटी बनाने वाली गृहिणी भी बार बार पलट कर आती है कि रोहित का स्कोर कितना हो गया,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो आनंद छुप गया उसमें, वो जो छुपा आनंद था दरअसल, वो आनंद उसमें पैदा हो गया है। जो जेंटलमैन गेम लिमिटेड लोगों के लिए था, फुटबॉल पहले कहाँ होता था, कहाँ जाते थे, टीवी पे कभी आता भी था तो सेमीफाइनल फाइनल मैच दिखा दिया करते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एटलीस्ट पहले तो टीवी भी नहीं था।
1: आज
0: टेलीविजन है, आज सैटेलाइट व्यवस्था है, आज सारी चीजें हैं, हमने उनमें रंग बहुत ज्यादा भर दिए हैं,
1: बिल्कुल।
0: और तो और अगर आप विज्ञापन देखेंगे तमाम सारे चीजों के, विज्ञापन भी इतने सुंदर बनाए जाते हैं कि कुछ लोग मैच के साथ साथ विज्ञापन देखने में भी इंटरेस्टेड होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो इतना खूबसूरत इन सारी चीजों को बना दिया गया है। मैं शिकायत करने वालों से ये चीज जरूर कहूंगा कि किसी भी चीज को कलरफुल बनाने के लिए की गई जो कोशिशें हैं ना, उनको आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से शिकायत ना करें कि यार खेल को अलग कर दिया है, रंग ज्यादा भर दिए हैं, विज्ञापन ज्यादा भर दिए हैं। खेल को वही कलरफुल बनाते हैं, और जितना खूबसूरत कलर होंगे, जितना सारा रोमांच होगा, उतना खेल में आनंद छुपा होगा,
1: बिल्कुल।
0: और आनंद तो ही चाहिए,
1: वो जो आनंद है खेलों का वो अब आम जन में आ गया है कि जैसे
0: जी,
1: आपने
0: जी,
1: कहा
0: जी,
1: कि
0: जी,
1: गृहिणी में, छोटे बच्चे में।
0: आप विश्वास कीजिए, आप ऐसी कोई महिला देख के बताइए, एटलीस्ट आप गांव में जाएंगे, क्योंकि टीवी वहां पर भी है,
1: बिल्कुल,
0: वहां भी जाएंगे तो आपको विराट कोहली रोहित शर्मा के बारे में लोग पूछने लगेंगे। अगर आप दिल्ली से आए हैं तो पूछ लेंगे आपने विराट कोहली का देखा है क्या,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो चीजें अब इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं कि जो चीज हमें गिल्ली डंडा में मजा दिलाती थी चार पांच साल की उम्र में, आज आईपीएल, वर्ल्ड कप क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के मैचेस,
1: जी जी,
0: मतलब गजब का एक जो प्रचार तंत्र है, जो टीवी है, इसने बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। नो डाउट कमेंट्री हम लोग किया करते हैं, बहुत रोमांच पैदा किया करती है, लेकिन उसमें चार चांद लगा दिए हैं आज के प्रसारण ने, आज के एफर्ट्स ने।
1: अच्छा सर, जैसे खेल पत्रकारिता का अपना एक महत्व है जो हम अपने स्तर पर समझ सकते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि खेल जो है वो अब आम जन तक अपना प्रसार प्रचार कर चुका है और अपना एक रोमांच होता है खेल का, आपकी दृष्टि में खेल पत्रकारिता का क्या महत्व है?
0: बहुत ज्यादा महत्व, बिल्कुल यही है कि आपने गीली मिट्टी जो है उससे एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बना दी
1: जी,
0: और उसको बेहतर कर दिया जाए तो आपने एक साधारण से खिलाड़ी को उसकी क्वालिटी के कारण एक बड़ा स्वरूप प्रदान कर दिया, ये पत्रकार किया करता है। लेकिन पत्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, आज की भागती दौड़ती दुनिया में पत्रकार को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए।
1: जी।
0: हम अक्सर देखते हैं कि पत्रकार खबर खोजने के प्रयास में जो कंटेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, जो विषय होता है, उससे थोड़ी सी कहीं खिलवाड़ कर जाता है, उससे बचना चाहिए। स्पोर्ट्स लाइन में बहुत ज्यादा जरूरी है, आप हमेशा देखिएगा कि किसी ने मेडल जीता, सारे पत्रकार एकदम उसके पास पहुंच गए, उसे सांस लेने का मौका दिया नहीं है, एटलीस्ट बाकी जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगला जो इवेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, खेल का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं से मुश्किलों में आता है।
1: जी जी।
0: तो पत्रकारों को ये सोचना चाहिए, खेल का अभ्यास, खेल का माहौल, खेल की जरूरत, इनको विचलित किए बगैर अपने काम को इस तरीके से करें कि खेल भी आगे बढ़े और उनका काम भी पूरा हो जाए। एक किस्सा आपको बताता हूँ। पटियाला में एक इवेंट कर रहा था मैं, नेशनल इवेंट थे एथलेटिक्स की, उसमें 400 मीटर का एक विनर था, पंजाब का ही था
1: जी।
0: मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, 400 मीटर का विनर था। तो मेरे पास, चूंकि मैं टीवी के लिए कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे पास ऊपर से मैसेज आया, इसको लाइन अप कीजिए, लाइव लेते हैं इनको, चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट था और नेशनल रिकॉर्ड बनाया था उसने। मैं पहुंचा उसके पास तो उसको सीने में दर्द हो रहा था, तो उसको मेडिकल सुविधा दी जा रही थी, डॉक्टर्स वगैरह पास में थे। तो वो बोले, सर प्लीज सर हमें दो चार मिनट दे दीजिए। मैंने, डन यार, दो चार नहीं, आप 20 मिनट लीजिए, हमारा प्रसारण सेकंड है, हमारा इंटरव्यू सेकंड है, जिनका स्वास्थ्य सबसे मस्ट है। तो वो मुझे दिमाग में, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फिर बोला कि प्रशांत जी आप कर नहीं रहे इंटरव्यू, डिले हो जाएगा, फिर जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का स्प्रिंट आने वाला था, 200 मीटर के विनर को हम देखेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि सर हम खिलाड़ियों के लिए आए हैं, खिलाड़ी परेशान है, उसको तकलीफ है, वो अस्वस्थ है, ऐसे समय में मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये हर एक की जवाबदारी बनती है, कोई खिलाड़ी कोई खेल अगर कहीं परेशान है तो आपको उसकी मदद करनी है, ना कि उसको विचलित करना है।
1: क्या बात है सर, बहुत अच्छा किस्सा आपने हम सबके साथ साझा किया है। कहीं ना कहीं एक इंसानियत का भी स्वरूप दिखाता है हमें कि खेल के साथ में मानवीयता जो है वो भी साथ साथ चलती है, और पत्रकारिता के महत्व को, पत्रकार के व्यक्तित्व को ये और ज्यादा उभारती है। सर भारत की बात करें तो भारत में खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कौन सा संगठन करता है?
0: राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संगठन तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन हर प्रदेश में, हर शहर में पत्रकारों का अपना एसोसिएशन है।
1: जी जी।
0: लेकिन इसकी जरूरत अब और बढ़ती दिखाई देती है। मुझे लगता है खेल पत्रकारों के लिए थोड़े और प्रयास होने चाहिए।
1: आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेल पत्रकार होने के नाते क्या कुछ चुनौतियां होती हैं आपके लिए? खेल पत्रकारिता सिर्फ ग्लैमर है या ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है?
0: हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जितने शक्कर डालेंगे उतनी
1: जी जी जी
0: मिठास मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जितनी मेहनत करेंगे उतनी बेहतर रिपोर्टिंग होगी, उतना बेहतर आपका काम होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, खेल पत्रकार की जवाबदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आप उस जगह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत मेहनत होती है। एक सिंपल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता है, वहाँ एक कलाकार आएगा, अपना परफॉर्मेंस देकर चला जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स आपको फ्री मिलेंगे।
1: जी जी जी।
0: बहुत सारे लोग और भी जानकारी देने वाले मिलेंगे, पर आप एक होते हुए खेल को, खिलाड़ी को बगैर डिस्टर्ब किए हुए वहां से बेहतर मटेरियल निकाल लें, वहां की सारी जानकारियां ले लें, पर्टिकुलर उस डे विशेष में क्या हो रहा है। जैसे अभी इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी भुवनेश्वर में, डेली की रिपोर्टिंग, वहां 5 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज का 2003 का रिकॉर्ड टूटा है, तमाम सारे ऐसे रिकॉर्ड, तो वो सारी जानकारी इकट्ठी करना बगैर खिलाड़ियों को परेशान किए हुए, बगैर इवेंट को विचलित किए हुए आपको करनी है। ग्लैमर तो इतना है कि आप जब, सीधी सी बात है, अगर आप स्वयं इंटरव्यू अगर विराट का कर रहे हैं तो विराट का इंटरव्यू करना आपके लिए गर्व की बात तो होगी होगी, आपके संस्थान के लिए, आपके पेपर्स के लिए, आपके चैनल के लिए, अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। लियोनेल मेसी आए थे हिंदुस्तान, हर पत्रकार उनके पास था, पिछले साल आए थे वो। खिलाड़ियों से जुड़ना, खेल से जुड़ना, जो दुनिया भर में पॉपुलर है, ग्लैमर तो दिलवाते हैं, आपको बड़ा सम्मान दिलवाते हैं।
1: सर आपको क्या लगता है, खेल पत्रकार सिर्फ स्कोर ही बताते हैं या खेल की संस्कृति भी बनाते हैं?
0: खेल पत्रकार दरअसल एक तरह से समीक्षक हुआ करता है। हम जो डेली जो खबर पढ़ते हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज है।
1: जी जी।
0: खेल समीक्षक एक अलग चीज हुआ करता है।
1: जी।
0: दोनों की शैली अलग होती है, जो हुआ है उसे बता देना तो वो रिपोर्टिंग कहला जाएगा, लेकिन समीक्षक समीक्षा लिखेगा। जैसे भारत महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, आपको दूसरे दिन खबर मिल जाएगी कि इसने इतने रन बनाए, इसने इतने विकेट लिए, इतने रन कम रह गए और इतने रनों से फलानी टीम जीत गई, लेकिन उसके ऊपर दूसरा कॉलम साइड में आपको लिखा मिलेगा, वो समीक्षक का होगा।
1: जी जी।
0: उसको खेल किस तरीके से आगे बढ़ा, कहाँ टर्निंग पॉइंट था, कहाँ मिसिंग हो गया, क्या जरूरत थी, क्या पूर्ति नहीं हो पाई और क्या होना चाहिए,
1: जी जी,
0: ये सारी चीज एक समीक्षक लिखा करता है। तो दो तरीके का खेल पत्रकार का दायित्व हुआ करता है, एक सिंपल रिपोर्टिंग हुआ करते है खेल में क्या घटा
1: जी जी
0: और ऐसा क्यों घटा, ये बताने वाला समीक्षक हुआ करता है। तो दोनों की अलग अलग जवाबदारियां रहा करते हैं, लेकिन सच्चाई है दोनों बड़ी चैलेंजिंग हुआ करते हैं। एक भी गलती, अगर आपने किसी व्यक्ति ने 101 स्कोर किया है और आपने टाइपिंग में वो जीरो हटा दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
0: तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाहर से सब वेबसाइट से आता है, आप तो इजी भी है थोड़ा सा आज के दौर में। बीते दिनों में आज से अगर 40 साल पहले की पत्रकारिता देखें तो एक एक चीज हाथ से लिखी जाती थी,
1: हाँ।
0: अगर उसको टाइप भी कर रहे हैं तो आपका टाइपराइटर है उससे खबर जाती थी, तो कई बार वो जो शतक है ना
1: जी,
0: वो 10 रन में तब्दील हो जाता था
1: जी, जी, जी।
0: या विकेट उसने 5 लिए हैं या कोई ऐसा अंक है जो एक जैसा दिखाई देता है, तो गलती हो सकती
1: है। अच्छा सर, आपने बात की है तो हम आपसे अब खेल पत्रकारिता का इतिहास समझना चाहेंगे कि पहले क्या कुछ हुआ करता है तो जो अब नहीं होता है, या अभी क्या कुछ नया बनाया है।
0: इतिहास तो हर चीज का बहुत पुराना है, जब से इंसान अपने कामकाज में जुटा है तब से बात होने लगी। पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि खबर अपने आप में क्या है
1: जी,
0: एक दूसरे की बात एक दूसरे से करना, जिसे हम चुगली भी कहा करते हैं, वो भी तो एक चल में खबर है।
1: बिल्कुल,
0: कहीं कोई घटना घटी है, हम उस घटना को दूसरे को बता रहे हैं कि वहां पर ऐसा हुआ। उस घटना को बताने वाले कई बार बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिसको हम बोला करते थे ये तो बहुत अच्छा बोलता है कि हम वहां से जा रहे थे, वहां से दो गाड़ियां आ रही थी, एक ने ब्रेक लगाया, एक ने साइड लिया, दोनों टकरा गई, उसमें एक आदमी घायल हो गया, दूसरे ने उसको उठाया, ये पूरी की पूरी उसने रिपोर्टिंग की।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसी तरह की चीजें हुआ करती हैं। अब ये धीरे धीरे जब आई है सारी चीज, अब चूंकि अब 1994 एक ऐसा सन दिखाई देता है जहां से ये दिवस प्रारंभ हुआ है,
1: जी, जी,
0: इस तरह की तारीखें तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन मेरा मानना है मानव जब भी अपने कार्यकलापों में सामने आया है, वास्तव में वो रिपोर्टिंग होती रही, उसकी जानकारी मिलती रही, तो वो भी अपने आप में एक पत्रकारिता ही थी। हमारे जो सबसे बड़े पत्रकार कौन कहलाते हैं, नारद मुनि।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हमारे जो सफल खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनकी कहानियां आप तक कैसे पहुंचती हैं, ये जानना हमारे लिए बड़ा रोचक रहेगा।
0: दरअसल इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है।
1: अच्छा,
0: ये आसान नहीं होता।
1: जी जी,
0: आपने बड़े बड़े एंकर्स देखे होंगे, बड़े समीक्षक देखे होंगे जो खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं,
1: जी जी,
0: खेलों के बारे में बताते हैं, तो आपको रिसर्च करना होता है
1: जी।
0: हाँ, आजकल इंटरनेट बहुत मदद करता है, लेकिन सच्चाई आपको जांचने की बहुत जरूरत हुआ करती है। मुझे ध्यान है कि माही के ऊपर एक मैं स्टोरी कर रहा था, माही यानी MS धोनी,
1: जी जी बिल्कुल,
0: मैं जिस मैगजीन के लिए लिखा करता था, ये 2012-13 की बात है
1: जी।
0: तो बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढी पूछी, चूंकि रांची में मेरे मित्र भी रहते हैं, मैं वहां जाता रहता हूँ कमेंट्री के लिए
1: जी।
0: तो उनसे पूछा तो ऐसी चीजें मालूम पड़ी, जैसे माही को गुड़ की चाय बहुत पसंद है
1: जी जी।
0: माही किस तरीके से आगे बढ़े, कहाँ कहाँ उन्होंने मेहनत की, अब बाद में तो फिल्म आ गई, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आर्टिकल में मैंने उनकी जब जीवन परिचय लिखा था उसमें लिखा था कि MS धोनी की जो कहानी है ना वो किसी फिल्मी नायक की कहानी के समान प्रतीत होती है। जैसे एक फिल्मी नायक संघर्ष से गुजरा है, उसका बचपन मुश्किलों में बीता है, फिर संकल्पित हुआ, मेहनत की, आगे बढ़ा
1: जी।
0: तो MS धोनी की कहानी ऐसी समझ में आती है कि इस पे तो एक फिल्म बन सकती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि 2 साल बाद
1: फिल्म आ गई जी जी।
0: और तब मैंने एक दोबारा आर्टिकल लिखा, पर्टिकुलर उस कॉलम को मैंने उस आर्टिकल में डाला, 2.5 साल पहले मैंने ये लाइनें लिखी थी, और नीरज पांडे ने उन लाइनों को जैसे महसूस कर लिया। तो वो जो आप रिसर्च करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फिर आगे आपको बड़ा सम्मान दिलाती है।
1: बिल्कुल,
0: रिसर्च के बगैर कुछ नहीं होता, ना आप लिख सकते हो ना कमेंट्री कर सकते हो।
1: बिल्कुल,
0: आप कैसे बता सकते हो कि गावस्कर इतने बड़े बैट्समैन कैसे हुए। 1971 में गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में 774 रन मारे थे, ये उनकी शुरुआती श्रृंखला थी
1: जी, जी।
0: दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं किया। पहले 4 टेस्टों में 774 मारना, पहली सीरीज में दोहरा शतक मारना, 4 शतक मारना, अब ये रिसर्च करोगे तभी मालूम पड़ेगा।
1: बिल्कुल सर, एक पत्रकार होने के नाते हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो गांव कस्बे के छोटे छोटे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने में खेल पत्रकार का क्या रोल होता है?
0: बड़ी भूमिका रहा करते हैं। देखिए, खेल पत्रकार सिर्फ ये समझें कि वो खेल पत्रकार ही है, ये पर्याप्त नहीं है। वो एक इंसान भी है, वो बच्चों को देखता है
1: जी।
0: वो प्रतिभाओं को देखता है। अगर उसके मन में मंशा है, इच्छा है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: वो कोशिश करेगा। और मुझे तो लगता है खेल पत्रकारों को जवाबदारी उठानी चाहिए। जो खेलों की जानकारी रखते हैं, थोड़ा संबंध रखते हैं, थोड़े मंचों के बारे में जानते हैं, वो प्रतिभाओं को मंच दें। मैं चूंकि रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, टीवी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बच्चों को सबसे पहले बोलता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप रेडियो के स्टूडियो में जाएं, आकाशवाणी के स्टूडियो में जाएं, दूरदर्शन के स्टूडियो में जाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बोलने का काम है।
1: जी जी।
0: जब बच्चे दिखते हैं गली में खेलते हुए, मैं उनको बोलता हूँ आप स्टेडियम जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपको जो स्टेडियम का मैनेजर है, जो भी डायरेक्टर है, मैं उनसे बात कराऊंगा। ये हर पत्रकार की जवाबदारी होती है और ये करना चाहिए उनको, तभी गांव कस्बे के लोग बाहर आएंगे।
1: जी जी।
0: एमएस कहां से निकल के आए हैं, है ना? अगर वो आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको बैक किया होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो पत्रकारों को और ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका और अदा कर सकते हैं।
1: सर, आपने अभी तक 4 ओलंपिक, 4 एशियन गेम्स, 4 कॉमनवेल्थ और साथ साथ हॉकी और क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर अप किए हैं, तो अब तक का कवर किया हुआ सबसे इमोशनल मैच कौन सा रहा आपका, और क्या कुछ चुनौती भी रही इस मैच को कवर करते वक्त?
0: मुझे ध्यान है नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप में कर रहा था, एक मैच था जहां इंडिया खेल रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
1: जी।
0: किसी को ये आइडिया नहीं था, एटलीस्ट मेरे प्रोड्यूसर को भी ये नहीं मालूम था कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चले जाएगा। और ये बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था।
1: जी जी।
0: भारत सेमीफाइनल में 1975 से पहुंचा ही नहीं था। और उस मैच में सब कुछ अनोखा घट रहा था।
1: जी।
0: हमारा कमेंट्री बॉक्स जहां था उसके ऊपर जो छज्जा लगा हुआ था काफी आगे था, लेकिन इतना आगे नहीं था कि वहां से अगर पानी आए तो हम बच जाएं। इत्तेफाक से पानी आना शुरू हुआ, लाइव प्रसारण चल रहा था, पूरा देश सुन रहा था।
1: जी।
0: इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, पानी जब बरसा तो वहां टेम्परेचर था उस समय 6-7 डिग्री, हम भीग रहे थे, लेकिन कमेंट्री करनी थी, हम खड़े हो गए उसके बावजूद हम भीग रहे थे।
1: क्या बात है।
0: वो कमेंट्री हमें करनी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मेहनत कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सब टीमों के खिलाफ आधा दर्जन गोल मारे थे। भारत के खिलाफ पहला गोल हुआ था सेकंड हाफ में।
1: जी।
0: पहले हाफ में हमने ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका था। शुरू के 35 मिनट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 35 मिनट तक रोक लेना, और मेरे दिमाग में जो था वो मैंने बोला, तो बाद में बहुत सारे श्रोता या जानकार तो बोले ऐसा कैसे संभव है, भारत अपने मैच पहले ही हार चुका था, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कैलकुलेशन भी उनको बताया मैंने कि इस तरीके से भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हराना असंभव जैसा था, बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, लेकिन बरसते पानी में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला हाफ बराबरी पर रुक गया ऑस्ट्रेलिया को, मेरे लिए वो यादगार मैच था क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था।
1: जी जी।
0: और भारत के लिए बरसते पानी में कमेंट्री कर रहा था।
1: जी जी।
0: 6 डिग्री टेम्परेचर में। मैं अभी भी जब आपसे बात कह रहा हूँ तो वो समय याद आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: भारत ने पूरी जान लगाई, ऑस्ट्रेलिया 4-0 से वो मैच जीता, लेकिन वो सारे जो गोल हुए थे वो सेकंड हाफ में हुए थे, भारत ने कड़ी टक्कर दी थी।
1: क्या बात है, आपसे बात करके खुद हमें भी रोमांच सा हो आया है।
0: जी।
1: और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जो है वहाँ इतने बड़े मंच पर साक्षी है उस मैच का। सर, चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो खेल पत्रकार बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: बच्चे बहुत समझदार हैं।
1: जी।
0: बच्चे जानकारी रखते हैं, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है।
1: जी।
0: इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा जानकारी रखें। पत्रकारिता एक साधारण जॉब नहीं है, उस पर खेल पत्रकारिता जो डेटा के ऊपर, जो आंकड़ों के ऊपर, जो खिलाड़ी के या खेल के पूरे करियर के ऊपर आपके काम को सामने लाता है, तो वहां आप गलत या भ्रामक या अतिशयोक्ति नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल,
0: अगर सामने वाले ने 6 विकेट लिए हैं 19 रन देकर, तो आपको 19 रन देकर 6 विकेट ही लिखने होंगे। आप ये नहीं लिख सकते आम पत्रकार की तरीके से कि उन्होंने बहुत सारे विकेट ले लिए। जैसे हमारे यहाँ आता है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहां तो तादाद तय है, संख्या तय है। आपके डेटा जो है वो सही हो, सही आकलन हो, हवा में बात ना हो, ये खेल पत्रकार की सबसे बड़ी जवाबदारी है। ईमानदारी से काम करे, नो डाउट ये मंच आपको खूब सारा सम्मान देगा, और कहते ना अब तो खूब सारा पैसा भी दिया करता है।
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है कि कुछ और हम बहुत सारा आपसे जाने, लेकिन अब समय जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तो श्रोताओं, आज का दिन है उनके नाम जो हमारे जज्बातों को शब्द देते हैं, दुनिया भर के खेल पत्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज हम मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। प्रशांत सिंगर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी आज के दिन की हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं।
0: बहुत सारा धन्यवाद आपको, आपके संस्थान को, और बहुत सारे पत्रकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में तमाम सारी ऊंचाइयां लेकर आए, आपके जीवन में एक नया संकल्प पैदा हो, ऐसे हम आपको बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: धन्यवाद सर, और आपने भी आज हमें इतनी सारी रोचक जानकारियां दी हैं, जो अनुभव हमसे साझा किए हैं वो बहुत ही अच्छे थे, जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाते हैं आमजन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के अतिथि प्रशांत सिंगर सर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: उल्टा बल्ला चला, रिवर्स खेला है उसको, गेंद मारेगा।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप? दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
2: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट पहले आराम से बैठ जाओ।
1: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि ये संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
2: हाँ हाँ जरूर बेटा। आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
1: ओके दादाजी।
2: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: अच्छा दादाजी, यानी आज की कहानी वैज्ञानिकों, मिसाइलों और देशभक्ति की होगी?
2: हाँ बेटा, और साथ ही ये कहानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सपनों और भविष्य से भी जुड़ी हुई है।
1: तो फिर दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
2: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को की गई थी। उस समय भारत ये समझ चुका था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
1: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना? तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
2: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
1: वो तो है दादाजी।
2: वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पिडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
1: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
2: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
1: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
2: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
1: लेकिन दादाजी, एक बात अभी भी मेरे मन में।
2: पूछो।
1: जब मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से खरीदे जा सकते थे, तब भारत को अपनी अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी परीक्षा कल है, तुम्हें पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो तुम जब चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें हर बार किसी दूसरे से किताब मांगनी पड़े तो क्या होगा?
1: तो ये हो सकता है कि समय पर किताब ही ना मिले।
2: बिल्कुल, ऐसे ही अगर परीक्षा के ठीक पहले कोई दोस्त किताब देने से मना कर दे, तब
1: तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
2: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
1: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
2: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
1: कैसा सपना दादाजी?
2: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
1: तो दादाजी, BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
1: दादाजी, क्या सन 70 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
2: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
1: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
1: दादाजी, अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू, अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
2: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
1: हाँ दादू।
2: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है, ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
1: दादू दादू दादू, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
2: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
1: ओ, अब समझी। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
2: सबसे पहले सुनो बेटा आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
1: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
2: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है। ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
1: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
2: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
1: वो तो है।
2: हाँ बेटा देखो, आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: दादू, मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
2: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ऐसे लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइलों से खोजती कैसे होगी?
2: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
1: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
2: बिल्कुल वैसा ही।
1: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
2: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
1: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
2: हाँ हाँ,
1: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
2: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तर बंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
1: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
2: हाँ
1: दादू, ये किस तरह की तकनीक है?
2: इसका मतलब है कि बेटा, एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो स्वयं लक्ष्य का पीछा करती है, उसे बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती।
1: दादू, ये तो बड़ी कमाल की मिसाइल है। अच्छा, और ये हेलेना मिसाइल का नाम तो बहुत आधुनिक सा लगता है।
2: क्योंकि ये वास्तव में बहुत आधुनिक है बेटा।
1: अच्छा,
2: हेलेना को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ये दूर स्थित टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में बहुत सक्षम है बिटिया। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलिना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
1: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है, और हेलिना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू, समुद्र में क्या होता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
1: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
2: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
1: दादू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
2: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
1: अच्छा?
2: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही हैं बेटा।
1: तो दादाजी, क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
2: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
1: दादू, ये तो कमाल है भाई, मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
2: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
1: दादू, क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
2: नहीं नहीं बेटा, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
1: अच्छा?
2: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
1: दादू, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
2: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
1: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
2: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
1: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
2: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
1: रोबोट? सचमुच?
2: हाँ हाँ, आज BDL अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
1: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था, क्या इसका भी BDL से कोई संबंध है?
2: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक बुद्धिमान बनाना। और इसमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, स्मार्ट मशीनें, स्वचालित उत्पादन। BDL भी इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन को और अधिक उन्नत बनाता जा रहा है बेटा।
1: दादू, आजकल AI की भी तो बहुत चर्चा होती है ना? क्या रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है?
2: हाँ बेटा, दुनिया के अनेक देश अब AI आधारित रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। AI की सहायता से लक्ष्य पहचानना आसान होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
2: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
1: दादू, आपने पहले IDEX का नाम लिया था?
2: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
1: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना लेना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
2: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने, कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
1: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
2: लाभ ही लाभ है बेटा, विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
1: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
2: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
1: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
2: अच्छा,
1: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
2: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जिज्ञासा, अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और असफलताओं से कभी ना घबराना, समझी?
1: समझ गई। अच्छा ये बताइए,
2: हाँ,
1: कि आने वाले भविष्य की मिसाइलें कैसी होंगी?
2: बहुत रोचक सवाल है। भविष्य में हम देख सकते हैं अधिक बुद्धिमान प्रणालियां, AI आधारित निर्णय क्षमता, अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, मानव रहित युद्ध प्रणालियां, उन्नत सेंसर तकनीक।
1: और संभव है कि इसमें भी कुछ तकनीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में आज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
2: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया, याद रखो हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था, और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
1: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
2: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
1: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
2: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
1: ओ दादू, आपका बस चले ना तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
2: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
1: दादाजी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
2: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो, जल्दी से घर चलो बेटा।
1: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
2: हाँ बेटा।
3: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
2: और दीपक नेमा
3: को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका इतिहास फिर से आपके साथ, आपके पास। अरे, मगर आज हमारी तारीख कहीं दिखाई नहीं दे रही।
2: नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं आपकी तारीख रोज की तरह सही वक्त पर फिर आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ।
1: सही वक्त पर?
2: जी हाँ इतिहास जी, बिल्कुल सही वक्त पर। अरे भाई, आप मुझे नहीं देख पाए, लेकिन मैं यहाँ आपकी नजरों से ओझल होकर छुप कर बैठी हुई थी।
1: अच्छा, तो आज किसी आजादी के मतवाले की कहानी सुनाने की बजाय कहीं आपका इरादा छुपा छुपी का खेल खेलने का तो नहीं है?
2: अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, आप ही ने तो कहा था ना कि आज आप एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिनका नाम इतिहास के साथ साथ ब्रिटिश मुकदमों में भी बराबर में दर्ज है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें और अपने श्रोता साथियों को उन्हीं बंगाल के क्रांतिकारी आशित भट्टाचार्य के बारे में बताने वाला हूँ, यही मेरा इरादा है।
2: इसीलिए मैं छुप के देख रही थी कि गुप्त रहकर भी कैसे काम किया जा सकता है या अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारी और भारत माँ के सपूत किया करते थे।
1: अरे वो इस तरह की लुका छिपी का खेल नहीं होता था भाई। देखो मैं बताता हूँ, तारीख ये सशस्त्र क्रांतिकारियों की अलग धारा का इतिहास है जिसमें पंजाब और बंगाल की एक अलग ही भूमिका है, अलग नेतृत्व है, जिन्हें भारत को आजादी दिलाने का एक अलग ही जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था।
2: वाह, जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था, और इतिहास इसी जुनून, दीवानगी और पागलपन ने हमारी आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना? और यही जुनून और पागलपन आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर क्रांतिकारियों में भी भरा हुआ था।
1: बिल्कुल सही, आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर तब सामने आए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हजारों हजार छात्र जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का त्याग कर चुके थे, गांधी जी के अहिंसक आंदोलन को असफल मान बैठे थे, लेकिन उनके सामने अभी भी क्रांतिकारी संगठन और गुप्त समाज के अपने कार्यभारों की रूपरेखा पर्चों और कलकत्ता के ही एक अखबार युगांतर के माध्यम से प्रस्तुत हो रही थी और किशोरों और नवयुवकों को भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।

0: आशित भट्टाचार्य महज 17-18 बरस की उम्र में ही हथियारों से लैस था।
1: सिर्फ शस्त्रों से ही नहीं तारी, बल्कि उनके दल पर एक और अहम जिम्मेदारी थी, संगठन के लिए कोष जमा करना। और चूंकि सशस्त्र क्रांतिकारी अपना परिचय गुप्त रखते थे, इसलिए वे आम जन या धनिकों के पास जाकर चंदा उगाही भी नहीं कर सकते थे और न ही किसी को लूट कर या ठग कर ही पैसा हासिल कर सकते थे। तो उनके सामने ले देकर एक ही रास्ता बचता था और वो था ब्रिटिश संस्थाओं की लूट। यही एक रास्ता था रकम उगाही का।
0: इसी कारण से आशित भट्टाचार्य और उनके दल ने बंगाल के गांव इटाखोला डाकखाने से निकलने वाले डाक थैलों को लूटने की योजना बनाई।
1: बिल्कुल, हम इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आशित भट्टाचार्य ने ये योजना ब्रिटिश सरकार पर हमले के लिए ही बनाई होगी। आम लुटेरा तो किसी को भी लूट सकता है, पर ये दल तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा से ओतप्रोत था। और आशित भट्टाचार्य और उसके साथी सशस्त्र क्रांति के ही एक अंग थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के

0: सशस्त्र क्रांति को गलियों और चौराहों पर ला सकें।
1: पर्याप्त भौतिक साधनों से हीन पुलिस के निर्मम दमन के शिकार ये छुटपुट और अल्पसंख्यक भूमिगत गुप्त संगठन अपनी गतिविधियों में मुख्य रूप से छात्रों, गरीब शहरियों और बुद्धिजीवियों को लेने की ही कोशिश किया करते थे। अशित भट्टाचार्य खुद भी सिलहट गांव से पढ़ने आया था और एक गरीब शहरी छात्र था, और तो और उसके तीन और साथी भी टिपरा गांव के ही थे।

0: पहले तो आशित और उसके साथी प्रतिदिन निरीक्षण करते रहे और पता लगाते रहे। तब उन्हें पता लगा कि डाक के थैलों में बीमा किए हुए लिफाफे भी ले जाए जाते हैं जो पैसों से भरे होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक निहत्ता चपरासी ही अकेला इन्हें स्टेशन तक ले जाया करता है और इटाखोला से रेलवे स्टेशन के बीच एक जंगल भी पड़ता है। बस फिर क्या था, वही हमले की योजना बनाई गई
1: और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इटाखोला डाक

0: अपने को लूटने की योजना बनाई?
1: बिल्कुल, ये दिन दहाड़े होने वाली लूट ही थी जिसका खामियाजा इस दल को आगे भुगतना भी पड़ा। वो सभी पकड़े भी गए और पहचान भी लिए गए, और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये थी कि आम जनता ने भी उनकी राष्ट्रीय भावना को नहीं पहचाना और उन्हें आम लुटेरे समझ के पकड़वाने में मदद भी की।
0: मदद ही नहीं बल्कि खुद ही जाकर पुलिस को सौंप भी आए।
1: इस तरह की घटनाओं को देखकर ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सशस्त्र क्रांति की असफलता का एक बड़ा कारण उनकी गोपनीयता भी थी, जिसके चलते जनता क्रांतिकारियों और लुटेरों में फर्क नहीं कर पाती थी। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी थी।
0: लेकिन सोचो, कितने महान थे वो सशस्त्र क्रांतिकारी जो अपनी पहचान छुपाकर बिना किसी यश के सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लड़ते थे।

0: हाँ, तो चारों ने योजना बनाई और शस्त्रों से लैस होकर ईटाखोला डाकखाने के चपरासी का इंतजार करने लगे। और दूसरी तरफ से चपरासी भी निकल चुका था। डाकखाने के चपरासी का बयान था कि जब वो थैला लेकर डाकखाने से निकला तो सामने से एक युवक बोतल लेकर आता दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक और नौजवान पीछे से आया और चपरासी को धक्का देकर गिरा दिया। जब वो खड़ा होने को हुआ तब पीछे से उसके सर पर वार किया गया। वो फिर गिरा और तब एक झाड़ी के पीछे से चार नौजवान और निकले और डाक थैला लेकर भाग निकले। तब तक चपरासी बेहोश हो चुका था।
1: हाँ, और इस बयान से ये पता चलता है कि वो कुल मिलाकर 6 नौजवान थे, यानी कि दल 6 लोगों का था।
0: हाँ, आशित भट्टाचार्य और उसके 5 और साथी। कुछ और गांव वालों का बयान था कि चपरासी को मारकर थैला छीनकर भागते हुए इन लोगों को पास के खेत में काम कर रहे किसानों ने भी देखा। वो किसान आशित और उनके साथियों को पकड़ने के लिए शोर मचाते हुए भागे, जिसके कारण कुछ और गांव वाले भी आशित और साथियों के पीछे भागे। सारे लोग आशित और उसके साथियों के पीछे थे और बस यही वो पल था जब आशित ने पकड़े जाने के डर से

और इस तरह एक और आजादी का परवाना 2 जुलाई 1934 को फांसी पर लटकाया गया। उस समय इस योद्धा की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। इस छोटे बालक ने इतनी कम उम्र में ही अपनी भारत माँ के लिए कुर्बानी देकर कई नवयुवकों के लिए मिसाल कायम कर दी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्स लार एप्लीकेशन पर भी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आप समय मिला सकते हैं, दिन के ठीक 11 बजे है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आप जानते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधे उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी और नटराज संगीत विद्यालय, जहां कल इनके द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कला प्रसार कथक कार्यशाला का समापन दुष्यंत संग्रहालय में हुआ। कार्यशाला की छात्राओं ने प्रशिक्षण में सीखी कथक के विधाओं का प्रदर्शन किया। मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत नृत्य में नृत्यांगनाओं ने मुद्राओं, हस्त मुद्राओं और संतुलित पद संचालन के माध्यम से विघ्नहर्ता गणेश का आह्वान किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने भजन, ठुमरी और तराने पर आधारित कथक की प्रस्तुतियां दी। तराना में उन्होंने तीव्र लय, आकर्षक पद संचालन, सधे हुए चक्कर, सटीक तत्कार और ताल लय की समझ को मंच पर पेश किया। ताल, लय, भाव और मुद्राओं के सुंदर समन्वय ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा को मंच पर उकेरा।

राजधानी के रविंद्र भवन में स्थित अंजनी सभागार में 5 जुलाई को शाम 5 बजे संगीत कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सुरमई स्वर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की आयोजक नंदिनी सोमानी ने बताया कि संगीतमय संध्या में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं राज्य मंत्री कृष्णा गौर विशिष्ट अतिथि होंगी। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर ज्ञानेश शाक्य ने बताया कि अभिषेक विश्वकर्मा और गायिका जाह्नवी सिंह अपनी प्रस्तुतियां देंगे। श्रोताओं, मध्य प्रदेश की 3 अनमोल धरोहरों को वैश्विक पटल पर स्थापित करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मैहर बैंड, अगरिया लौह धातुकर्म तकनीक और निमाड़ी जायके को भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सूची में सम्मिलित किया गया है। ये उन जीवित परंपराओं, शिल्पों और भोजन शैलियों को मिला राष्ट्रीय सम्मान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही है। मैहर बैंड की स्थापना 1918 में उस्ताद अलाउद्दीन खान ने रियासत के महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव की प्रेरणा से की थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये विश्व का पहला ऑर्केस्ट्रा है। वर्ष 1924 में लखनऊ के भातखंडे समारोह से राष्ट्रीय ख्याति मिली और शिखर सम्मान से इसे नवाजा गया। बैंड के वाद्य वृंद में सितार, सरोद, इसराज, वॉयलिन, चेलो, सितार, बैंजो, हारमोनियम और तबला जैसे पारंपरिक एवं पाश्चात्य वाद्यों का मेल है। बंदूक की नलियों को काटकर निर्मित नल तरंग इसका प्रमुख आकर्षण है। वहीं अगरिया समुदाय सदियों पुरानी स्वदेशी लौह धातु कर्म तकनीक को आज भी जीवित रखे हुए है। पारंपरिक भट्टियों, लकड़ी के कोयले और स्थानीय लौह अयस्क का उपयोग कर लोहा तैयार किया जाता है। ये प्रक्रिया प्रकृति और स्थानीय संसाधनों के संतुलित उपयोग का उदाहरण है। यह गुरु शिष्य परंपरा और पारिवारिक विरासत के माध्यम से मौखिक रूप से हस्तांतरित होती आई है। युवाओं को बुजुर्ग लौह अयस्क की पहचान, भट्टी निर्माण, तापमान नियंत्रण और धातु शोधन की पारंपरिक विधियां सिखाते हैं। वहीं निमाड़ अंचल का पारंपरिक खान पान बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर जिलों में पीढ़ियों से तैयार किया जा रहा है। इसमें शामिल दाल पानी, धुली कढ़ी, पूरण की कचौड़ी, पारंपरिक कबाब और बिरयानी जैसे व्यंजन स्थानीय मसालों और विशिष्ट पाक विधियों के कारण अपनी पृथक पहचान रखते हैं। इन व्यंजनों में स्थानीय कृषि उत्पादों, मोटे अनाजों और मौसमी सामग्रियों का उपयोग निमाड़ की जीवन शैली का हिस्सा है। पारिवारिक उत्सवों, धार्मिक आयोजनों और सामाजिक समारोहों में ये परोसे जाते हैं।

तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद। आइए अब आपको सुनवाते हैं देशभक्ति गीत।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के साहित्य में हमें भारत की वर्तमान अवनति के कारण, उसकी वर्तमान परिस्थिति एवं उसके पुनरुज्जीवन के उपाय के संबंध में उनके विचारों को दर्शाती है। उनका साहित्य हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय कराती है।
1: आजकल हम विज्ञान की खूब दुहाई देते हैं और कहते हैं कि ये बात विज्ञान सम्मत नहीं है, ये गलत फहमी है आदि आदि। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता को नजरअंदाज कर हम पाश्चात्य आदर्शों के पीछे दौड़ते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 300-400 वर्ष पहले अस्तित्व में आए और आज तक समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। स्वामी जी ने हमें इन्हीं बातों की ओर ध्यान देने को कहा है और भारत के पतन के कारणों का विश्लेषण किया है।
2: पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। हम उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब एक मनुष्य दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेगा? अतः धर्म से जाति भेद नहीं है, जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है। अतः धर्म का कोई दोष नहीं, दोष मनुष्यों का है। कर्म कांडों से उबरकर एवं दार्शनिकों की जटिल व्याख्या से दिशाहीन होकर लोग अधिकाधिक संख्या में जड़वादियों से जा मिले, यही जाति समस्या का सूत्रपात था एवं भारत में कर्मकांड, दर्शन तथा जड़वाद के मध्य उस त्रिभुजात्मक संग्राम का मूल भी यही था जिसका समाधान हमारे इस युग तक संभव नहीं हो पाया है। अवश्य ही जाति धर्म विलुप्त हो गया है, अतएव जिसे तुम लोग जाति धर्म कहते हो वो ठीक उसका उल्टा है। पहले अपने पुराण और शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ो, तब समझ में आएगा कि शास्त्रों में जिसे जाति धर्म कहा गया है उसका सर्वथा लोप हो गया है।
0: भारत के अधःपतन का कारण क्या था? जाति संबंधी इस भाव का त्याग, जैसे गीता कहती है, जाति नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ। आजकल का वर्ण विभाग यथार्थ में जाति नहीं है, बल्कि जाति की प्रगति में वो एक रुकावट ही है। वास्तव में इसने सच्ची जाति अथवा विविधता की स्वच्छंद गति को रोक दिया है। प्रत्येक हिंदू जानता है कि किसी लड़के या लड़की के जन्म लेते ही ज्योतिषी लोग उसके जाति निर्वाचन की चेष्टा करते हैं। वही असली जाति है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ज्योतिष इसे स्वीकार करता है, और हम लोग केवल तभी उठ सकते हैं जब इसे फिर से पूरी स्वतंत्रता दे। याद रखें कि इस विविधता का अर्थ वैषम्य नहीं है और ना ही कोई विशेषाधिकार ही। प्रत्येक मजबूत अभिजात्य वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त संप्रदाय जाति का घातक है, वो जाति नहीं है। जाति स्वतंत्रता दो, जाति की राह से प्रत्येक रोड़े को हटा दो, बस हमारा उत्थान होगा।
1: समाज के हर वर्ग को शिक्षित किए बिना जाति की उन्नति संभव नहीं। युवकों में भले बुरे की पहचान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए
2: जो लोग कहते हैं कि अशिक्षित या गरीब मनुष्यों को स्वाधीनता देने से, अर्थात उनको अपने शरीर और धन आदि का पूरा अधिकार देने तथा उनके वंशजों को धनी और ऊंचे दर्जे के आदमियों के वंशजों के भांति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान सुविधा देने से उच्च गामी बन जाएंगे, तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं अथवा स्वार्थ से अंधे होकर? जो बुरा है उसे हमें दूर करना है तथा जो अच्छा है उसे सुदृढ़ करना है। छात्रों को उनकी राष्ट्रीय विरासत के इन दोनों पक्षों में भेद करना अवश्य सीखना चाहिए। हर एक सांस्कृतिक विरासत के ये दो पक्ष या पहलू होते हैं। ये शिक्षा ही है जो इन दोनों में अंतर करने की क्षमता तथा जो बुरा एवं अप्रासंगिक तथा कमजोर करने वाला है उसे स्वीकार करने का साहस प्रदान करती है। शिक्षा के दौरान हमारे युवकों को सकारात्मक या रचनात्मक तत्वों को पहचानने तथा उन्हें सुरक्षित रखने एवं उन्हें अपने योगदानों से सुदृढ़ करने के पश्चात आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में अवश्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
0: मरी हुई जाति को कड़वी दवाई ही पिलानी पड़ेगी, फिर प्यार जताना होगा। दोनों ही पद्धति अपनानी है, स्वामी जी कहते हैं।
2: तुम्हारे देश का जनसाधारण मानो एक सोया हुआ तिमंगल या वेल मछली है, सदाचार संबंधी जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है, भविष्य की उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वाले को धर दबाने में जो हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो? क्या तुम उस वैद्य की जगह ले सकते हो जो लाते मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता हो? मैंने जापान में सुना है कि वहां की लड़कियों का यह विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्यार किया जाए तो वे जीवित हो उठेंगी।
1: सबसे पहले भूखे भारतवासियों को खाना देना पड़ेगा, भूखे पेट भजन नहीं गाया जाता।
2: हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्ति भाव खो दिया है, फिर यही सारी खराबी का भी कारण है। हमें राष्ट्र को उसके खोए हुए व्यक्ति भाव को वापस लाना है और जन समुदाय को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा। सबके लिए अधिक अन्न और सबको अधिकाधिक सुविधाएं मिलती रहें। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट है वो कूर्म, इसे पहले ठंडा किए बिना धर्म कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं करेगा, नहीं तो केवल व्याख्यान देने से विशेष लाभ ना होगा।

0: की धूम मच रही है। मैंने 10 वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज सुधारक संस्थाओं की बाढ़ सी आई है, परंतु जिनका रक्त शोषण करके हमारे भद्र लोगों ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए एक भी संस्था नजर ना आई। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। हम कितनी ही राजनीति बरतें, उससे उस समय तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत का जनसमुदाय एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित और सुपालित नहीं होता। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु शोक उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। राष्ट्र की भावी उन्नति विधवाओं को अधिकाधिक पति मिलने पर निर्भर नहीं, वरन आम जनता की अवस्था पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या उनका खोया हुआ व्यक्तित्व बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति नष्ट किए उन्हें वापस दिला सकते हो? ये काम करना है और हम इसे करेंगे ही।
1: जनता के मन में स्वाभिमान जगाना होगा। दलित इंसानों को भी आत्मसंतुष्टि की जरूरत है, उन्हें जगाना होगा। यही हमारा राष्ट्रीय व्रत है।
0: जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वो है कार्य और हम हैं उसके कारक। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा, सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा।
2: आज जनता को उपदेश नहीं, प्यार और संवेदनशीलता की जरूरत है। छोटे से छोटे व्यक्ति की भी समाज में उपयोगिता है।
0: सुधारकों से मैं कहूंगा कि मैं स्वयं उनसे कहीं बढ़कर सुधारक हूं। वे लोग केवल इधर उधर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं आमूल सुधार। हम लोगों का मतभेद है केवल सुधार की प्रणाली में। उनकी प्रणाली विनाशात्मक है और मेरी संगठनात्मक। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश मढ़ने का साहस नहीं कर सकता कि तुम्हें इसी भांति चलना होगा, दूसरी तरह नहीं। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो राम के सेतु बांधने के समय अपने योगदान स्वरूप थोड़ी बालू लाकर संतुष्ट हो गई थी।

0: बुराई का अंत आलोचना से नहीं होता। हमारे पूर्वज हमें डांटते नहीं थे, प्यार से आशीर्वाद देकर सिखाया करते थे। तभी स्वामी जी ने लिखा है,
1: ये अद्भुत राष्ट्र जीवन रूपी यंत्र युग युग से कार्य करता रहा है। राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख बह रहा है। कौन जानता है, कौन साहस पूर्वक कह सकता है कि यह अच्छा है या बुरा, और यह किस प्रकार चलेगा। राष्ट्रीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है देते जाओ, बस वो अपने ढंग से उन्नति करता जाएगा। कोई उसकी उन्नति का मार्ग निर्दिष्ट नहीं कर सकता। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे दूसरे समाजों में भी हैं। निंदा करने की भला आवश्यकता क्या, बुराई को हर कोई दिखा सकता है। मानव समाज का सच्चा हितैषी तो वो है जो इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का उपाय बताए। क्या भारतवर्ष में कभी सुधारकों का भाव था? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शंकर, नानक, चैतन्य, कबीर और दादू कौन थे? ये सब बड़े बड़े धर्माचार्य जो भारत गगन में अत्यंत उज्जवल नक्षत्रों की तरह एक के बाद एक उदय हुए और फिर अस्त हो गए, कौन थे? इन सब ने प्रयत्न किया और उनका काम आज भी जारी है। भेद केवल इतना है, व्याज के समाज सुधारकों की तरह अपने मुंह से कभी अभिशाप नहीं उगलते थे, उनके मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था। इससे जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी।
2: हर समाज का अलग अलग ढंग, अलग अलग संस्कार होते हैं। एक को दूसरे पर थोपने से अनर्थ हो जाता है। इसलिए सुधार के लिए हमें अपनी पद्धति, अपने संस्कार ही अपनाने होंगे। स्वामी जी का मत था,
1: विदेशी संस्थाओं ने बलपूर्वक जिस प्रणाली को हम में प्रचलित करने की चेष्टा की है उसके अनुसार काम करना व्यर्थ है, वो असंभव है। मैं दूसरी कौमों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं करता, वे उनके लिए अच्छी हैं पर हमारे लिए नहीं। वो उनके लिए जो कुछ अमृत है हमारे लिए वही विष हो सकता है। पहले यही बात सीखनी होगी। अन्य प्रकार के विज्ञान, अन्य प्रकार के परंपरागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा गठित हुई है और हम लोगों के पीछे हैं हमारे अपने परंपरागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म। अतएव हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा और ये हमें करना ही होगा।
0: भारत धर्म पर टिका है। भूखे संतप्त भारतीयों का एकमात्र सहारा धर्म ही है। उनका उद्धार आध्यात्मिक पथ पर ही संभव है।
1: मैं जीवन भर काम करता रहा हूँ, कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के बल पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते तब तक भारत का उद्धार होना असंभव है। भारत वर्ष का प्राण धर्म ही है, उसके जाने पर भारत नष्ट हो जाएगा। अतः भारत में सुधार करने से पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उनमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धारणाओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: सही और प्रकृत धर्म की व्याख्या करनी होगी। जन साधारण को प्रकृत धर्माचार का ज्ञान नहीं है, उन्हें सिखाने का बीड़ा स्वामी जी ने उठाया था, तभी वे लिखते हैं,
1: भारत के सभी समाज सुधारकों ने पुरोहितों के अत्याचारों और अवनति का उत्तरदायित्व धर्म के मत्थे मढ़ने की एक भयंकर भूल की और एक अभेद्य गढ़ को ढहाने का प्रयत्न किया। नतीजा क्या हुआ? असफलता। बुद्ध देव से लेकर राम मोहन राय तक सबने जाति भेद को धर्म का एक अंग माना और जाति भेद के साथ ही धर्म पर भी पूरा आघात किया और असफल रहे। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया है। दोष धर्म का नहीं है। मेरा यही दावा है कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए हिंदू धर्म के विनाश की कोई आवश्यकता नहीं। और ये बात नहीं कि समाज की वर्तमान दशा हिंदू धर्म की प्राचीन रीति नीतियों और आचार अनुष्ठानों के समर्थन के कारण हुई, वरन ऐसा इसलिए हुआ कि धार्मिक तत्वों का सभी सामाजिक विषयों में अच्छी तरह उपयोग नहीं हुआ है। मैं इस कथन का प्रत्येक शब्द अपने प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणित करने को तैयार हूं। समाज की ये दशा दूर करनी होगी, परंतु धर्म का नाश करके नहीं, वरन हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण कर।
0: हमारे रोम रोम में धार्मिक संस्कार रचे बसे हैं। भारत को जगाने के लिए उन्हीं संस्कारों का सहारा लेना पड़ेगा। भारत उसी भाषा को जानता है, समझता है। स्वामी जी ने कहा है,
1: भला हो या बुरा, भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से बीसियों सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं। यहां तक कि अब वो हमारे रक्त में ही मिल गया है। हमारे रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है। वो हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवन शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस वेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारों वर्ष में अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहां से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना संभव भी हो तो भी यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीति अथवा अन्य किसी मार्ग का प्रारंभ कर सके। जिस रास्ते में बाधाएं कम हैं, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो, और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही कम बाधा वाला मार्ग है। धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का मार्ग भी।

0: हमें हर बात के लिए आध्यात्मिकता का पथ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शिराओं में वही रक्त बनकर दौड़ रहा है। उस रक्त को साफ करना होगा। स्वामी जी ने इसी बात को यूं समझाया है,
1: मेरे कहने का ये अर्थ भी नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किंतु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूं। ये सब यहां गौण विषय हैं। मुख्य विषय धर्म है। भारतीय मन पहले धार्मिक है फिर कुछ और। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यदि ये साफ बहता रहे, यदि वो शुद्ध एवं सशक्त बना रहे तो सब कुछ ठीक है। राजनीतिक सामाजिक चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक त्रुटियां हो, चाहे देश की निर्धनता ही क्यों ना हो, यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जाएंगे। इस भांति भारत में सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता है जब ये देखा जाए कि उस नई प्रथा से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी। राजनीति का प्रचार करने के लिए हमें दिखाना होगा कि उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षा आध्यात्मिक उन्नति की कितनी अधिक पूर्ति हो सकेगी।
2: स्वामी जी ने समझ लिया था कि राजा महाराजाओं का समय लद रहा है, समाजवाद का युग आने वाला है।
1: सब बातों से यही प्रकट हो रहा है कि समाजवाद अथवा जनता द्वारा शासन का कोई स्वरूप, उसे आप चाहे जिस नाम से पुकारें, उभरता आ रहा है। लोग निश्चय ही ये चाहेंगे कि उनकी पार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वे कम काम करें, उनका शोषण ना हो, युद्ध ना हो और भोजन अधिक मिले। इस बात का हमारे पास क्या प्रमाण है कि ये अथवा दूसरी कोई सभ्यता, जब तक कि वो धर्म पर, मनुष्य के भीतर के शुभ पर आधारित ना हो, स्थायी होगी? केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर दे सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है।
0: अच्छी बातों का अनुकरण करना ठीक है, पर अंधानुकरण नहीं, अपनी स्वतंत्रता कायम रखना है।
1: हमारा उद्देश्य है सभी को, प्रत्येक को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का अधिकार प्राप्त कराने में सहायता करना। धर्म को बिना हानि पहुंचाए जनता की उन्नति, इसे अपना आदर्श वाक्य बना लो। दूसरे का अनुसरण करना सभ्यता की निशानी नहीं है, यह एक महान पाठ है जो हमें याद रखना है। अनुकरण करना हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो मनुष्य के अधः पतन का लक्षण है। उसी प्रकार तुम भी करो और औरों से उत्तम बातें सीखकर उत्तम बनो। जो सीखना नहीं चाहता वो तो पहले ही मर चुका है। औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ सीख लो, पर उसे अपने भाव के सांचे में ढाल कर लेना होगा। दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी ना बनो कि अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठो। भारत के इस जातीय जीवन को भूल मत जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारतवर्ष के सभी आदिवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता।

0: सुधार का अर्थ है समस्त जाति का सुधार। निम्न तबकों के सुधार के बिना जातीय सुधार संभव नहीं, तभी वे लिखते हैं,
1: जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जो चिरंतर निर्झर बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वलतर, महत्तर और पहले से भी और ऊंचा उठाओ। गत शताब्दी में सुधार के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें से अधिकांश केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहे हैं। उनमें से प्रत्येक ने केवल प्रथम दो वर्णों से ही संबंध रखा है, शेष दो से नहीं। विधवा विवाह के प्रश्न से 70% भारतीय स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है। और देखो, मेरी बात पर ध्यान दो, इस प्रकार से सब आंदोलन का संबंध भारत के केवल उच्च वर्णों से ही रहा है, जो जन साधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं। इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करने में कोई कसर नहीं रखी, पर इसको सुधार नहीं कहा जा सकता।
2: दलितों को सहायता करने का मतलब है उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की सीख देना, फिर वे अपनी उन्नति स्वयं कर लेंगे। स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी।
1: हमारा संघ दीनहीन, दरिद्र, निरक्षर किसान तथा श्रमिक समाज के लिए है, और उनके लिए सब कुछ करने के बाद जब समय बचेगा केवल तब कुलीनों की बारी आएगी। प्रेम द्वारा तुम उन किसान और श्रमिक लोगों को जीत सकोगे। अपनी आत्मा का अपने उद्योग से उद्धार करो, यह सब परिस्थितियों में लागू होता है। हम उनकी सहायता इसलिए करते हैं जिससे वे स्वयं अपनी सहायता कर सके। जिस क्षण उन्हें अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाएगा और वे सहायता तथा उन्नति की आवश्यकता को समझेंगे, तब जानना कि तुम्हारा प्रभाव पड़ रहा है एवं तुम ठीक रास्ते पर हो। किसान और श्रमिक समाज मरणासन्न अवस्था में है, इसलिए जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है कि धनवान उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता दें। फिर किसानों और मजदूरों को अपनी समस्या का सामना और समाधान स्वयं करने दो।
0: सभी अच्छे काम करने के लिए समाज सुधार करने में रक्त लगता है। संपूर्ण भारत को शिक्षित करने में सदियां बीत जाएंगी, पर यही एक रास्ता है।
1: अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कहां हैं वे लोग जो सुधार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो। सुधार चाहने वाले लोग हैं कहां? इन अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अत्याचार के समान दुनिया में कोई और अत्याचार नहीं। मुट्ठी भर लोग जो सोचते हैं कि कुछ बातें दोषपूर्ण हैं, राष्ट्र को गतिशील नहीं कर सकते। राष्ट्र में आज प्रगति क्यों नहीं है? क्यों वो जड़ भावापन्न है? पहले राष्ट्र को शिक्षित करो, अपनी निजी विधायक संस्थाएं बनाओ, फिर तो कानून आप ही आ जाएंगे। जिस शक्ति के बल से, जिसके अनुमोदन से कानून का गठन होगा, पहले उसकी सृष्टि करो। आज राजा नहीं रहे, जिस नई शक्ति से, जिस नए दल की सम्मति से नई व्यवस्था गठित होगी, वो लोक शक्ति कहां है? पहले उसी लोक शक्ति को संगठित करो। अतएव समाज सुधार के लिए भी प्रथम कर्तव्य है लोगों को शिक्षित करना, और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता तब तक प्रतीक्षा करनी ही होगी।
2: जनता को किताबी शिक्षा नहीं, जीवन निर्मात्री शिक्षा देनी होगी, जिससे भारत एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उठ खड़ा हो सके।
1: लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा ना दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए, नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं कि अंतर्द्वंद होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा ना सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें और मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को पचाकर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि अपने देश की समग्र शिक्षा का भार अपने हाथों में ले लें और जहां तक संभव हो राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, इस समय आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हमारी प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। दिन के 12 बजने को है, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। दिन के ठीक 12 बजे हैं, अब हमारी दोपहर कालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः पुनः स्वागत करते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तराने आजादी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना। आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया न जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अक्षय द्विवेदी का गायन।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने अक्षय द्विवेदी का गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विचित्र होली।

होली का दिन था। मिस्टर एबी क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली, सफाई वाला, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सभी ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय बगीचे में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे।

पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि साहब आ तो नहीं रहे हैं। इतने में शेख नूर अली सामने आकर खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खानसामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, उसका जब जी चाहे आए, मेरा तो आज इस्तीफा है, अब इसकी नौकरी ना करूंगा। हरदली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर ना पाओगे, चार पैसे ऊपर की आमदनी है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली बोला, अजी लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी ना होगी, ये हमें जूतों से ठुकराएं और हम इनकी गुलामी करें। आज यहां से डेरा कूच है, आओ तुम लोगों की दावत करूं, चले आओ कमरे में, आराम से मेज पर डट जाओ, वो बोतलें पिलाऊं कि जिगर ठंडा हो जाए। साइस बोला, और जो कहीं साहब आ जाए? अरे वो नहीं आने का भी, चले आओ। साहबों के नौकर प्राय शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहां गुलामी लिखाई, उसी दिन से ये बला उनके सिर पर चढ़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेल जाता हो तो भला नौकर क्यों चूकने लगा। ये निमंत्रण पाकर सब के सब उठे, भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजरी छोड़ छाड़ कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर गिलास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वाले ने जब ये मजेदार चीजें पाई तो गिलास लुढ़काने लगे। खानसामा भी उत्तेजित करता जाता था। जरा देर में सभी के सिर फिर गए, भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना होने लगा।

0: नूर अली ने ढोल मजीरा लाकर रख दिया। वहीं मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहां के सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगे, हुहक मचने लगा। कबीर फाग चौताल गाली गलौच मारपीट, बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हैं। कुर्सियां उलट गईं, दीवारों पर की तस्वीरें टूट गईं, एक ने मेज उलट दी, दूसरे ने रकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू किया। यहां यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागर मल का आगमन हुआ। उन्होंने ये कौतुक देखा तो चकराए, खानसामा से पूछा, ये क्या गोलमाल है शेख जी, साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली बोला, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें, आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। सुनते हैं लाट साहब के यहां से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्त जब्त रखो, उनके त्योहारों में शरीक हो, तभी तो ये हुक्म दिया है, नहीं तो इनके मिजाज ही मिलते थे। आइए आइए तशरीफ रखिए, निकालूं कोई मजेदार चीज। अरे अभी हाल ही में विलायत से पार्सल आया है। राय उजागरमल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे, अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे, रहन सहन भी अंग्रेजी ही था, और यूनियन क्लब के तो वो एकमात्र करता ही थे, और मिस्टर क्रॉस तो उनके परम मित्र थे ही। जिलाधीश से चाहे वो कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठकर बोले, अच्छा ये बात है, तो फिर निकालो कोई मजेदार चीज, कुछ गजल भी हो। नूर अली बोला, हुजूर आपके लिए सब हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर से ही पीकर चले थे, यहां कई गिलास चढ़ाए तो जबान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली साहब आज होली खेलेंगे? हाँ हाँ जी हाँ, लेकिन मैं रंग वंग तो लाए नहीं, भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी लाए, क्यों घसीटे तेरी तो आज बहुत बहार है। घसीटे बोला, बड़ी बहार है होली है। उजागर गाते हुए बोला कि आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे भी साथ में शामिल हो गया, ग्वाला भी शामिल हो गया, धोबी भी शामिल हो गया, अर्दली भी शामिल हो गया, सब के सब गाते हुए बोलने लगे, खूब अबीर लगाऊं, खूब गुलाल उड़ाऊंगा, बोतल पे बोतल चढ़ाऊंगा, खूब कबीरे सुनाऊंगा, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। अब नूर अली संभल कर बोला, अच्छा सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी ये लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए, और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए, और तुम लोग भी उनके मुंह में गुलाल मलो, साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। वो लो मोटर हाथे में आ गया। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, पर वहां तो जोरों से चौताल हो रहा था, सुनता ही कौन है, चकराए। ये मामला क्या है, क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम से गाने की आवाज आ रही थी। अब क्या था, जामे से बाहर बाहर हो गए, चेहरा विकृत हो गया, हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर चले। लेकिन तभी एक कदम दरवाजे के बाहर ही था कि सेठ उजागरमल ने पिचकारी छोड़ी, सारे कपड़े तर हो गए, आंखों में भी रंग घुस गया, आंखें पूंछ ही रहे थे कि साइस ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल और कालिख का पाउडर लगा दिया। साहब के अब क्रोध की सीमा न रही, हंटर लेकर सभी को अंधाधुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे, हंटर पड़े तो नशा हिरण हो गया, कोई इधर भागा कोई उधर। सेठ उजागर मल ने यह रंग देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने झांसा दिया, एक कोने में दुबके रहे। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े, लाला साहब के होश उड़ गए, तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेतहाशा भागे, साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी, घोड़े ने धम धम खटपट सुनी तो चौंका, कनौतियां खड़ी की और फिटन ले भागा। विचित्र दृश्य था, आगे आगे फिटन, उसके पीछे सेठ उजागरमल और उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बगटूट दौड़े चले जाते थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, पर साहब के पहुंचते पहुंचते संभल कर उठे। हाथे के बाहर सड़क तक घुड़ दौड़ रही। अंत में साहब रुक गए, मुंह में कालिख लगाए। अब और आगे जाना हास्यजन मालूम हुआ। ये विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफी सजा मिल चुकी, अपने नौकरों की अब खबर लेना भी जरूरी था। लौट गए। सेठ उजागर मल की जान में जान आई, बैठकर हांफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बिठा दिया। लाला उजागर मल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेजों की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज्य की तामीली, माली और मुल्की तरक्की के राग गाते रहते थे। अपनी वक्तृताओं में सहयोगियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजों में इधर उनका विशेष आदर सम्मान होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदारों को ही मिला करते थे, उन्हें दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था। अतएव मुंह से चाहे वो असहयोग की कितनी ही निंदा करें, पर मन में उसकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि सहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा लें। वो असहयोगियों के कृत्यों का खूब बढ़ा बढ़ाकर बयान किया करते थे और अधिकारियों के कृत्यों को इन गढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल ही दिल में उन पर खूब हंसते थे। ज्यों ज्यों सम्मान बढ़ता था, उनका आत्माभिमान भी बढ़ता था। वो अब पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और जरा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया, उसकी असहयोगियों से भी मिली भगत है। ये लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना क्रोधोन्मत्त होना इसके सिवाय और क्या बतलाता है कि हमें ये लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने प्रभुत्व का कितना घमंड है कि मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ, ये जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे वो केवल धोखा है। मन में हमें ये अब नीच और कमीना समझते हैं। लाल रंग कोई बाण नहीं था। हम बड़े दिनों में गिरजे जाते हैं, इन्हें डालियां देते हैं, वो हमारा त्योहार नहीं है। पर इस जरा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठा। हा, इतना अपमान! मुझे उसके सामने ताल ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना कायरता थी, इसी से दबाना चाहते हैं। इनकी ये विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब गांठने के लिए है। इनकी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं। सेठ जी के हृदगत भावों ने उग्र रूप धारण किया। मेरी ये अधोगति, अपने अपमान की याद रह रहकर उनके चित्त को विहल कर रही थी। ये मेरे सहयोग का फल है, मैं इसी योग्य हूं। मैं उनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुन फूला ना समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी न सूझता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वे हास्यास्पद नहीं है, मैं स्वयं निंदनीय हूं। वो अपने घर न जाकर सीधे कार्यालय की ओर लपके। वहां पहुंचे तो एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत, छोटे बड़े, सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रित किया। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोज का भी प्रबंध किया गया था। इस समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से उतरे, पर सभा स्थल जाते में संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सब के सब विस्मित होकर उनकी ओर ताकने लगे। ये खुशामदियों के आचार्य आज यहां कैसे भूल पड़े? इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में राजभक्ति का प्रस्ताव पास करना चाहिए था। शायद भेद लेने आए हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। उजागर मल ने उच्च स्वर में कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदियों की क्षय। सेठ जी ने उच्च स्वर से कहा, जी हुजूरों की क्षय। ये कहकर वो समस्त उपस्थित जनों को विस्मय में डालते हुए मंच पर जा पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, उसे क्षमा कीजिए। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण ना समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आज इस पवित्र प्रेममय होली के दिन मैं आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूं। अपनी विशाल उदारता का आचरण कीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल गया। जिलाधीश ने आज मेरा अपमान किया। मैं वहां से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूं। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु हूं। मैंने अपने स्वार्थ के वश, अपने अविश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया, खूब कांटे बोए। उनका स्मरण करके जी चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक आवाज आई,
1: हाँ हाँ अवश्य कर दीजिए, आपसे न बने तो मैं तैयार हूं।
0: प्रधान बोले, ये कटु वाक्यों का अवसर नहीं है। सेठ जी बोले, नहीं आपको ये कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ये काम भली भांति कर सकता हूं, पर अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करना है, जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूं कि जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित करने में, यही मुंह की कालिमा धोने में काटूं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर अर्पण करता हूं। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी विचित्र होली, जो आपने कार्यक्रम सुनो कहानी में सुनी। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रही हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूर्व संस्कार।

सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूलकर ही आती है। राम टहल विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन आदमी थे, पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। उनका धन बढ़ता था, सभी उनके आसामी थे। उधर उनके छोटे भाई शिव टहल साधु भक्त धर्मपरायण और परोपकारी जीव थे। उनका धन घटता जाता था, उनके द्वार पर दो चार अतिथि बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था, जितने नीच श्रेणी के आदमी थे उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती, ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते हैं। ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से ड्योढ़ा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रोब न था, साधु संत आते और इच्छा पूर्ण भोज करके अपनी राह लेते। दो चार आदमियों को रुपए उधार भी दिए तो सूद के लालच से नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। कभी जोर देकर तगादा ना करते कि कहीं उन्हें दुख ना हो। इस तरह कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई, रुपए भी बहुत डूब गए। इधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। शिव टहल को अब चिंता हुई, निर्वाह कैसे होगा। धन ना था कि कोई रोजगार करते, वो व्यवहार कुशल बुद्धि भी न थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण लेने की हिम्मत न पड़ती थी, रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहां से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी ना कर सकते थे, कुल मर्यादा भंग होती थी। दो चार महीने तो ज्योतियों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा, भैया मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है, आपके सिवा आप किसकी शरण लूं। राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं, तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं, जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूं, सारे संसार को ठगना जानता हूं, तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। ये तुम्हारा ही घर है, मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो, महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ एक बात मुझसे न होगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा भी न दूंगा और न तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूं, उसे क्षमा करो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना। हाँ आपसे मेरी एक विनय है, मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार ना करें। राम टहल बोले, अगर वो कभी तुम्हें ताना देंगी तो मैं उनकी जीभ खींच लूंगा। राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस पर थी, वहां एक कच्चा मकान भी था, बैलगाड़ी खेती की अन्य सामग्रियां वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहां उत्साह के साथ काम करने लगे, नौकरों ने काम में चौकसी की, परिश्रम का फल मिला, पहले ही साल ड्योढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदलें, पहले की तरह तो नहीं, पर अब भी दो चार मूर्तियां शिव टहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ अपने भाई से ये बात छिपाते थे कि कहीं वो अप्रसन्न होकर जीविका का ये आधार भी छीन न ले। फल ये होता है कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज भूसा खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरी करने के लिए वो मजदूरों से भी और कड़ी मेहनत लेते थे और कड़ी मेहनत करते, धूप ठंड पानी बूंदी की बिल्कुल परवाह न करते, मगर कभी इतना परिश्रम किया तो था ना। शरीर शक्तिहीन होने लगा, भोजन भी रूखा सूखा मिलता था, उस पर कोई ठीक समय नहीं, कभी दोपहर को खाया कभी तीसरे पहर, कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है, बीमार पड़ गए। देहात में दवा पानी का सुभीता ना था, भोजन में भी कुपथ्य करना पड़ता था। रोग ने जड़ पकड़ ली, ज्वर ने पीलिया का रूप धारण कर लिया और पीलिया ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया। राम टहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें एक पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा, गुड़ घी भूसा चारा उपले ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए, पछतावा हुआ कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र नहीं की, अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि ज्वर प्राण घातक ही होगा, नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज करता। भगवान की यही इच्छा थी तो फिर मेरा क्या वश। अब कोई खेती को संभालने वाला ना था,
इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था, उस पर विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वो देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था, शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले जाएं। यहां उनका समय और चित्त विशेषकर गऊओं की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमुना परी बड़ी रास की गाय थी। उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था। दूध खूब देती थी और इतनी सीधी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो न बोलती। वो इन दिनों गाभिन थी, उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से नाज खिलाते। कई आदमी उसके डोढ़े दाम देते थे, पर राम टहल ने ना बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिनों तक गाना बजाना होता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहिर। एक ज्योतिषी से उसका जन्म पत्र भी बनवाया गया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, बड़ा भाग्यशाली स्वामी भक्त निकलेगा। केवल छठे वर्ष पर उस पर एक संकट की शंका थी, उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ण था, उसके माथे पर एक लाल तिलक था, आंखें कजरी थी, स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था। दिन भर किलोले किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित होता जाता था। वो उनसे इतना हिलमिल गया कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वो शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर आसामियों से बातचीत करने लगते तो जवाहिर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ या पांव को चाटता था। वो प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती थी और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती। राम टहल को भी उससे इतना स्नेह हुआ कि जब तक वो उसके सामने चौके में न बैठा, भोजन में स्वाद न मिलता। वो उसे बहुधा गोद में लेकर चिपटा लिया करते। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझे मनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वो किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहिर कुलेले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में ये पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते। जवाहिर की अवस्था 2.5 वर्ष की हुई। राम टहल ने उसे अपनी सवारी की बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। अब वो बछड़े से बैल हो गया था। गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला। रुपए आपने बहुत खर्च किए हैं, पर कहां जवाहिर और कहां ये, कहां लैंप और कहां दीपक। पर कौतूहल की बात यह थी कि जवाहिर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वो पैर आगे ना उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल आप ही पगहा हाथ में लेते और एक बार चुमकार कर कहते चलो बेटा, तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी को लेड़ता। दो दो कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता चला जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला न कर सकते। एक दिन संध्या समय जब जवाहिर नांद में खली और भूसा खा रहा था, राम टहल उसके पास खड़े उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे। एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, यहां क्यों खड़े हो महाराज, आगे जाओ। साधु ने कहा, कुछ नहीं बाबा, इसी बैल को देख रहा हूं, मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। राम टहल ध्यान देकर बोले, घर का ही बछड़ा है, साक्षात देवरूप है। ये कहकर महात्मा जी जवाहिर के निकट गए और उसके खुर चूमने लगे। राम टहल ने पूछा, आपका शुभागमन कहां से हुआ, आज यहीं विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो। साधु बोले, नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी पर सवार होना है, रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से विलंब होगा। राम टहल बोले, तो फिर और कभी दर्शन होंगे। हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा, तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देवरूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इन्हें पशु ना समझिए, ये कोई महान आत्मा है, इन्हें कष्ट ना दीजिएगा, इन्हें कभी फूल से भी ना मारिएगा। ये कहकर साधु ने जवाहिर के चरणों पर शीस नवाया और चले गए। उसी दिन से जवाहिर की और भी खातिर होने लगी, वो पशु से देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते, प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते, यहां तक कि वो उसे अपनी बहली में भी जोतना न चाहते।
लेकिन जब उनको कहीं और जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहिर उसमें जुटने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता कि सिर हिला हिला कर इस तरह अपनी उत्सुकता प्रकट करता कि राम टहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। दो एक बार वो दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला। इसलिए वह बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही न थे। उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहिर को अन्नग्रास देना शुरू किया। सुबह उसके दर्शन करने तो प्रायः सभी आ जाते थे। इस प्रकार 3 साल और बीते, जवाहिर को 6ठा वर्ष लगा। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कि कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य ना हो। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां लाकर रखी। जवाहिर को टीका लगवा दिया, कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी न खिला पिला दें, इस आशंका से वो अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे। संध्या हो गई। राम टहल नांद के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे। इतने में सहसा वही साधु महात्मा निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए, जाकर दंडवत की कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहिर ने जोर की डकार ली और धम्म से भूमि पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़े हुए उसके पास गए। उसकी आंखें पथरा रही थी। पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित्त हो गया। राम टहल घबराए हुए घर से दवाएं लाने दौड़े। कुछ समझ में ना आया कि खड़े खड़े से क्या हो गया। जब वो घर से दवाइयां लेकर निकले तब जवाहिर का अंत हो गया था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने शोकातुर न हुए थे। वो बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोते। रात उन्होंने रो रो कर काटी। उसकी सूरत आंखों से न उतरती थी। रह रहकर हृदय में एक वेदना सी होती और शोक से विह्वल हो जाते। प्रातः काल लाश उठाई गई, यथाविधि उसकी दाह क्रिया की, स्वयं आग दी, शास्त्रानुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उक्त साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी सांत्वना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी कुछ समझ नहीं आता कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी जी ने उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा ना होगा, लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, ये रहस्य आपकी कुछ समझ में आता है? साधु बोले, हां कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूं। कुछ मुझे भी बताइए, चित्त को धैर्य नहीं आता। साधु बोले, वो उस जन्म का कोई सच्चरित्र साधु भक्त परोपकारी जीव था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था? हां महाराज था। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था। वो तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधुजनों की सेवा सत्कार किया करता था। राम टहल बोले, मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वो इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित्र मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान ही नहीं आ सकता था। साधु ने फिर कहा, लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए सही, पर था वो विश्वासघाती। राम टहल ने कहा, संभव है दुरावस्था ने उसे धर्मपद से विचलित कर दिया हो। हां यही बात है, उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहां पशु का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी अवधि तक वो तुम्हारे यहां रहा। ज्यों ही अवधि पूरी हो गई त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन राम टहल के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। उनकी चित्त वृत्ति बदल गई, दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वो मन में सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। ये बात उनके ध्यान से कभी न उतरती थी।

0: तो श्रोताओं, सुनो कहानी में अभी आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पूर्व संस्कार। फिर किसी ऐसी ही कथा को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
4: अच्छा?
2: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शामे अवध सुबह काशी। यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है। भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी। ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
2: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
4: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
2: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्वेन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
4: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
2: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
4: बिल्कुल,
2: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
4: कौन से श्लोक?
2: अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियाँ वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
4: अच्छा।
2: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
4: क्या?
2: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर

0: ढाई हजार साल पहले का है।
1: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
1: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था, जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है, जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
1: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
1: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
1: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीप दान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हों।
1: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
1: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
1: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया, जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, तीन ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष नौ नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
1: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
1: हाँ,
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
1: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है, तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे, सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
1: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
1: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
1: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
1: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर है यहाँ की गलियाँ।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा? सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
1: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेघ घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट्स के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
1: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
1: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
1: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
1: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
1: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
1: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं।
0: हाँ।
1: श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
1: बिल्कुल।
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
1: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
1: बिल्कुल।
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
1: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
1: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
1: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
1: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
0: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
1: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही BHU के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
0: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का BHU की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
1: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
0: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
1: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
0: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
1: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
0: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
0: कंचन राजानी ने।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: .8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमेला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोतो, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भोजपुरी लोक गायन मोहम्मद रहीमुद्दीन का।
3: प्रस्तुति के लिए आप सभी से आज्ञा चाहते हुए सबसे पहले शिव भजन आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ।

इसके साथ ही अब संत कबीर साहब का ये भजन कौन ठगवा नगरी लुटल हो, कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छा गा जाऊँ।

इसके बाद एक और निर्गुण भजन जो है पिंजरा से राम, उसके बाद एक चैती गाऊंगा, उसके बाद एक विरह गाऊंगा।

एक बड़ा पुराना भजन है, कौने बगिया में लुकैला जाके मोरे सुगना। चूँकि क्या मैं ज़्यादातर निर्गुण ही गाता हूँ, मेरा फोकस भी इसी पे है कि इसको ही बढ़ाऊँ और इसी में सेवा करता रहूँ, तो इसलिए

उसी में इस चैती में वो चीज का सभी का वर्णन मिलेगा आपको। मौसम के बारे में तो है इसमें, पतझड़ सब चीजें इसमें, विरह भी है इसमें, आपको ये चीज है चैती जरूर, लेकिन इसमें सब रंग मिलेगा आपको।

पत्नी बोल रही हैं कि पिया परदेश चले गए हैं। अब वो विरह देखिए किस तरह से कैसे कैसे इसमें भाव, आपको कोशिश करूंगा जो मजा आए और अच्छा भी लगे।

अब एक विरह लोक गीत और गाता हूँ। अंगना में पड़ेला फुहरवा, ओ सरवा में चल बालमा, भोजपुरी गीत है, बड़ा बढ़िया भाव है इसका।

अभी आप मोहम्मद रहीमुद्दीन का भोजपुरी लोक गायन सुन रहे थे। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नवे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। शाम के 5 बजे हैं, अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमारा प्रसारण यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुने अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 161 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: किमु श्रेष्ठः किम यविष्ठो न आजगन किमीयते दूत्यम कद्य दूचिम न निंदिम चमसम यो महाकुलोग्ने भ्रातर द्रुण इद्भूति मूदिम। हमारे पास ये कौन आए हैं, ये हमसे श्रेष्ठ हैं या कनिष्ठ? ये भ्राता अग्निदेव हम इस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हव्यान्न को दूषित न करें, आप कृपया इसके उपयोग का उपाय बतलाएं। एकम चमसम चतुरह कृणोतन तद्वो देवा अब्रुवंतद्व आगमम सौधन्वना यद्येवा करिष्यथ साकम देवैर यज्ञियासो भविष्यथ। अग्निदेव ने कहा, हे सुधन्वा पुत्रो, आप इस अन्न को चार भागों में विभक्त करें, ऐसा देव शक्तियों का आपके लिए निर्देश है। इसी निवेदन के लिए हम आपके समीप आए हैं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप भी देवताओं के परम पद के अधिकारी होंगे। अग्निम दूतम प्रति यदब्रवीत नाश्वः कर्त्वो रथ उतेह कर्त्वः धेनुः कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वातानि भ्रातरनु वः कृत्ववेमसि। हे ऋभुदेवो, आपने हव्यवाहक अग्निदेव से जो निवेदन किया है कि अश्वों गौओं एवं रथों को उत्तम बनाएं, दोनों वृद्ध माता पिता को तरुण बनाएं, इन सभी कर्मों का निर्वाह करने वाले हे बंधु अग्निदेव, हम आपका अनुगमन करते हैं। चक्रिवांश ऋभवस्तद पृच्छत क्वेदभूद्यः स्य दूतो न आजगन यदावाख्यच्च मसाञ्चतुरः कृतानादित्वष्टा ग्नास्वन्तर्न्या नजे। हे ऋभुदेवो, कार्य करने के बाद आपने पूछा कि जो दूत रूप में हमारे समीप आए हैं वे कहाँ चले गए, जब त्वष्टा ने चार भागों में विभक्त अन्न उन अग्निदेव को अर्पित किया, तभी वे दूत स्त्रियां मंत्र प्रकट करने वाली वाणियां में समाहित हो गए। हना मैनां इति त्वष्टा यदब्रवीच्चमसं ये देवपान मनिन्दिषुः अन्या नामानि कृणवते सुते सचाम अन्यै रेनान कन्या नामभिः स्परत। त्वष्टा देव ने निर्देशित किया कि जो देवताओं के लिए उपयुक्त हविष्यान्नों की निंदा करते हैं उनका संहार करें, परस्पर सहयोग से अभिषुत सोम को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, तब त्वष्टा की कन्या अर्थात वाणी भी उन्हीं नामों से संबोधित करती हैं। इंद्रो हरि युयुजे अश्विना रथम बृहस्पतिर विश्वरूपा मुपाजत ऋभुर्विभवा वाजो देवाम अगच्छत स्वपसो यज्ञियम भागमैतन। इंद्रदेव अपने अश्वों को जोत कर अश्विनी कुमार अपने रथ को तैयार करके यज्ञ में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। बृहस्पति देव ने भी विभिन्न स्तोत्र रूप वाणियों को प्रारंभ कर दिया है। अतएव ऋभु विभवा और वाज भी देवताओं के समीप गए और यज्ञ भाग प्राप्त किया। निश्चर्मणो गाम ऋणीत धीतिभिर या जरंता युवशा तारकीणो तन सौधन वना अश्वादश्व मतक्षत युक्त्वा रथमुप देवाम अयातन। हे सुधन्वा पुत्रो, आपके श्रेष्ठ प्रयासों से चर्म रहित गौ को पुनर्जीवन मिला। अतिवृद्ध माता पिता को आपने तरुण बनाया। एक घोड़े से दूसरे घोड़े को उत्पन्न करके आपने अपने रथ में जोत कर देवों के समीप उपस्थित हुए।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 161 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

इस संसार में ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं, जो कोई भी उम्मीद न होने के बावजूद हमेशा अपने प्रयास में लगे रहे। जिस प्रकार बिना घिसे हीरे पर चमक नहीं आती, ठीक उसी तरह बिना गलतियां किए मनुष्य संपूर्ण नहीं बनता। तो फिर असफल होने पर अपने प्रयास करना ना छोड़ें, कभी न कभी हम लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे।

ईश्वर के स्मरण यानी सुमिरन से बढ़कर प्रभु को पाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका कुछ भी नहीं। मन में उसका ध्यान हो

श्रोताओं, देखा जाए तो ये जीवन एक बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी छेद कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे ये जीवन

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं, इस जीवन की सांसें हम सभी के लिए निश्चित गिनती की हैं। सुबह होती है और शाम में ढल जाती है, रात आती है तो साथ में लाती है एक नई सुबह। समय कैसे पंख लगाकर उड़ता चला जाता है हम जान ही नहीं पाते, और जीवन जीवन यूं ही बीतता जाता है। तो कुछ समय परोपकार और आध्यात्म के लिए भी निकालें, ताकि जीवन बीतने पर पछतावा ना हो।

वैसे यदि इच्छाओं की गिनती करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे मन में इच्छाएं तो अनंत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। मगर जब ध्यान से सोचें तो हम पाएंगे कि हमारे लिए दो ही चीजें बहुत आवश्यक है, और वो है एक तो स्वस्थ शरीर और दूसरा उस स्वस्थ शरीर में शांत और सुंदर मन।

किसी की बुराई तलाश करने वाले मानव का चरित्र उस मक्खी से तुलना किया जा सकता है जो सारे खूबसूरत शरीर को छोड़कर केवल घाव पर ही बैठ जाती है। जरूरत है अपने में बुराइयां ढूंढने की, ना कि

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन करा के श्रोताओं को नमस्कार। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था और 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश रजवाड़ों को अंग्रेजों ने छल से कब्जे में ले लिया था। सिराजुद्दौला बहुत ही अच्छा शासक था और बहुत संस्कारवान भी। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार की इजाजत कभी नहीं दी। इसके लिए अंग्रेजों ने कई बार बंगाल पर हमला किया लेकिन हमेशा हारते रहे। अंग्रेजों ने कभी भी युद्ध करके भारत में किसी राज्य को नहीं जीता था। वे हमेशा छल और साजिश से काम करते थे। उस समय का जो बंगाल था वो बहुत बड़ा राज्य था। उसमें शामिल था आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर के सातों राज्य और बर्मा। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच भयंकर लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमेशा ये सवाल रहा कि आखिर सिराजुद्दौला जैसा शासक हार कैसे गया, और ये सवाल भी कि आखिर अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास कितने। भारत में पलासी के युद्ध के ऊपर जितनी भी किताबें हैं उनमें से किसी में भी इस संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। इस युद्ध की सारी जानकारी उपलब्ध है लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में। ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां भारत की गुलामी के समय के 20,000 दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसमें उपलब्ध दस्तावेजों के हिसाब से अंग्रेजों के पास पलासी के युद्ध के समय मात्र 350 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। किसी के भी लिए ये समझना मुश्किल नहीं है कि एक तरफ जहां 350 सिपाही हों और दूसरी तरफ 18,000 सिपाही, तो युद्ध कौन जीतेगा। लेकिन 350 सिपाही वाले अंग्रेज जीत गए और 18,000 सिपाही वाला सिराजुद्दौला हार गया। अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन में ये कहा जाता था कि अंग्रेजों के 5 सिपाही भारत के 1 सिपाही के बराबर थे। तो सवाल ये उठता है कि इतने मजबूत 18,000 सिपाही उन कमजोर 350 सिपाहियों से हार कैसे गए।

अंग्रेजी सेना का सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने का युद्ध हुआ तो एक घंटा भी नहीं लगेगा और अंग्रेज युद्ध हार जाएंगे, और क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात बताई भी थी। इन दस्तावेजों में क्लाइव की दो चिट्ठियां हैं जिसमें उसने ये प्रार्थना की थी कि अगर पलासी का युद्ध जीतना है तो मुझे और सिपाही दिए जाएं। उसके जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से ये चिट्ठी भेजी गई कि हम अभी नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और पलासी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये युद्ध है, तुम्हें 350 सिपाहियों से ही काम चलाना होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने तब अपने दो जासूस लगाए और उनसे कहा कि पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की फौज में कोई आदमी है जिसे हम रिश्वत दें, लालच दें, और रिश्वत के लालच में अपने देश से वो गद्दारी कर सके। उसके जासूसों ने पता लगाकर बताया कि उसकी सेना में एक आदमी ऐसा है जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है, और अगर आप उसे कुर्सी का लालच देंगे तो बंगाल के 7 पुश्तों को भी बेच देगा, और वो आदमी था मीर जाफर। मीर जाफर ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। ये बातें रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफर को एक पत्र लिखा। ये पत्र भी उस दस्तावेज में उपलब्ध है। उसने उस पत्र में दो ही बातें लिखी, पहली ये कि अगर तुम हमारे साथ दोस्ती करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करो तो हम युद्ध जीतने के बाद तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, और दूसरी बात ये कि जब तुम बंगाल के नवाब हो जाओगे तो बंगाल की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और उस संपत्ति में से 5% हमें दे देना। मीर जाफर तो दिन रात यही सपना देखा करता था। उसने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को एक पत्र लिखा कि मुझे आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। क्लाइव ने इस संबंध में अंतिम पत्र लिखा और कहा, तुमको बस इतना करना है कि जिस दिन युद्ध शुरू हो उस दिन अपने 18,000 सिपाहियों से कहना कि वे मेरे सामने समर्पण कर दें। मीर जाफर ने कहा कि ये हो जाएगा, लेकिन आप अपनी जबान पर कायम रहिएगा। क्लाइव का जवाब था कि हम बिल्कुल अपनी जबान पर कायम रहेंगे। युद्ध शुरू हुआ 23 जून 1757 को, और बंगाल के 18,000 सिपाहियों ने सेनापति मीर जाफर के कहने पर 40 मिनट के अंदर समर्पण कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव के 350 सिपाहियों ने बंगाल के 18,000 सिपाहियों को बंदी बना लिया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम में बंद कर दिया। 10 दिनों तक सबको भूखा प्यासा रखा गया और 11वें दिन सबकी हत्या कर दी गई। हत्या करवाने में मीर जाफर क्लाइव के साथ शामिल था। उसके बाद क्लाइव ने मीर जाफर के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या करवाई। उस समय मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी।

वादे के अनुसार क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बाद में क्लाइव ने अपने हाथों से मीर जाफर को छुरा घोंप कर मार डाला। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को जमकर लूटा और 900 पानी के जहाज भरकर सोना चांदी हीरा जवाहरात लंदन ले गया। वहां की संसद में जब क्लाइव गया तो वहां के प्रधानमंत्री ने उससे पूछा कि क्या तुम सारे भारत को लूट कर लाए हो, तो क्लाइव ने कहा कि नहीं, मैंने तो भारत के एक शहर कलकत्ता को लूटा है। फिर उससे पूछा गया कि ये सारा सामान कितना होगा, तो क्लाइव ने कहा मैंने इसकी गणना तो नहीं की लेकिन करीब 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का होगा ये सब। उस समय के स्टर्लिंग पाउंड की कीमत में आज 300 गुना कमी आई है और आज के हिसाब से अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो शायद हमारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ऐसा करने वाला अकेला नहीं था, ऐसे 84 अधिकारी भारत आए थे और सब ने भारत को बेहिसाब लूटा। काश पलासी के युद्ध में मीर जाफर की भूमिका ये न रही होती कि अंग्रेजों आओ तुम्हारा स्वागत है इस देश में, तुम्हें जितना लूटना है लूटो, बस मुझे कुछ पैसा दे दो और एक कुर्सी दे दो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, लेकर आई हूं आपके लिए बाल सभा कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में कैसे बने इको दोस्त। तो सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज बच्चों हम जो बात करने वाले हैं ना, वो विषय सुनकर आप और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये विषय हम सभी से जुड़ा है, आपसे, मुझसे, आपके घर से, मेरे घर से, आपके स्कूल से, हमारे शहर से, हमारे गांव से, पशु पक्षी पेड़ नदियां बादल सब इससे जुड़े हैं, है ना? क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये जानना ज़रूरी है कि आज हम कैसे अपनी बात को आपके सामने रखें। बच्चों आज का विषय मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बरसात आने वाली है तो कैसे बने इको दोस्त। अब जब कुछ ही दिनों में, या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले से ही हमारे घर के दरवाजे पर बारिश की बूंदों ने दस्तक दे दी है। गर्मी की तपती दोपहर के बाद अब छम छम छम बारिश की आवाज़ आने लग गई है, और जब ये धरती पर बूंदें गिरती हैं तो कितनी अच्छी सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है ना। हम सब लोग बाहर निकलते हैं, कई बच्चे छाता लेकर जाते तो हैं स्कूल लेकिन फेंक देते हैं या छुपा देते हैं, गीले होकर आ जाते हैं और फिर जहाँ भी पानी भरा मिलता है वहाँ छप छप ज़रूर करते हैं, है ना, पैरों से, जूते भले ही गीले हो जाएं, भले ही मम्मी ने इस बार नए शूज़ लिए हो, लेकिन क्या हुआ, बरसात का मौसम है तो एक बार तो पानी जहाँ भरा हुआ है जिस गड्ढे में वहाँ पे छपाक करना ही है, है ना। क्योंकि ये सब हमको अच्छा लगता है। सच बात तो ये है कि मौसम जब जब बदलता है तब तब कभी हमें अच्छा लगता है और कभी हमें पुराना मौसम इतना अच्छा लगता था कि नया वाला जो चेंज आ रहा है ना वो अच्छा नहीं लगता। गर्मी सबको बहुत पसंद होती है क्योंकि उसमें छुट्टियां होती हैं, उसमें बहुत सारे आइसक्रीम खाने को मिलती है, हमने बोला था ना बर्फ़ का गोला कई बच्चे खाते हैं। लेकिन जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना तब एक थकान हम सबको घेर लेती है, क्योंकि ना कहीं खेलने निकल पाते हैं, लू चल रही है, जहाँ निकल रहे हैं गर्मी के गर्म गर्म हवाओं के ऐसा लगता है गाल पे थपेड़े से पड़ रहे हैं, है ना। अभी थोड़े ही दिन पहले हम शाम को निकल रहे थे तो लग रहा था नहीं नहीं मत निकलो, रात में भी ऐसा लग रहा था जैसे दिन है, क्योंकि बच्चों गर्मी का बहुत असर इस बीच हमको देखने के लिए मिला। और जब इतनी गर्मी के बाद बारिश की बूंदें गिरी ना तो ऐसा लगा जैसे एक बारिश में सारी गर्मी उड़नचू हो गई, भाग गई, डर गई बूंदों से, है ना। इसीलिए तो मुझे बारिश बहुत पसंद है। कहीं भी देखिए आप, दूर दूर तक नज़र डालिए, धरती पर आपको हर जगह ऐसा लगेगा जैसे पेड़ों का रंग कुछ और सुंदर हो गया है, पौधे जैसे पहले से अधिक खिलखिला रहे हैं, जैसे मिट्टी खुद भी नाचने के लिए इधर से उधर कूदा फादी कर रही है ना। पानी के साथ छपाक जैसे होता है तो थोड़ी सी मिट्टी कहीं किसी के कपड़े पे गुड़ जाती है, कहीं हमारे पीछे जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो छींटे पड़ जाते हैं। तो कई बार इसको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खुद ब खुद नाचना चाह रही है और खुद ब खुद वो पेड़ पौधे सब हिल के हमारा स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन हम क्या करें, प्रकृति ने तो अपना सुंदर रूप दिखा दिया है, लेकिन हम अपने सुंदर नागरिक होने का परिचय कैसे दें। तो बच्चों, बात बहुत सीधी और बहुत सरल है कि हम इको दोस्त बने और प्रकृति को, धरती को अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक, अच्छा दोस्त होने का परिचय दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इको दोस्त होता कौन है। तो बच्चों, जैसे हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है जो हमारी मदद करता है, हमारा ध्यान रखता है, वैसे ही जो व्यक्ति प्रकृति का ध्यान रखता है, पेड़ लगाता है, पानी बचाता है, जानवरों की रक्षा करता है, पक्षियों से प्रेम करता है, वो इको दोस्त कहलाता है। और इको दोस्त बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम करके भी हम इको दोस्त बन सकते हैं। अब बताऊं आपको वो छोटे छोटे से काम कौन से हैं। जैसे बच्चों, पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बस इन छोटे छोटे कामों को करके ना हम धरती से दोस्ती कर सकते हैं, हम प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ये बातें होने लगती हैं जब बारिश आने वाली होती है कि पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए? क्योंकि एक तो बच्चों, जब बारिश होती है तो पौधे, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में अच्छे फलते फूलते हैं, उनकी जगह बदलती है, उनका घर बदलता है, तब भी वो बच जाते हैं, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस मौसम में हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब क्योंकि इन दोनों का आपस में संबंध है, तो क्या संबंध है? पेड़ धरती के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में ये मदद करते हैं। और तो और, ये हरियाली जो है ना, वो बादलों को भी आकर्षित करती है। और जब बादलों को आकर्षण मिलता है तो आपको तो पता ही है, बस बारिश के आसार बढ़ते हैं, पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं, आप कहीं से भी गुजरिए, जैसे जब हम भोपाल में ही कोलार की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वर्ण जयंती पार्क जैसे ही आने को होता है तो बच्चों वहाँ का टेम्परेचर कुछ हमें कम लगने लगता है, या वहाँ पे गर्मी हमें कम लगने लगती है। और जब उस पार्क के हम अंदर चले जाते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी और कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं बच्चों। कभी आप जाइए और देखिए, वहाँ गर्मी के मौसम में भी आप अंदर जाकर बैठोगे तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी। पेड़ सीधे सूरज से आपको मिलने से रोकते हैं, मतलब क्या है, दरवाजे होते हैं ये, है ना, अच्छे दरवाजे होते हैं, धूप को सीधे आपके पास नहीं आने देते हैं। और तो और, ऑक्सीजन आपको जो मिलती है, जो आपकी प्राणवायु है, उसको भी ये साफ करते हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छी बताऊँ, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ चिड़िया की चूँचू ज़्यादा क्यों सुनाई आती है, कभी सोचा है? क्योंकि चिड़िया का घर होता है पेड़। और आप मान लीजिए कि उस पे फल लगे हुए हैं तो क्या ही कहने, जैसे इस वक्त खूब आम के पेड़ आपने देखे होंगे ना, जहाँ जहाँ आम के पेड़ लगे होंगे वहाँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई आम टपकेगा तब आप खाओगे, या फिर आप खुद तोड़ोगे। खुद तोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको साझा आम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो आम पेड़ पर लगे लगे पक गया तो पहले आप नहीं खाएंगे, बल्कि पहले कोई गिलहरी खाएगी, फिर कोई चिड़िया खाएगी, और वो फल सबके पास से होता हुआ एक दिन अंदर से खाली होता हुआ नीचे टपक जाएगा, तब आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पक्षियों के लिए खाना पीना होता है, पक्षियों के लिए छांव होती है, और पक्षियों के लिए उस स्थान पे थोड़ी नमी भी होती है, तो वह अच्छे से वहाँ रह सकते हैं, है ना। इसलिए पेड़ों का धरती से बड़ा गहरा संबंध है। अब बच्चों, अगर पेड़ कम हुए तो गर्मी बढ़ेगी, जल संकट बढ़ेगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी और पक्षियों की संख्या भी कम होगी। इसलिए बरसात का मौसम पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब हमारे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आज मनीषा दीदी इतनी सारी बातें कर रही हैं, लेकिन ये तो बता ही नहीं रही है कि हम लोग करें क्या। तो बच्चों, आप क्या क्या कर सकते हैं वो अब बताती हूँ। आपका पहला कदम ये हो कि आप कभी भी कोई भी अच्छे दिन पर एक छोटा सा पौधा लगाइए, जैसे आपकी बर्थडे है, जैसे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, जैसे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपने क्लास में टॉप किया, या आपको कोई उम्मीद है, आप सोच रहे हैं कि इस बार कम नंबर आए हैं, अगले साल मैं इतने नंबर लाऊंगा, तो आप फिर ऐसा करिए कि एक पौधा लगाइए, है ना, और सोचिए कि जब पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही मेरी हाइट भी बढ़ेगी, वैसे ही मैं भी बढ़ूंगा, मैं भी अच्छी पढ़ाई करूंगा, तो आपको मज़ा आने लगेगा। और सच में बच्चों, मैंने आपको एक बार एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि हमारे कॉलोनी के पार्क में एक बच्चे ने आम खाया और गुठली वहाँ पर साफ करके, बिल्कुल साफ करके उसने मिट्टी में गाड़ दी। थोड़े दिन बाद ना उसमें से जब अंकुर फूटे, फिर छोटे छोटे से वो बढ़ना शुरू हुआ। और मैं सच बताऊं आपको, अब तो ऐसा हो गया है कि वो पेड़ उस बच्चे के घुटने तक आ गया है। तो वो जब उस पेड़ के पास आती है ना, तब उसको इतना प्यार करती है और हर बार हर किसी को ये बताती है, आंटी ये मैंने लगाया था। कभी अपने भाई के साथ आएगी ना तो हमेशा कहेगी, देख रहे हो वो पेड़ मैंने लगाया था। मतलब उसको इतना इस चीज़ की खुशी है, इस चीज़ का इतना गर्व है कि ये पौधा जो बढ़ रहा है वो दरअसल उसके कारण है। उसने मिट्टी में एक गुठली को सिर्फ मिट्टी से दबा दिया था। आप सोचिए, कुछ नहीं किया था, उसने आम खाया था, गुठली को साफ किया था और कॉलोनी के पार्क में मिट्टी जहां उसको ज्यादा दिखी उसने थोड़ी सी मिट्टी को खोदा, उसके नीचे उस गुठली को दबा दिया। अब वो पौधा किस्मत से अंकुरित हो गया, अब वो जो गुठली थी वो अंकुरित हो गई। कितनी अच्छी बात है ना। ये आपके आत्मविश्वास में भी बहुत सहायक होती है बच्चों। अब आप आज संकल्प ले सकते हैं कि आप एक पौधा इस बारिश में जरूर लगाएंगे। मैं तो कहती हूँ एक क्यों, बहुत सारे पौधे लगाइएगा। अब आप पूछेंगे कौन सा पौधा लगाएं दीदी, तो मैं

0: हैं। और हाँ, कभी कभी मम्मा को ले जाकर, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन होगा तो उसकी फ़ोटो खींचिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए किस पौधे को आपने लगाया था, है ना। और अपने नानी नाना को, दादी दादा को उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं, अगर वो पास में है तो वैसे ही दिखा सकते हैं, और उस पर एक अच्छा सा पत्र लिख सकते हैं, एक पत्र पौधे के नाम, है ना। कैसे, अब आप सोचो, तो आप लिखोगे प्यारे नीम या प्यारे आम या प्यारे अमरूद, मैंने तुम्हें लगाया था, मैंने इस जगह पे लगाया था, मैंने तुम्हें इस तारीख को लगाया था, अब तुम इतने बड़े हो गए हो या तुम्हें छोटी छोटी सी पत्तियां आने लगी हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक पौधे के बहाने आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा और सच्चा दोस्त बनाया है। और अनजाने में आप किसके दोस्त बन गए हैं, धरती के, है ना। तो आप ये छोटे छोटे से काम किया करिए। बहुत से बच्चे इस वक्त सोच रहे होंगे कि दीदी इतनी सारी चीज़ें बता रही हैं, लेकिन हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, तो क्या करें, हम कहाँ लगाएं। तो कोई बात नहीं है बच्चों, पुराने सामान तो होंगे, उनका इस्तेमाल कीजिए। पुरानी कोई बाल्टी होगी, कोई मटका आपके आसपास होगा, कोई प्लास्टिक की बॉटल होगी, कोई डिब्बा होगा, पुराना टायर होगा, ऐसे बहुत टूटा हुआ गमला होगा, इन सब को आप सुंदर रंगों से सजाकर गमले की तरह उपयोग कर सकते हैं। और इसे ही कहते हैं कि कचरे से आप कोई उपयोगी वस्तु बना सकते हैं, और वो भी ऐसी जिससे पर्यावरण भी बचेगा और घर भी सुंदर लगेगा। बच्चे छोटे छोटे काम करके ना आप अपना घर का मिनी गार्डन भी बना सकते हैं। आप, जैसे कि मैंने कहा, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे पास तो जगह नहीं है, तो आप अपनी घर में, बालकनी में, छत पे, खिड़की के पास थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाइए। अगर और जगह कम है तो मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है बच्चों, वो होते हैं लताओं वाले पौधे, है ना, जिसमें बहुत मोटा तना नहीं होता, बहुत जगह नहीं घेरते, लेकिन उसकी लताएं दूर दूर तक फैल जाती हैं, बेल जिसे कहते हैं ना, जैसे चूही की बेल बहुत सुंदर होती है बच्चों, और मधुमालती की बेल बहुत सुंदर होती है, एक टिकोमा की बेल बहुत खूबसूरत होती है। टिकोमा में सर्दियों में बहुत अच्छे नारंगी फूल आते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे झूमर हो, ऐसे ही बच्चों मधुमालती में ना बहुत सारे इकट्ठे दोस्त जैसे इकट्ठे रहते हैं वैसे ही फूल आते हैं। तो ये सब वो पौधे मैं आपको बता रही हूँ जहाँ बहुत सारी जगह ना हो, लेकिन आपको अगर उस जगह हरियाली करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक आइडिया और बच्चों, आप अपनी कॉलोनी का या मोहल्ले का ग्रीन क्लब भी बना सकते हो, है ना, क्योंकि आपको अकेले काम करना तो अच्छा लगता नहीं है, और ये बात मुझे पता है कि बच्चों को जो काम करना है वो मिलके करना है, और जब आप मिलके काम करते हो ना तो आपकी बात सुनी जाती है। तो आप अपने कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, है ना, उसका नाम आप ग्रीन क्लब रखिए या कुछ भी, हरित क्लब या जो आपका मन आए, या धरती मित्र मंडली, कुछ भी अच्छा सा नाम रखिए। और इस क्लब में ना 5-7 बच्चों को ज़रूर जोड़िए, और फिर आप 5-7 बच्चे मिलकर महीने में कोई एक पौधा लगाइए, या सप्ताह में एक दिन उस जगह की सफाई पर निकलिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, पौधों की देखभाल करिए। तब आपको समझ में आएगा बच्चों कि सच में कुछ ऐसे काम हैं जो करके आपको बहुत बहुत बहुत संतुष्टि मिलेगी, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कॉलोनी में खाली जगह पड़ी है, और जब वो जगह खाली होती है तो धीरे धीरे जो लोगों की प्रैक्टिस है ना बच्चों, वो क्या है कि जैसे ही जगह खाली दिखती है, या तो उस जगह पर कोई कबाड़े का सामान रख देते हैं लोग बाग, या क्या करते हैं कि उस जगह पर हो सकता है कोई कचरा ही फेंक जाए, फिर वो खाली जगह कचरे वाली जगह पर बदल जाती है, या उस जगह पर कोई गाड़ी पार्क करने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस जगह को सुंदर बनाना है। वो जो कॉलोनी का हम या मोहल्ले का हम ग्रीन क्लब बता रहे हैं ना आपको बच्चों, उस जगह पे हमने क्या करना है, हमने उस जगह को सुंदर सा पेंट करना है सारे बच्चे मिलके, क्योंकि ग्रीन क्लब में तो कई बच्चे होंगे, तो आपको पहले पेंट करना है, फिर आपके घर में जितना पुराना सामान है जैसे बाल्टी, मटका, प्लास्टिक का जो आपकी चीज़ें हैं, उन सबको ले आइए, और फिर आप देखिए कि उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हो आप लोग, है ना, कैसे आप रिसाइकिल कर सकते हो चीज़ों को। आप कॉलोनी के मम्मी पापा और जो आपके दोस्तों के होंगे और जो आंटी अंकल होंगे, उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए। एक कॉलोनी मुझे याद है, एक बार मैं दिल्ली गई थी बच्चों, आपको वो बात बताते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो कॉलोनी धीरे धीरे ज़ीरो वेस्ट बन गई है, मतलब उस कॉलोनी से कचरा बाहर जाता ही नहीं है। यहीं तक नहीं रुके हैं वो लोग, उस कॉलोनी में जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत की थी ऐसे ही छोटे छोटे कामों से, कि वो संडे को मिलते थे और फिर एक जगह बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, वो बस एक ही बात कहते थे, गीला कचरा एक जगह डालिए, सूखा कचरा एक जगह डालिए। ये एक मैसेज कॉलोनी के हर घर में देते देते देते देते आज वो कॉलोनी इतनी आगे निकल गई कि जब पर्यावरण दिवस था तब उन लोगों को इनाम मिला, और उसमें जो राशि मिली वो उन लोगों ने पता है किसे दी? उस कॉलोनी में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को। कितनी अच्छी बात है ना कि एक छोटी सी शुरुआत, छोटी सी, बहुत छोटी सी, कहाँ तक पहुँच गई। अब ये स्थिति हो गई है कि अभी तक तो गीला कचरा सूखे कचरे की बात थी, अभी वो ई वेस्ट को बिल्कुल अलग करते हैं। और बच्चों, वो लोग कॉलोनी में जहाँ जगह दिखती है, जहाँ खाली जगह है, वहाँ पौधा लगा देते हैं। उन्होंने लगभग अपनी कॉलोनी को इतना हरा कर दिया है कि उनको गाड़ियों के लिए किसी शेड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिससे धूप आने से बच सके, क्योंकि उन्होंने वैसे ही अपनी कॉलोनी को बहुत हरा भरा बना दिया है। जहाँ बहुत हरियाली होती है ना बच्चों, वहाँ धूप बहुत तेज़ नहीं लगती है, क्योंकि सूरज को भी ना आपको देखने में, आपको घूरने में ना एक पर्दा जैसा, मैंने बोला था ना दरवाजे होते हैं पेड़, वो दरवाजे जैसा फील होता है, वो एकदम डायरेक्ट आपको नहीं घूर सकता है सूरज। तो आपको क्या है, हरियाली की चादर ज़रूर बनानी है, या आपको ऐसा ज़रूर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अब बच्चे एक बार ये भी कह रहे थे कि दीदी, हम कॉलोनी में जब इतने सारे बच्चे होते तो एक दिन किसी की बर्थडे, एक दिन किसी की बर्थडे, शुरुआत में क्या होता है कि सबको आप एक एक बार तो बहुत अच्छा गिफ्ट दे देते हो, थोड़े दिन बाद आप रियलाइज़ करते हो कि अगर कॉलोनी में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, हर बच्चे की बर्थडे, मतलब एक महीने में अगर दो तीन, मतलब 12 महीने ही होते हैं ना बच्चों, 12 महीने में दो बच्चों की तो कम से कम पड़ेगी, और किसी महीने में तीन भी पड़ जाएगी, तो तीन बच्चों के लिए अगर आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लोगे तो पापा मम्मी की पॉकेट पर भी तो असर आएगा ना। तो देखिए, अगर आपने अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटी सी नर्सरी जैसी बनाई हुई है तो कितना अच्छा होगा कि आप उन्हीं में से कुछ पौधे निकालोगे, छोटे छोटे से, अगर आपके किसी के घर से डिस्पोजेबल ग्लास निकलते हैं या कुछ भी ऐसा निकलता है तो उसमें आप उनको लगाओगे और गिफ्ट कर दोगे। तो पहली बात तो आपको महंगा उपहार खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, आप हर बार एक मैसेज दोगे, जब जब किसी को पौधा दोगे तब तब उसके साथ में अनजाने में एक मैसेज भी पहुँचेगा कि ये बच्चे कितने होशियार हैं और कितने समझदार हैं। देखो, ये सबको हरियाली का उपहार देते हैं, है ना, और ये देख के बड़े बड़े लोग भी आपसे सीख लेंगे। और आपको पता है, कई बार बहुत सारे लोग स्मृति में भी पौधा लगाते हैं, है ना, जैसे किसी का कोई प्रियजन गुजर जाता है तो भी वो पौधा लगाते हैं उसके नाम से। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब जब आप उस पौधे को देखते हैं, उस पौधे को बड़ा होता हुआ देखते हैं, वृक्ष बनता हुआ देखते हैं, उसकी छांव में जाकर बैठते हैं, तो आपको याद आता है कि ये बिल्कुल उसी बुजुर्ग की तरह है जो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़ गए, है ना। तो उस वृक्ष का साथ भी आपको आपके बुजुर्गों की याद दिलाता है। लेकिन बात यह है कि क्या पौधा लगाना ही पर्याप्त है? तो मैं कहूँगी नहीं, सिर्फ पौधा लगाना तो पर्याप्त नहीं है बच्चों, क्योंकि उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। एक पौधा लगाना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन उस पौधे को पेड़ बनाना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों, क्योंकि उसे आपको नियमित पानी देना पड़ता है, आपको उसे जानवरों से भी बचाना पड़ता है, ये भी देखना होता है कि आसपास जंगली घास ना आ जाए, ये भी देखना होता है कि कहीं वो पौधा सूख तो नहीं रहा। तो क्या करेंगे इसके लिए, बताइए भाई। ग्रीन क्लब, किसी की जिम्मेदारी पानी देने की, किसी की जिम्मेदारी छोटी छोटी लकड़ियों से फेंसिंग बनाने की, किसी की जिम्मेदारी उसको सूखने ना देने की, और किसी की जिम्मेदारी उसकी रख रखाव की। तो बस इसीलिए कहते हैं ना कि अकेले कोई काम नहीं सधता, हमको दो तीन लोगों को तो साथ में लेके चलना होता है। अब हम बात कर रहे हैं ना कि बरसात आने वाली है तो इको दोस्त बने, तो बरसात का क्या क्या खास मूल्य है हमारे पौधों के लिए? तो बच्चों, ये बारिश का पानी बहुत कीमती होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें नहाते हैं, धोते हैं, छप छप करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं और फिर इसे बह जाने देते हैं। नहीं, बाल सभा सुनने वाले बच्चे तो समझदार होते हैं ना, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं हम बच्चों? हमें इसे बचाना है। जो घर की छत से पानी बह बह कर चला जा रहा है, पहले तो हम मम्मी पापा से बात करें कि हम वाटर हार्वेस्टिंग की कहीं कोई योजना बना सकते हैं क्या। कॉलोनी में जो आपकी समितियां हैं, जो मोहल्ले की समितियां, उसमें बात करिए, जो आपका ग्रीन क्लब है उसमें जो आप बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाएं, बात करें क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वर्षा के जल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गंभीर जवाब मिलेगा, ज़रूर आपके लोग बात मानेंगे। फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे तरीकों से टंकी में पानी को इकट्ठा कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए और ये ख्याल ज़रूर रखिए कि कैसे भी पानी को व्यर्थ नहीं बहने देना है, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलोनी और मोहल्लों में जो पार्क वाली जगह है उसको बहुत ज़्यादा सीमेंटेड ना बनाया जाए, है ना। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो पानी को धरती के भीतर जाने में मदद करती है बच्चों। उसके बाद ये भी है कि गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में पक्षियों को हमारी सहायता की आवश्यकता होती है ना। तो अपने घर की छत पर, बालकनी में, आंगन में, आप गर्मियों में जैसे पानी रख रहे थे ना, थोड़ा दाना रख रहे थे, अब चूंकि बरसात हो जाएगी पक्षियों को दाना पानी बहुत पानी की तो ज़रूरत नहीं होगी, पर हाँ दाने की तो होगी, तो थोड़ा शेड में आप ध्यान रखें कि दाना गीला ना हो, आकर पक्षी खा सकें, आप उनको देखकर आनंद ले सकें, बस यही है। इसके बाद हमें यह भी देखना है कि पर्यावरण के शत्रु कौन कौन से हैं, है ना। तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम किसका आता है, प्लास्टिक का। आप अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है दुकानों से प्लास्टिक के थैले लेता हुआ आ रहा है उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है आंटी या अंकल अगली बार घर से कपड़े का थैला लेकर जाइएगा। या फिर वही ग्रीन क्लब अगर आपने बना लिया या बनाने वाले हो तो आप पुराने कपड़े कलेक्ट कर सकते हो, और इस चीज़ के लिए आप सबसे थोड़ी सी हेल्प लेकर या किसी बड़े को ये जिम्मेदारी देकर पुराने कपड़ों से थैले बनवा सकते हो, कॉलोनी और मोहल्ले में बंटवा सकते हो। प्लास्टिक की बोतल का भी कम उपयोग करो, इससे अच्छा होता है कि अगर हम स्टील के बर्तन यूज़ करें, है ना, स्टील का ग्लास यूज़ करें। और तो और आजकल स्कूल के लिए बड़े अच्छे अच्छे टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स आपके स्टील में भी आ रहे हैं, बॉटल्स भी आ रही हैं, उनका उपयोग करिए। ये जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक होती है ना बच्चों, उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों ये एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बात से मुझे याद आया कि कल मैं एक जगह जा रही थी तो मैंने देखा कि सड़क पर कुछ लोग ठंडा शरबत डिस्पोजिबल में बांट रहे थे, डिस्पोजिबल ग्लासेस में बांट रहे थे। चलिए वहाँ तक भी ठीक है कि आप बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पीने वाले थे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और अगर उनमें से एक दो लोग भी वहाँ थे, मैं आपको जगह भी बता सकती हूँ, बिट्टन चौराहे पर ये हो रहा था जो दशहरा मैदान है उसके सामने की ये बात है। तो कहानी में ये हुआ कि लोग जहाँ पी रहे थे, स्कूटर पर बैठे थे तो स्कूटर से वो डिस्पोजेबल ग्लास को फेंक रहे थे, अगर गाड़ी में बैठे थे तो वो गाड़ी से फेंक रहे थे। तो अगले चौराहे तक सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस मैंने उड़ते हुए देखे, क्योंकि उनमें कोई वजन नहीं होता तो वो जरा सी भी आंधी जैसी चले तो वो उड़ते हैं। फिर कितनी गलत बात है ना बच्चों, हम सब चीज़ें बच्चों को ही सिखाने की कोशिश क्यों करते हैं, हम खुद बड़े होकर ये क्यों नहीं सीखते हैं कि हमको भी इस धरती को, इस प्रकृति को, अपनी सड़कों को बचाना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, है ना। तो आप भी बच्चों अगर किसी को ऐसा करते देखें तो ज़रूर टोकिएगा, मगर प्यार से, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छी भाषा के साथ। तो आज की बाल सभा में बच्चों हमने आपको खेल खेल में इको दोस्त बनना तो सिखा दिया है, अब जल्दी से हमारी बारी है संकल्प की। हम थोड़े से संकल्प ले लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगली बाल सभा में भी हम जब आपसे मिलेंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे संकल्प इतने ही हैं। कि मैं जहाँ तक संभव होगा धरती की या धरती का अच्छा दोस्त बनूंगा या बनूंगी। मैं इस बरसात के मौसम में कोई पौधा अवश्य लगाऊंगी। मैं उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसका ख्याल रखूंगा या रखूंगी। मैं प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगी। मैं किसी भी ऐसे जीव को परेशान नहीं करूंगी जो मेरे आसपास है, जैसे चींटियां भी हो सकती हैं, चींटा भी हो सकता है, और बरसात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनसे हमें बचकर तो रहना है लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और हाँ, अपने आसपास मैं स्वच्छ वातावरण निर्मित करूंगा या निर्मित करूंगी। अगली बार कुछ ऐसी ही बातें फिर करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए बाल सभा कार्यक्रम समाप्त करने की। तो बच्चों नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आज़ाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया, देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
2: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, जब जब भी हम अपने सेना का जिक्र करते हैं तो हमारा मानस एक आत्मसम्मान से भर जाता है, गर्व से भर जाता है और देश के प्रति एक अभिमान का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है। निस्संदेह इसका श्रेय जाता है हमारी भारतीय सेना के उन वीर सिपाहियों को जो सरहद पर, आकाश, समुद्र, जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में हमारे लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। देश के प्रति उनके बलिदान, उनके पराक्रम से, उनकी वीरता और उनके साहस की शौर्य गाथाओं से ही भारतीय सेना का इतिहास लिखा गया है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व, हम एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहे हैं। कालचक्र के अब हम उस खंड में प्रवेश कर रहे हैं जो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा दूर की बात नहीं है। जी हाँ, आज से महज 26-27 साल पुरानी ही बात है। आइए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं सुदूर उत्तर के लद्दाख के पहाड़ों से, जहाँ ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने गुमशुदा याक को खोज रहा था। ये बात है मई सन 1999 की, जब ताशी नामग्याल अपने याक को खोजने के लिए लद्दाख के बटालिक क्षेत्र में काफी ऊपर के पहाड़ों पर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो देखा वो उन्हें काफी अटपटा सा लगा। उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग पहाड़ की चोटी पर हैं, जो कि अपने देश के नहीं दिख रहे। ताशी बिना हड़बड़ाए नीचे उतरे और इसकी सूचना उन्होंने समीप की भारतीय सेना की चौकी को दी। श्रोताओ, बस इतनी सी छोटी सी घटना ने एक बड़े और बेहद ही चुनौतीपूर्ण युद्ध को जन्म दिया, जिसे आज हम कारगिल की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ज्यादा देर न करते हुए कारगिल के विजय गाथा को जानने और उसे समझने के लिए आइए एक बार फिर हम रुख करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर की तरफ, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जीवन के अनमोल वर्षों को अर्पित किया है। सर, कार्यक्रम की इस नई श्रृंखला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने जो अभी कहा
1: जी,
3: जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ।
1: जी बिल्कुल।
3: अगर हम इसका जेनेसिस देखें, जो कारगिल हुआ था, इट इज द सेम प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का लीगली इंडिया में शामिल होना
1: जी,
3: पाकिस्तान को कभी भी भाया नहीं था और उसकी हमेशा ये कोशिश रही है और है कि वो किसी तरह से इसको कब्जे में करें। तो ये हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में देखा है कि हर बार जो है वो यही कोशिश में रहता है और इसी तरह से वो कोशिश करता रहा है। तो कारगिल का भी जो युद्ध था, ये भी एक तरह से पाकिस्तान का अटेम्प्ट था कश्मीर मुद्दे वाला
1: जी,
3: जो है
1: जी।
3: और स्पेशली जैसे हमने पहले सियाचिन ग्लेशियर का एपिसोड किया
1: जी,
3: तो उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान साल्टर और रिज पे जमाने में और एस्टैब्लिश करने में, पोस्ट एस्टैब्लिश करने में फेल रहा था और खासकर उसने अपनी कैद पोस्ट जो है लूज करी थी, तो उसके कारण भी जो है ये कारगिल का युद्ध जो है उसने छेड़ा था,
1: उसे भूल नहीं पाए
3: वो भूल नहीं पाए, और ना भूलते हैं वाली बात है। तो ये जो है एक तरह से उनका वेल प्लान्ड ऑपरेशन था इंफिल्ट्रेशन का। अब उसी समय आप देखिए कि मई 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए थे, जिससे के कारण के सिक्योरिटी कंसर्न जो है बढ़ गए थे दोनों देशों में, टेंशन को कम करने के लिए और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए। अगर आपको याद हो लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था
1: जी, बिल्कुल, लाहौर घोषणा पत्र,
3: हाँ, फरवरी 1999 में
1: जी,
3: जो कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो थे उस समय उन्होंने किया था। हाँ, और उस समय अगर आपको याद हो हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने हिस्टोरिक बस यात्रा करी थी, लाहौर गए थे। लाहौर डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था
1: जी,
3: उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि दोनों जो देश हैं वो पीसफुल रिजोल्यूशन निकालेंगे जो लॉर्ड आउटस्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली ओवर जम्मू एंड कश्मीर का जो है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ दोनों देशों ने मतलब एक तरह से एक दूसरे को भरोसा भी दिया कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जो है और एक्सीडेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा, और दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, और ये सब पूरा करा था। तो एक तरह से माहौल ऐसा था कि बहुत ही पीसफुल माहौल था
1: जी,
3: बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसी वक्त जो है पाकिस्तान आर्मी कारगिल के अंदर जो है इंट्रूजन कर रही थी जो है
1: जी।
3: इसी दौरान जो पाकिस्तान आर्मी है उसने कारगिल सेक्टर में
1: जी,
3: जो है एलओसी को ब्रीच किया, और ब्रीच करके जो वहां की डोमिनेटिंग हाइट्स थी स्पेशली, तो उसमें जो है उनको ऑक्यूपाई किया।
1: यही दौरान था सर जिस समय हम लोगों ने समझौता किया था भारत पाकिस्तान,
3: बिल्कुल ये उसी समय की बात है। मतलब उसके आप देखिए फरवरी में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ और मई में हम लोग को मालूम चला कि मतलब ये इंट्रूजन हो गया। तो ये तो वो वक्त था जब हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है और शांतिपूर्ण माहौल है, भरोसा किया जा सकता है किसी तरह का, मतलब जो है इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन बदर का नाम दिया था, मतलब पाकिस्तान ने, और एम उनका वही था कि कश्मीर और लद्दाख को कट कर सके, और जो ट्रुप्स हैं इंडियन आर्मी के ट्रुप्स हैं उनको सियाचिन ग्लेशियर से भी जो है मतलब आइसोलेट कर सकें, और भारत को मतलब वो फोर्स करें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो है डिस्प्यूट के ऊपर बात करके, और मतलब एक तरह से मतलब वो कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहते थे, है ना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये तकरीबन जो है 160 किलोमीटर की जो रिज लाइन है एलओसी है उसमें हुआ था, और जो जहां पे हुआ था इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये जो रोड है हमारी NH1 अल्फा इसको पूरी तरह से मतलब नेशनल हाईवे इसको डोमिनेट करता
1: हुआ था, लेह तक जाता है
3: जो ले जाता है श्रीनगर से जो ले जाता है उसको डोमिनेट कर रहा था, है ना। तो ये जो जैसे अब ये 160 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मतलब जो इम्पोर्टेंट हाइट्स थी जहाँ पे वो डोमिनेट कर सकते थे वो उन्होंने कर सकते थे वो उन्होंने जो है ऑक्यूपाई करी हुई थी। अब इस इलाके में आपको मालूम है कि जो पोस्ट है मिलिट्री पोस्ट है जो हाइट्स हैं वो सारी की सारी 16,000 फीट से जो है ऊपर की हाइट पे 16,000-18,000 के ऊपर जाती है। तो मई में जैसे आपने अभी बताया कि कल से हमें खबर लगी कि जो है आइडेंटिफाइड आदमी जो है कारगिल में दिख रहे हैं, उसके बाद फिर तो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग करी गई, एरियल रेकीस हुई कंडक्ट किया, जिससे फिर हमें समझ में आया कि ये
1: इंट्रूजन
3: मामला बड़ा है और इंट्रूजन हुआ है। और पाकिस्तान इस बात से पूरी तरह से नकार रहा था कि ये उनकी आर्मी यहाँ नहीं है। उनका कहना था अगर वहां पे है तो हो सकता है मुजाहिदीन हो, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी आर्मी नहीं है।
1: अच्छा,
3: इन स्पाइट ऑफ मतलब डूइंग इट दे वर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इट।
1: तो सर पहले भी उन्होंने हमेशा से इसी तरह से किया जैसे रजाकार को वो आगे कर देते थे,
3: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसी तरह से ये भी था,
3: बिल्कुल उसी तरह से ये भी था। और एम भी अगर आप देखें तो वही सेम वही
1: उद्देश्य भी उनका वही है जम्मू कश्मीर को हथियार,
3: बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने रिजलाइन तो ली है लेकिन एक तो वो हमारा एरिया है, दूसरा वो डोमिनेटिंग एरिया है, तो उससे तो उनको हमको निकालना हमारे लिए तो जरूरी था, हर हाल में जरूरी था। एंड दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखें इस एल्टीट्यूड के ऊपर जो है जब आप अटैक करने जाते हैं बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम है,
1: दुष्कर है सर, बहुत ज्यादा,
3: क्योंकि एक तो पहाड़ियां हैं,
1: ऊंचाई है,
3: ऊंचाई है, ऊंचाई में है। दूसरा ये है कि हाइट होने के कारण रेरिफाइड ऑक्सीजन है वहां पे, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस का टेम्परेचर है, तो उसके लिए आपको स्पेशल एक्रोमेटाइजेशन करना पड़ता है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, और उतना ज्यादा कंबसम होता है, मतलब चलना बहुत मुश्किल है। एंड देन आप अटैक कर रहे हैं
1: और सर हथियार और रसद भी आपके साथ है
3: और डिफेंडर जो है ऊपर बैठा हुआ है
1: ऊंचाई पे
3: बैठा है, तो उसके लिए बहुत आसान है कि उसको पूरे एडवांटेज है। लेकिन इसी कारण से क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है NH1 अल्फा में इंटरफेरेंस कर रहा है, अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो लद्दाख सेक्टर कट होता है, तो इसलिए इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी शुड थ्रो देम आउट, वी शुड डिस्ट्रॉय देम। दूसरी बात ये थी कि ये कारगिल सेक्टर में हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम कारगिल तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे टू अवॉइड ए फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान। मतलब दिस डिसीजन वाज टेकन, हाँ
1: जी,
3: तो मतलब किया है कि बाकी जगह ना, तो इसके कारण जो है एक और मतलब उन्होंने डायरेक्शन इशू किया कि भाई LOC विल नॉट बी क्रॉस्ड, आपको इनको निकालना है, आप निकालेंगे लेकिन जो है
1: लाइन ऑफ कंट्रोल को
3: आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो बहुत से ज्यादा ये मुश्किल चैलेंजिंग टास्क बन जाता है एफओस के लिए जो
1: जी, बिल्कुल,
3: जिनको ऑपरेट करते समय ये काफी दिक्कतें आती हैं। एनीवे बट दिस वाज अबाइडेड बाय, है ना, इसको बिल्कुल फॉलो किया गया
1: जी।
3: ये फिर से जो है अगर हम देखें तो तीनों जो फोर्सेस है आर्मी नेवी एफओस तीनों का ऑपरेशन था। IAF को इंडियन एफओस को स्ट्राइक करने का टास्क दिया गया था, जो एनिमी पोस्ट हैं उनके बेसिस हैं जिसको भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना क्रॉस किए हुए। एंड उन्होंने अपना पहला जो है ऑपरेशन शुरू किया था 26 मई को जो है, जिसको ऑपरेशन सफेद सागर बोलते हैं
1: जी।
3: और नेवी वाज अलर्टेड एट द सेम टाइम कि अगर पाकिस्तान कोई और किसी तरह से कुछ अटैक करता है या नेवी से कुछ होता है तो नेवी वाज अलर्टेड स्पेशली द कोस्टल एरियाज में जो हो, तो अगर मतलब उनसे मतलब उम्मीद जा सकती है कि वो किस तरह का रेड कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। एंड वहां पे फिर इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो एडिशनल फोर्सेस हमें कारगिल में मतलब जो है आर्मी की जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, आर्टिलरी है, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं, मतलब सबको इंडक्ट करना शुरू किया टू डील विद द सिचुएशन। अब सिर्फ कारगिल में भी अगर आपको लड़ना है तो डिफेंस सिर्फ पोस्चर तो पूरी कंट्री में पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर आपको करना है, तो मतलब
1: तो पूरे सीमाओं की चाहिए,
3: बिल्कुल, तो पूरी की पूरी जो हमारी फोर्सेस हैं सारी की सारी जो है मोबिलाइज हुई थी और डिप्लॉय हुई थी ताकि कहीं और किसी सेक्टर में अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ होता है, एस्केलेशन होता है, वो कोई और नया फ्रंट खोलना चाहते हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकें। एंड स्पेसिफिकली इवन वी हैड टू टेक केयर ऑफ द चाइना बॉर्डर आल्सो कि अगर ऐसे टाइम पे अगर पाकिस्तान के कहने से चाइना
1: उसका साथ
3: देता है तो इट बिकम्स अ डबल फ्रंट फाइट। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिक इनिशिएटिव लेने पड़ रहे थे क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्शंस को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान उनको भी जो है भड़का के,
1: यानी अंदरूनी हालातों पर भी नियंत्रण की उतनी ही आवश्यकता है,
3: उतनी ही आवश्यकता है जितना आपको जो है आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। कारगिल के बारे में तो हम पहले भी अपने एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफी हाई माउंटेन रेंजेस हैं, 18,000 फीट उससे ऊपर की रेंजेस हैं, स्नो क्लाइड रहती है, बर्फ रहती है पूरी, और क्या है कि ये पहाड़ हैं इसके जो उसमें कोई पेड़ नहीं है तो किसी तरह का छुपाव नहीं है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं वहां पे जो है, एंड माइनस में टेम्परेचर जाता है, एल्टीट्यूड एरिया है तो -30 डिग्री उससे भी कम हो जाता है, तो जो चढ़ने के लिए है, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइंब, आपको ऊपर जाना है जिसको ऑक्यूपाई करा हुआ है और ओपन में जा रहे हैं हम, एनिमी आपकी सारी मूवमेंट देख रहा है, किसी तरह से मतलब आपको कंसीलमेंट है ही नहीं है किसी भी तरह से, तो ये सब जो थी मतलब काफी
1: कठिन परिस्थितियां थी, युद्ध के हिसाब से
3: बेहद कठिन परिस्थितियां थी। एंड आपको ये रेरिफाइड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आपका पर्सन का और इक्विपमेंट का जो है एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है, फिर सारे के सारे जो मूव्स करने हैं आपको 140 करने हैं क्योंकि ना तो आपकी गाड़ी जा सकती है ना आप हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं। इन नेचुरल जो इम्पीडिमेंट्स थे इसके अलावा एक और ये रिस्ट्रिक्शन थे कि LOC क्रॉस नहीं करना है,
1: जी, जी, जी।
3: तो इन सबको देखते हुए जो है तैयारी की गई बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं
1: जी,
3: इससे सोल्जर जो है
1: आपके काम में बाधा है ना सर, ये
3: बाधा तो है लेकिन इसको हम बाधा मानते नहीं है।
1: सही बात है।
3: जो टास्क दिया गया है
1: जी,
3: जो ऑब्जेक्टिव है
1: जी,
3: वो तो पूरा करना ही
1: करना
3: है,
1: है। किसी भी हालत में,
3: किसी भी हालत में। और वही हमारे जो जवानों की ये एक मतलब बहादुरी है, मतलब जो है कि वो कभी भी इन सब चीजों से डिटर नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
1: हाँ, तो सर
3: उनको मालूम है ये मेरा ऑब्जेक्टिव है
1: जी, जी,
3: वही मैंने करना ही करना है।
1: तो सर इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग भी है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग।
3: यस एग्जैक्टली, एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स फॉर इन्फेंट्री
1: जी।
3: तो इन्फेंट्री के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है। तो ऑप विजय जो था, जो कारगिल में हमने इसको लिया, इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। इसमें वंस अगेन मतलब वी शोकेस द ब्रेवरी ऑफ इंडियन फोर्सेस, देयर ग्रिट, डिटरमिनेशन एंड फाइटिंग स्पिरिट। वंस अगेन वी प्रूव्ड दैट फॉर अ सोल्जर कंट्री इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवर। हमेशा जो है, एंड सोल्जर्स फॉट दिस बैटल आफ्टर बैटल विदाउट केयरिंग फॉर देयर लाइव्स, एक के बाद एक के बाद जो है हम देखेंगे, हम जिक्र भी करेंगे, लड़ते रहे जब तक कि आखिरी इंट्रूडर को हमने मार नहीं दिया
1: या भगा नहीं दिया
3: और हमने अपना तिरंगा वहां पे लहराया नहीं
1: जी,
3: तब तक ये सोल्जर्स लड़े हैं
1: जी जी जी।
3: इट वाज ए वेरी हैवी कैजुअल्टीज।
1: हाँ सर, ये सर अब तक जो हम करते चले आ रहे हैं युद्ध की बातें, उसमें कारगिल का युद्ध जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, तो उसमें ये बहुत जो कैजुअल्टीज हैं उसके ऊपर बहुत दुख होता है, और ऐसा लगता है कि ये दुश्मन से ज्यादा मौसम की मार जो थी, और चोटियों पर जो उनका कब्जा करने की जो एक उनमें एक अदम्य सोच थी, उसी के कारण हम वहां तक पहुंचे।
3: हाँ बिल्कुल सही बात है
1: जी,
3: बिल्कुल हम जिक्र करेंगे इसका, तो आपको एहसास होगा कि कितना मतलब मुश्किल टास्क था,
1: दुष्कर था,
3: बहुत ही दुष्कर टास्क था जो कि इन्होंने पूरा किया
1: जी।
3: ऑफ विजय को अगर हम डिस्कस करें
1: जी, बिल्कुल,
3: तो उसमें इट विल बी बेटर अगर हम सेक्टर वाइज जैसे डिस्कस करते
1: हैं। हाँ जी।
3: तो सबसे पहले अगर हम द्रास सेक्टर की बात करेंगे, तो द्रास जो है तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है कारगिल से। जब आप श्रीनगर से जाते हैं तो जुजिला क्रॉस करने के बाद पहले द्रास आता है, फिर उसके बाद जो है कारगिल आता है। द्रास को सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। वहां पे जो -50 तक का जो है टेम्परेचर जाता है। और ये जो इलाका था इसमें जो है तोलोलिंग रिज है
1: जी,
3: मेरे ख्याल से काफी फेमस हो चुकी
1: हाँ
3: है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर नॉर्थ में है
1: जी।
3: और ये जो है श्रीनगर ले हाईवे जो है NH1 अल्फा, उस समय NH1 अल्फा बोलते थे, उसको प्रॉपरली डोमिनेट करती है। और यही जो था सबसे डीप पेनिट्रेशन था इंट्रूडर्स का, सबसे ज्यादा जो है इंट्रूजन जो हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। तो तोलोलिंग रिज लाइन थी, उसके पास आगे फिर 0.5140 हाइट आती है
1: जी।
3: ये जो कॉम्प्लेक्स था इसमें जो इंट्रूडर्स बैठे हुए थे, मतलब वो क्या कर रहे थे कि जितना वेक्लर मूवमेंट था उसके ऊपर जो है उनका जो है मतलब इंटरफेरेंस था, आर्टिलरी शेलिंग करवा रहे थे वो, तो बिल्कुल उनका मतलब जो है रोकने के लिए की पुरजोर कोशिश रही थी
1: जी।
3: तो इसको जो कैप्चर करने का टास्क था, उस समय वहां पे 8 माउंटेन डिव होती थी
1: जी,
3: उसकी 56 माउंटेन ब्रिगेड थी, उसको दिया गया था। इसमें जब अटैक कर रहे होते हैं, देखिए क्या होता है कि आपको अटैक से पहले काफी चीजें समझनी होती हैं, प्लानिंग के दौरान जो है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है
1: जी,
3: किस तादाद कितनी
1: तादाद
3: है, कितने किस तरह के उसके हथियार हैं, उसके बाद लेआउट क्या है डिफेंसेस का, उसके पास डिफेंस किस तरह के हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं नहीं है, फायर पावर सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, और क्या उसको कहीं और से सपोर्ट रीइन्फोर्समेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो ऐसा मतलब जो है सब कुछ मतलब मालूम होना चाहिए। हाउएवर ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो इतनी डिटेल में अवेलेबल नहीं थी। इनिशियली तो मतलब ये बोला गया था कि 8 से 10 इंट्रूडर्स हैं वहाँ पे, जो कि मुजाहिदीन हो सकते हैं, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने कि ये जो है फीचर्स ऑक्यूपाई करे हुए हैं पाक आर्मी के सपोर्ट से, पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट से।
1: हमें तब तक मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी सेना है या आतंकवादी है,
3: बिल्कुल हमें ये क्लियर नहीं था, और यही माना जा रहा था कि ये लोग जो है मुजाहिदीन या मिलिटेंट्स हैं ना। तो अगर मिलिटेंट्स होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि देखो कि उनके पास जो है स्मॉल आर्म्स होंगे, राइफल्स होंगी, ज्यादा एलएमजी हो सकती हैं, तो वही उसी तरह से जो फर्स्ट अटैक 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट है,
1: इसी सोच के साथ पहला आक्रमण किया गया।
3: हाँ, पहला आक्रमण किया गया था कि मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब आक्रमण तो आक्रमण है, तैयारी तो पूरी करी है, सब कुछ करना है, लेकिन एक जब आपका ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और एक बार जब कम इन्फॉर्मेशन होती है उसका फर्क होता है
1: सूचना के आधार पर।
3: एग्जैक्टली, तो जो फर्स्ट अटैक किया गया था 22nd-23rd मई को, मतलब उसमें भी अटैक में पूरा सपोर्ट था आर्टिलरी का, मोटर्स का, एमजीज का। तो जब ये ट्रूप्स पहुंचे हैं उस इलाके में जहां दुश्मन थे, एनिमी लोकेशन पहुंचे, तो सडनली इनके ऊपर बहुत हैवी फायर आना शुरू हुआ।
1: अच्छा।
3: और उस फायर में मतलब ये रियलाइज किया गया कि मीडियम मशीन गन्स भी थी, हैवी मशीन गन्स भी थी, इवन एयर डिफेंस वेपन्स भी थे, आर्टिलरी का भी फायर आ रहा था। तो ये रियलाइज हुआ कि ये लोग जो है मुजाहिदीन नहीं है, इस तरह के हथियार मुजाहिदीन नहीं रखते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी के ट्रुप्स हैं जो कि वहां पे आए हुए हैं।
1: अच्छा।
3: जैसे हमने पहले जिक्र किया कि डिफेंस पे वो ऊपर बैठे हुए हैं, अब आप ऊपर अटैक वाले जा रहे हैं, सडनली फायरिंग आ रही है, छुपने की जगह नहीं है, तो आप उनकी हालत सोचिए, जो है दे वर पिन डाउन बाय हैवी फायर बट दे केप्ट ऑन होल्डिंग देयर पोजीशन, जगह नहीं छोड़ी है, उसके बावजूद कि उनके ऊपर फायरिंग आती रही बट उन्होंने जो है अपनी जगह नहीं छोड़ी ना। अब तक जो है सिचुएशन जैसे क्लियर हो रही थी, तो इंडियन फोर्सेस में आर्मी ने जो है एडिशनल आर्टिलरी इंक्लूडिंग बोफोर्स वगैरह जो है इंक्लूड किया, और उसका जो है कांस्टेंट फायर जो है दुश्मन की पोजीशंस पे करते रहे जो है। तो इसके बाद जब और आर्टिलरी का जब सपोर्ट मिला, फायर सपोर्ट मिला, तो 18 ग्रेनेडियर्स ने फिर से अपना जो है जो अटैक था, उनके जो 2IC साहब होते थे, 2IC मतलब सेकंड इन कमांड जो होते हैं बटालियन में, कर्नल विश्वनाथन साहब थे, वो अटैक लीड कर रहे थे, और उनके जो एफर्ट्स थे और सोल्जर्स की जो ब्रेवरी थी, एफर्ट्स थे, उससे जो है ये लोग जो है एक फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में वहां पे सफल कामयाब रहे।
1: जी, जी।
3: और जो कर्नल विश्वनाथन साहब थे वो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड उसमें उनको काफी बुलेट इंजरीज हुई एंड इन दिस अटैक एक्चुअली ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, वो शहीद हुए। इसी तरह से एक दूसरे ऑफिसर थे मेजर RS अधिकारी, वो भी जो है लीड कर रहे थे, सबको लीड करते करते उनको भी ही ऑल्सो लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो ये जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लीड किया और ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनके कारण जो है ये फुटहोल्ड पहले एस्टैब्लिश हुआ है।
1: पहली कामयाबी,
3: पहली कामयाबी जो थी एक तरह से वो हासिल हुई हमें। आप समझ सकते हैं जो पहली बार जब जो कोई जाता है और उसके लिए कितना मतलब मुश्किल होता है, उसके लिए हर एक चीज एक सरप्राइज थी, दुश्मन के बारे में इतना जानकारी नहीं थी और अचानक फायर आना सरप्राइज था, फिर उस टेम्परेचर में जो है कोल्ड में जो है आप बैठे हुए हैं एंड बट स्टिल जो बहादुर सिपाही थे, बहादुर पल्टन है, उन्होंने जो है अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश किया। तो आगे के अटैक के लिए देन फिर जो है 2 राजरिफ बटालियन को इसमें टास्क दिया गया।
1: अच्छा।
3: तो उन्होंने जो है अपना अटैक 12 जून को कमेंस किया था।
1: अच्छा।
3: अब उस समय जो है उनकी प्रोग्रेस आप देखिए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि ऊपर से आपको फायरिंग भी आ रही है, इंटेंस रेजिस्टेंस मिल रहा है दुश्मन का, स्टीप क्लाइम है, पूरा एक्सपोज टेरेन है, उसमें क्या होता है कि आपके जो नेचुरली जो आपका प्रोग्रेस होता है स्लो होता है।
1: जी, जहां तक मुझे जानकारी है जब इस तरह की लड़ाई होती है तो क्या रात में ही आगे बढ़ा जाता है?
3: रात में प्रेफर किया जाता है क्योंकि रात में ही जो है आपको आपके लिए सपोर्ट है
1: जी, दुश्मन से आप तभी छुप सकते हैं,
3: तभी आप छुप सकते हैं, तो रात को ही करा जाता है। और क्योंकि ओपन दिन में तो अगर मतलब वही होता है, दिन में जब अटैक स्टॉल हो जाता है तो आप तो बिल्कुल 100% एक्सपोज रहे बैठे हुए हैं
1: जी,
3: और आपको ऊपर से दिख रहा है, तो 100% रात को ही अटैक किया जाता है ताकि हमें इसका फायदा मिले। तो ये जो एक तरह से जैसे जिक्र कर रहा था, स्टीप लाइन था, सब कुछ था, उसके बावजूद जो है बहादुर सिपाही हैं जो इंच बाय इंच आगे बढ़ते रहे है ना। और जब एनिमी की मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनका जो है फायरिंग भी जो है उनकी ज्यादा होने लगी,
1: ज्यादा होती
3: जा रही थी, तो कैजुअलिटीज भी बढ़ती जा रही थी। पर इन सबसे जो है फिर भी डिफरेंस एंड द सोल्जर्स एंड द बटालियन के जो ऑफिसर लीड कर रहे थे, दे केप्ट ऑन मूविंग आगे बढ़ते रहे एंड फाइनली दे सक्सीडेड इन रीचिंग द एनिमी लोकेशंस। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो पहुंच गए हैं ऊपर तो सबने मिलके जो है अटैक किया
1: जी।
3: है ना, संघर्ष जो थे क्योंकि वहां उन्होंने ना पत्थर से संघर्ष बना रखे थे
1: जिसमें बंकर
3: हाँ बंकर टाइप बंकर तो सॉलिड होते हैं, संगर होते हैं जो मतलब एक पत्थर उत्तर लूज होते हैं हाँ वो बनाए जाते हैं ठीक है। उसके बाद जब ये अटैक हुआ तो इवन मतलब अब इतना पास दुश्मन है कि देन इट बिकम ए हैंड टू हैंड फाइट। हैंड टू हैंड फाइट जो है मतलब इस जमाने में लड़ना भी बहुत बड़ी बात बनी है। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ इंट्रूडर्स जो थे वो तो मारे गए ठीक है, और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने पोस्ट छोड़ दी। तो तोलोलिंग वॉज द फर्स्ट मेजर सक्सेस आफ्टर हैवी फाइटिंग एंड सेक्रीफाइस ठीक है। और ये 17 जून को जो है तीन मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद जो है हमें सफलता मिली। अगर आप देखें
1: बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है युद्ध के हिसाब से, 3 हफ्ते
3: 3 हफ्ते में ये सफलता मिली। और इसमें जो है 3 officer, 4 JCO 16 other rank शहीद हुए थे और तकरीबन 50 से ज्यादा जो है घायल हुए।
1: इस शहादत से ही समझा जा सकता है सर वो कितनी कठिन जगह थी जिसको हमने जीता।
3: और वहाँ फिर हमें जो है पता चला
1: जी
3: कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये निसंदेह जो है पाकिस्तान आर्मी के हैं
1: जी,
3: क्योंकि उस तरह का वेपन मिले,
1: सबूत
3: मिले, रॉकेट लॉन्चर्स थे, 81M मोटर्स थे, उसका एमिनेशन था, फिर डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान आर्मी के जो है जो डॉक्यूमेंट्स उन लोग के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे उससे मतलब ये प्रूव हुआ कि ये जो है कोई मुजाहिदीन नहीं है, ये मिलिटेंट्स नहीं है और ये जो है रेगुलर पाकिस्तान
1: पाकिस्तानी सेना है
3: जी। तो इसके बावजूद जो है पाकिस्तान आर्मी मानने को तैयार नहीं हो रही
1: सर, वो हमेशा से उनका यही रहा है। तो श्रोताओं, युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का वो जज्बा है, वो जुनून है जो सियाचिन और कारगिल की चोटियों से भी कई गुना ऊंचा है, जो दुश्मन को पीछे हटने को मजबूर कर देता है, बरबस कर देता है। कारगिल के इस जंग की विजय गाथा को हम आगे भी जारी रखेंगे कार्यक्रम के अगले एपिसोड्स में भी, और जानेंगे कि तोलोलिंग को फतह करने के बाद हमारी अगली चुनौतियां क्या थी। तो सर, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू बुरुआ जी, जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। एक अंतराल के बाद हाजिर होते हैं अगला कार्यक्रम लेकर, बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।
4: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आपको आज आपके बचपन की यादें ताजा जो होने वाली हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए कि आपको गली में पिट्ठू की आवाज आ रही है। लंगड़ी टांग खेलते हुए गिरने की हंसी, कंचे, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, छुपन छुपाई, बाप रे, कितने सारे खेल हम बचपन में खेला करते थे, बिना स्क्रीन के, बिना पैसों के, सिर्फ दोस्ती और धूल मिट्टी से ये खेल खेले जाते थे। वास्तव में श्रोताओं, ये खेल सिर्फ खेल नहीं थे, हमारी पहली टीम थी, पहली हार थी, पहली जीत थी, और यहीं से हमने सीखा नियम मानना, गिरकर उठना, टीम के लिए लड़ना। और आज उन्हीं मैदानों से निकले हैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मेरी कॉम जैसे सफल खिलाड़ी। लेकिन इन सफल खिलाड़ियों को आखिर हम कब से और कैसे जानते हैं? सोचिए, जिस तरह बचपन में गली का कमेंटेटर होता था जो चिल्लाता था आउट है, आउट है, और हमें मानना पड़ता था, ठीक वैसे ही आज के खेल पत्रकार हैं। श्रोताओं, हर साल 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं, ताकि हम उन सभी लोगों को सलाम कर सकें जो धूप में खड़े होकर रात रात भर जागकर हमारे लिए स्कोर तैयार करते हैं, खिलाड़ियों की कहानियां हमें सुनाते हैं। बचपन के खेलों ने हमें खिलाड़ी बनाया और खेल पत्रकारों ने उन खेलों को त्योहार बना दिया। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम भी हमारे स्टूडियो में लेकर आए हैं कलम के एक ऐसे खिलाड़ी को जो बिना बैट बॉल के भी हर मैच खेलते हैं, प्रशांत सेंगर जी। आप स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार आपके श्रोताओं को, और बहुत सारा धन्यवाद आपको जो आपने याद किया, आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में।
1: सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आज विश्व खेल पत्रकार दिवस है, तो हम इसे कब से मना रहे हैं?
2: इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन है
1: जी,
2: जो दुनिया भर के पत्रकारों को एक मंच दिया करते हैं
1: जी।
2: उसने लगभग 3 दशक पहले 1994 में डिसाइड किया कि विश्व पत्रकार दिवस या विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया जाए, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाए। दरअसल जर्नलिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने के लिए हुआ करता है
1: जी। जी,
2: बहुत लिमिटेड पाठक हुआ करते हैं। आप हर जगह देखिएगा, बट जाएगा, आप अगर कोई क्रिकेट की मैगजीन उठाएं, स्पोर्ट्स की मैगजीन उठाएं, तो उसके पाठक बहुत कम संख्या में होंगे
1: जी। जी,
2: बाकी पत्र मैगजीन्स जो रहेंगी उसमें पाठक बहुत सारे होंगे
1: जी।
2: तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको 1-2 मिलेंगे किसी भी मैगजीन में, जबकि बाकी जर्नलिस्टों के लिए बहुत खुला आसमान रहा करता है। तो उनके लिए चैलेंज रहा करता है
1: जी।
2: उनको क्या सुविधाएं दी जाए, उनको क्या समझाइश दी जाए, उनके लिए कैसे मंच तैयार किए जाए, इसको लेकर इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन ने फाइनली डिसाइड किया 1994 में कि 2 जुलाई को इनके लिए ये विशेष दिन मनाया जाएगा।
1: सर, आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी के लिए आज का दिन कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है?
2: देखिए, कोई भी दिन विशेष आपको ये तो महसूस कराता है कि ये कुछ खास चीज है, कुछ खास किस्सा है जिसको हम आज याद करेंगे
1: जी। जी,
2: बहुत सारे दिन हम लोग मनाते हैं, कुछ लोग बड़ा हास्यास्पद तरीके से बोलते हैं कि बताएं आप मदर्स डे, फादर्स डे, एक
1: जी,
2: दिन याद कर लेते हैं। नहीं नहीं, उस दिन विशेष तौर पर आप सेलिब्रेट करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो खेल पत्रकारिता दिवस भी बाकी दिवस की तरह ही जताता है कि हम और ज्यादा संकल्पित हों खेल पत्रकारों के लिए, खेल पत्रकारिता के लिए, इस बड़े मंच के लिए और ज्यादा समर्पित हों, ये जताता है, और उनकी भूमिका को भी प्रदर्शित करता है
1: जी। जी,
2: अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन बड़े आयोजन हुआ करते हैं जहाँ खेल पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है
1: जी।
2: उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है।
1: सर, आप एक खेल पत्रकार हैं, तो आप अपनी आंखों से देखें तो आने वाले समय में कौन से खेल को आप एक बिग स्पोर्ट्स के रूप में भविष्य में देखते हैं?
2: बहुत सारे खेल हैं जो बड़ी जगह पाते जा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश का जो एक सबसे महत्वपूर्ण खेल बन गया है पिछले कुछ दिनों से
3: जी,
2: वो है योग।
3: जी जी,
2: आने वाले समय में ये दुनिया भर को चकित करने वाला है। योगासन को, योग को अपनाने के लिए 200 से ज्यादा देश आ गए हैं।
3: जी जी,
2: आप सभी जानते हैं 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया गया।
3: जी जी,
2: बहुत साधारण सी कोशिशें थी लेकिन असाधारण परिणाम सामने आए हैं। योग को हाथों हाथ लिया गया है।
3: बिल्कुल,
2: दरअसल ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा हुआ है।
3: बिल्कुल,
2: आपकी जीवन शैली को, आपके जीवन के भविष्य को बेहतर बनाता है।
3: जी जी,
2: और हमारे प्रधानमंत्री का ये ड्रीम है, ये सपना है।
3: जी,
2: बहुत सारे महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग को आगे बढ़ाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है।
3: जी जी,
2: और बहुत सारी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं योग कवर करता रहा हूं। अभी पिछले दिनों एशियन चैंपियनशिप हुई थी।
3: जी जी,
2: दिल्ली में इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई गुजरात में। ये भारत में ही नहीं, अब बाकी देशों में भी आयोजित होने जा रहा है।
3: जी जी,
2: हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेनिस, ये पॉपुलर है, नो डाउट।
3: बिल्कुल,
2: लेकिन इन सब खिलाड़ी को ये भी अपनाना होगा, ये तय हो चुका है। जो योग करेगा वो और ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। तो योग खिलाड़ियों के बीच में भी लोकप्रिय होने वाला है।
3: जो योग करेगा वो निरोग रहेगा निश्चित रूप से। और आपने जैसे कहा कि हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। और हम कहते हैं कि खिलाड़ियों को ही क्यों, एक सामान्य व्यक्ति को भी योग अपनाना चाहिए।
2: जी जी, बिल्कुल
3: बिल्कुल। अच्छा सर, स्टेडियम में बैठकर मैच को देखना और टीवी पर देखना, एक रिपोर्टर के लिए क्या कुछ अंतर लगता है आपको, एक रिपोर्टर के रूप में अगर हम आपसे पूछे तो?
2: हाँ, अंतर तो आता है, लेकिन चूंकि जरूरतें अब बहुत अलग हो गई हैं। पहले हम लोग अगर वर्ल्ड कप कवर करने की सोचते थे तो हमें पर्टिकुलर उस कंट्री में जाना होता था। लेकिन कैसे आप इतने सारे संसाधन पर्टिकुलर किसी इवेंट के लिए आप खर्च करेंगे, जुटाएंगे? उससे बेटर ये होगा कि अब जैसे ऑफ ट्यूब कमेंट्री शुरू हो गई है।
3: जी जी,
2: अब आप दिल्ली में बैठकर लंदन की कमेंट्री किया करते हैं, वहां की रिपोर्टिंग किया करते हैं।
3: जी,
2: कोशिशें बढ़ानी पड़ती हैं, वहां से आप चीजें हासिल कीजिए, वहां के रिपोर्टर्स की मदद लीजिए, वहां मौजूद जो संवाददाता है उनकी मदद लीजिए, खिलाड़ियों की डिटेल निकालिए। अब सोशल मीडिया का भी जमाना है, पर्टिकुलर उनकी साइट्स चला करती हैं। अगर आप अभी हाल ही में महिला वर्ल्ड कप चल रहा है,
3: जी जी,
2: महिला वर्ल्ड कप में देखेंगे कि किसके बीच कौन सा मैच है,
3: जी,
2: कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने घर बैठे, अपने स्टूडियो में बैठकर सिंपली एक लाखों का काम सैकड़ों रुपए में संपन्न कर सकते हैं।
3: जी जी,
2: तो देश के संसाधनों के लिए, आपके चैनल के संसाधनों के लिए
3: जी,
2: बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं करनी है, सिर्फ इतना करना है कि अपनी कोशिशें बढ़ा दें, आप अपने स्टूडियो से बड़े मैच, बड़े इवेंट कवर कर सकते हैं।
3: अच्छा सर, बचपन के खेलों को और आज का जो आईपीएल है या वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, तो आपकी नजर में इन दोनों खेलों में एक जैसा क्या आपको लगता है, जो अभी भी एक जैसा है बचपन के खेल में और आज के वर्ल्ड कप में?
2: आनंद बहुत छुपा है।
3: आनंद है, क्या बात है।
2: दरअसल खेल जो है ना
3: जी,
2: हम शुरू से ये मानते आए हैं कि बच्चे को बिजी रखना है तो हम बोलते थे जाओ खेलो, जाके बाहर खेलो।
3: बिल्कुल,
2: बच्चों को आपको खुश करना है तो चलो तुम्हें कुछ खिलाते हैं।
3: हाँ।
2: खेल आपके मन की खुशी से जुड़े होते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और जब उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है, वो खूबसूरत ज्यादा होता है, तो मन को बड़ा आनंद दिया करता है। क्रिकेट बहुत जेंटलमैन गेम है।
3: जी जी,
2: 5-5 दिन के मैच हुआ करते थे, 5-5 दिन लोग खेला करते थे, पहले एक दिन का गैप भी हुआ करता था, एक दिन रेस्ट डे हुआ करता था, विश्राम का दिन हुआ करता था, 5 दिन के मैच में, मतलब 6 दिन का मैच हुआ करता था क्रिकेट का। बहुत शिद्दत से लोग देखते थे उसको, लेकिन देखने वाले कम थे। आज एक नन्ना बच्चा और किचन में रोटी बनाने वाली गृहिणी भी बार बार पलट कर आती है कि रोहित का स्कोर कितना हो गया।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: वो आनंद छुप गया उसमें, वो जो छुपा आनंद था दरअसल, वो आनंद उसमें पैदा हो गया है। जो जेंटलमैन गेम लिमिटेड लोगों के लिए था, फुटबॉल पहले कहाँ होता था, कहाँ जाते थे, टीवी पे कभी आता भी था तो सेमीफाइनल फाइनल मैच दिखा दिया करते थे।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: एटलीस्ट पहले तो टीवी भी नहीं था।
3: आज
2: टेलीविजन है, आज सैटेलाइट व्यवस्था है, आज सारी चीजें हैं, हमने उनमें रंग बहुत ज्यादा भर दिए हैं।
3: बिल्कुल,
2: और तो और अगर आप विज्ञापन देखेंगे तमाम सारे चीजों के, विज्ञापन भी इतने सुंदर बनाए जाते हैं कि कुछ लोग मैच के साथ साथ विज्ञापन देखने में भी इंटरेस्टेड होते हैं।
3: बिल्कुल,
2: तो इतना खूबसूरत इन सारी चीजों को बना दिया गया है। मैं शिकायत करने वालों से ये चीज जरूर कहूंगा कि किसी भी चीज को कलरफुल बनाने के लिए की गई जो कोशिशें हैं ना, उनको आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से शिकायत ना करें कि यार खेल को अलग कर दिया है, रंग ज्यादा भर दिए हैं, विज्ञापन ज्यादा भर दिए हैं। खेल को वही कलरफुल बनाते हैं और जितना खूबसूरत कलर होंगे, जितना सारा रोमांच होगा, उतना खेल में आनंद छुपा होगा।
3: बिल्कुल,
2: और आनंद तो ही चाहिए।
3: वो जो आनंद है खेलों का, वो अब आम जन में आ गया है कि जैसे गृहिणी में, छोटे बच्चे में।
2: आप विश्वास कीजिए, आप ऐसी कोई महिला देख के बताइए, एटलीस्ट आप गांव में जाएंगे, क्योंकि टीवी वहां पर भी है।
3: बिल्कुल,
2: वहां भी जाएंगे तो आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में लोग पूछने लगेंगे। अगर आप दिल्ली से आए हैं तो पूछ लेंगे, आपने विराट कोहली का देखा है क्या?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वो चीजें अब इतनी ज्यादा डेवलप हो गई हैं कि जो चीज हमें गिल्ली डंडा में मजा दिलाती थी 4-5 साल की उम्र में, आज आईपीएल, वर्ल्ड कप क्रिकेट, T20 क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के मैचेस,
3: जी जी,
2: मतलब गजब का एक जो प्रचार तंत्र है, जो टीवी है, इसने बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। नो डाउट कॉमेंट्री हम लोग किया करते हैं, बहुत रोमांच पैदा किया करती है, लेकिन उसमें 4 चांद लगा दिए हैं आज के प्रसारण ने, आज के एफर्ट्स ने।
3: अच्छा सर, जैसे खेल पत्रकारिता का अपना एक महत्व है जो हम अपने स्तर पर समझ सकते हैं, जैसा अभी आपने बताया कि खेल जो है वो अब आम जन तक अपना प्रसार प्रचार कर चुका है और अपना एक रोमांच होता है खेल का, आपकी दृष्टि में खेल पत्रकारिता का क्या महत्व है?
2: बहुत ज्यादा महत्व, बिल्कुल यही है कि आपने गीली मिट्टी जो है उससे एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बना दी
3: जी,
2: और उसको बेहतर कर दिया जाए तो आपने एक साधारण से खिलाड़ी को उसकी क्वालिटी के कारण एक बड़ा स्वरूप प्रदान कर दिया। ये पत्रकार किया करता है, लेकिन पत्रकार की रिस्पांसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज की भागती दौड़ती दुनिया में पत्रकार को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए
3: जी।
2: हम अक्सर देखते हैं कि पत्रकार खबर खोजने के प्रयास में जो कंटेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, जो विषय होता है, उससे थोड़ी सी कहीं खिलवाड़ कर जाता है। उससे बचना चाहिए, स्पोर्ट्स लाइन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमेशा देखिएगा कि किसी ने मेडल जीता, सारे पत्रकार एकदम उसके पास पहुंच गए, उसे सांस लेने का मौका दिया नहीं है, एटलीस्ट बाकी जो खिलाड़ी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगला जो इवेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, खेल का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं से मुश्किलों में आता है
3: जी, जी।
2: तो पत्रकारों को

0: मैं पहुंचा उसके पास तो उसको सीने में दर्द हो रहा था, तो उसको मेडिकल सुविधा दी जा रही थी, डॉक्टर्स वगैरह पास में थे
1: जी।
0: तो वो बोले सर प्लीज़ सर हमें दो चार मिनट दे दीजिए। मैंने डन यार, दो चार नहीं आप 20 मिनट लीजिए, हमारा प्रसारण सेकंड है, हमारा इंटरव्यू सेकंड है, जिनका स्वास्थ्य सबसे मस्ट है। तो वो मुझे दिमाग में, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फिर बोला कि प्रशांत जी आप कर नहीं रहे इंटरव्यू, डिले हो जाएगा, फिर जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का स्प्रिंट आने वाला था, 200 मीटर के विनर को हम देखेंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि सर हम खिलाड़ियों के लिए आए हैं, खिलाड़ी परेशान है, उसको तकलीफ है, वो अस्वस्थ है, ऐसे समय में मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये हर एक की जवाबदारी बनती है, कोई खिलाड़ी कोई खेल अगर कहीं परेशान है तो आपको उसकी मदद करनी है, ना कि उसको विचलित करना है।
1: क्या बात है सर, बहुत अच्छा किस्सा आपने हम सबके साथ साझा किया है। कहीं ना कहीं एक इंसानियत का भी स्वरूप दिखाता है हमें कि खेल के साथ में मानवीयता जो है वो भी साथ साथ चलती है, और पत्रकारिता के महत्व को, पत्रकार के व्यक्तित्व को ये और ज्यादा उभारती है। सर भारत की बात करें तो भारत में खेल पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कौन सा संगठन करता है?
0: राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संगठन तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन हर प्रदेश में हर शहर में पत्रकारों का अपना एसोसिएशन है।
1: जी जी।
0: लेकिन इसकी जरूरत अब और बढ़ती दिखाई देती है। मुझे लगता है खेल पत्रकारों के लिए थोड़े और प्रयास होने चाहिए।
1: आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेल पत्रकार होने के नाते क्या कुछ चुनौतियां होती हैं आपके लिए? खेल पत्रकारिता सिर्फ ग्लैमर है या ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है?
0: हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जितने शक्कर डालेंगे उतनी
1: जी जी जी
0: मिठास मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जितनी मेहनत करेंगे उतनी बेहतर रिपोर्टिंग होगी, उतना बेहतर आपका काम होगा। मैंने आपको पहले भी कहा खेल पत्रकार की जवाबदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आप उस जगह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत मेहनत होती है। एक सिंपल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता है, वहाँ एक कलाकार आएगा अपना परफॉर्मेंस देकर चला जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स आपको फ्री मिलेंगे।
1: जी जी जी।
0: बहुत सारे लोग और भी जानकारी देने वाले मिलेंगे, पर आप एक होते हुए खेल को, खिलाड़ी को बगैर डिस्टर्ब किए हुए वहां से बेहतर मटेरियल निकाल लें, वहां की सारी जानकारियां ले लें, पर्टिकुलर उस डे विशेष में क्या हो रहा है। जैसे अभी इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी भुवनेश्वर में, डेली की रिपोर्टिंग, और वहां 5 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज का 2003 का रिकॉर्ड टूटा है
1: जी जी।
0: तमाम सारे ऐसे रिकॉर्ड, तो वो सारी जानकारी इकट्ठी करना बगैर खिलाड़ियों को परेशान किए हुए, बगैर इवेंट को विचलित किए हुए आपको करनी है। ग्लैमर तो इतना है कि आप जब, सीधी सी बात है, अगर आप स्वयं इंटरव्यू अगर विराट का कर रहे हैं तो विराट का इंटरव्यू करना आपके लिए गर्व की बात तो होगी होगी, आपके संस्थान के लिए, आपके पेपर्स के लिए, आपके चैनल के लिए, अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: लियोनेल मेसी आए थे हिंदुस्तान, हर पत्रकार उनके पास था, पिछले साल आए थे वो। खिलाड़ियों से जुड़ना, खेल से जुड़ना, जो दुनिया भर में पॉपुलर है, ग्लैमर तो दिलवाते हैं, आपको बड़ा सम्मान दिलवाते हैं।
1: सर आपको क्या लगता है, खेल पत्रकार सिर्फ स्कोर ही बताते हैं या खेल की संस्कृति भी बनाते हैं?
0: खेल पत्रकार दरअसल एक तरह से समीक्षक हुआ करता है।
1: जी,
0: हम
1: जी।
0: जो डेली जो खबर पढ़ते हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज है।
1: जी जी।
0: खेल समीक्षक एक अलग चीज हुआ करता है।
1: जी।
0: दोनों की शैली अलग होती है, जो हुआ है उसे बता देना तो वो रिपोर्टिंग कहला जाएगा, लेकिन समीक्षक समीक्षा लिखेगा। जैसे भारत महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, आपको दूसरे दिन खबर मिल जाएगी कि इसने इतने रन बनाए, इसने इतने विकेट लिए, इतने रन कम रह गए और इतने रनों से फलानी टीम जीत गई। लेकिन उसके ऊपर दूसरा कॉलम साइड में आपको लिखा मिलेगा, वो समीक्षक का होगा।
1: जी जी।
0: उसको खेल किस तरीके से आगे बढ़ा, कहाँ टर्निंग पॉइंट था, कहाँ मिसिंग हो गया, क्या जरूरत थी, क्या पूर्ति नहीं हो पाई और क्या होना चाहिए,
1: जी जी,
0: ये सारी चीज एक समीक्षक लिखा करता है। तो दो तरीके का खेल पत्रकार का दायित्व हुआ करता है, एक सिंपल रिपोर्टिंग हुआ करते है खेल में क्या घटा
1: जी जी
0: और ऐसा क्यों घटा, ये बताने वाला समीक्षक हुआ करता है। तो दोनों की अलग अलग जवाबदारियां रहा करती हैं, लेकिन सच्चाई है दोनों बड़ी चैलेंजिंग हुआ करते हैं। एक भी गलती, अगर आपने किसी व्यक्ति ने 101 स्कोर किया है और आपने टाइपिंग में वो जीरो हटा दिया,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी,
0: तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाहर से सब वेबसाइट से आता है, आप तो इजी भी है थोड़ा सा आज के दौर में। बीते दिनों में आज से अगर 40 साल पहले की पत्रकारिता देखें तो एक एक चीज हाथ से लिखी जाती थी,
1: हाँ।
0: अगर उसको टाइप भी कर रहे हैं तो आपका टाइपराइटर है उससे खबर जाती थी, तो कई बार वो जो शतक है ना
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: 10 रन में तब्दील हो जाता था
1: जी।
0: या विकेट उसने 5 लिए हैं या कोई ऐसा अंक है जो एक जैसा दिखाई देता है, तो गलती हो सकती है।
1: अच्छा सर, आपने बात की है तो हम आपसे अब खेल पत्रकारिता का इतिहास समझना चाहेंगे कि पहले क्या कुछ हुआ करता है तो जो अब नहीं होता है, या अभी क्या कुछ नयापन आया है?
0: इतिहास तो हर चीज का बहुत पुराना है, जब से इंसान अपने कामकाज में जुटा है तब से बात होने लगी। पहले तो ये समझ में नहीं आता था कि खबर अपने आप में क्या है,
1: जी
0: एक दूसरे की बात एक दूसरे से करना, जिसे हम चुगली भी कहा करते हैं, वो भी तो एक चल में खबर है।
1: बिल्कुल।
0: कहीं कोई घटना घटी है, हम उस घटना को दूसरे को बता रहे हैं कि वहां पर ऐसा हुआ। उस घटना को बताने वाले कई बार बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिसको हम बोला करते थे ये तो बहुत अच्छा बोलता है कि हम वहां से जा रहे थे, वहां से दो गाड़ियां आ रही थी, एक ने ब्रेक लगाया एक ने साइड लिया, दोनों टकरा गई, उसमें एक आदमी घायल हो गया, दूसरे ने उसको उठाया, ये पूरी की पूरी उसने रिपोर्टिंग की।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसी तरह की चीजें हुआ करती हैं। अब ये धीरे धीरे जब आई है सारी चीज, अब चूंकि अब 1994 एक ऐसा सन दिखाई देता है जहां से ये दिवस प्रारंभ हुआ है,
1: जी जी जी
0: इस तरह की तारीखें तो सुनिश्चित नहीं है, लेकिन मेरा मानना है मानव जब भी अपने कार्यकलापों में सामने आया है, वास्तव में वो रिपोर्टिंग होती रही, उसकी जानकारी मिलती रही, तो वो भी अपने आप में एक पत्रकारिता ही थी। हमारे जो सबसे बड़े पत्रकार कौन कहलाते हैं? नारद मुनि।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हमारे जो सफल खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनकी कहानियां आप तक कैसे पहुंचती हैं, ये जानना हमारे लिए बड़ा रोचक रहेगा।
0: दरअसल इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है।
1: अच्छा,
0: ये आसान नहीं होता।
1: जी जी,
0: आपने बड़े बड़े एंकर्स देखे होंगे, बड़े समीक्षक देखे होंगे जो खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं।
1: जी जी,
0: खेलों के बारे में बताते हैं, तो आपको रिसर्च करना होता है।
1: जी
0: हाँ, आजकल इंटरनेट बहुत मदद करता है, लेकिन सच्चाई आपको जांचने की बहुत जरूरत हुआ करती है। मुझे ध्यान है कि माही के ऊपर एक मैं स्टोरी कर रहा था, माही यानी MS धोनी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: मैं जिस मैगजीन के लिए लिखा करता था, ये 2012-13 की बात है
1: जी,
0: तो बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढी पूछी, चूंकि रांची में मेरे मित्र भी रहते हैं, मैं वहां जाता रहता हूँ कमेंट्री के लिए, तो उनसे पूछा, तो ऐसी चीजें मालूम पड़ी, जैसे माही को गुड़ की चाय बहुत पसंद है।
1: जी जी।
0: माही किस तरीके से आगे बढ़े, कहाँ कहाँ उन्होंने मेहनत की, अब बाद में तो फिल्म आ गई, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आर्टिकल में मैंने उनकी जब जीवन परिचय लिखा था उसमें लिखा था कि MS धोनी की जो कहानी है ना, वो किसी फिल्मी नायक की कहानी के समान प्रतीत होती है। जैसे एक फिल्मी नायक संघर्ष से गुजरा है, उसका बचपन मुश्किलों में बीता है, फिर संकल्पित हुआ, मेहनत की, आगे बढ़ा। तो MS धोनी की कहानी ऐसी समझ में आती है कि इस पे तो एक फिल्म बन सकती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित था कि 2 साल बाद
1: फिल्म आ गई। जी जी।
0: और तब मैंने एक दोबारा आर्टिकल लिखा, पर्टिकुलर उस कॉलम को मैंने उस आर्टिकल में डाला, 2.5 साल पहले मैंने ये लाइनें लिखी थी, और नीरज पांडे ने उन लाइनों को जैसे महसूस कर लिया। तो वो जो आप रिसर्च करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फिर आगे आपको बड़ा सम्मान दिलाती है।
1: बिल्कुल।
0: रिसर्च के बगैर कुछ नहीं होता, ना आप लिख सकते हो ना कमेंट्री कर सकते हो।
1: बिल्कुल।
0: आप कैसे बता सकते हो कि गावस्कर इतने बड़े बैट्समैन कैसे हुए? 1971 में गावस्कर ने 4 टेस्ट मैचों में 774 रन मारे थे, ये उनकी शुरुआती श्रृंखला थी।
1: जी जी।
0: दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं किया। पहले 4 टेस्टों में 774 मारना, पहली सीरीज में दोहरा शतक मारना, 4 शतक मारना, अब ये रिसर्च करोगे तभी मालूम पड़ेगा।
1: बिल्कुल सर, एक पत्रकार होने के नाते हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो गांव कस्बे के छोटे छोटे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने में खेल पत्रकार का क्या रोल होता है?
0: बड़ी भूमिका रहा करते हैं। देखिए, खेल पत्रकार सिर्फ ये समझें कि वो खेल पत्रकार ही है, ये पर्याप्त नहीं है। वो एक इंसान भी है, वो बच्चों को देखता है
1: जी,
0: वो प्रतिभाओं को देखता है, अगर उसके मन में मंशा है, इच्छा है
1: जी,
0: तो वो कोशिश करेगा। और मुझे तो लगता है खेल पत्रकारों को जवाबदारी उठानी चाहिए, जो खेलों की जानकारी रखते हैं, थोड़ा संबंध रखते हैं, थोड़े मंचों के बारे में जानते हैं, वो प्रतिभाओं को मंच दें। मैं चूंकि रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, टीवी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बच्चों को सबसे पहले बोलता हूँ अपना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप रेडियो के स्टूडियो में जाएं, आकाशवाणी के स्टूडियो में जाएं, दूरदर्शन के स्टूडियो में जाएं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बोलने का काम है। जब बच्चे दिखते हैं गली में खेलते हुए, मैं उनको बोलता हूँ आप स्टेडियम जाएं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, मैं आपको जो स्टेडियम का मैनेजर है, जो भी डायरेक्टर है, मैं उनसे बात कराऊंगा। ये हर पत्रकार की जवाबदारी होती है और ये करना चाहिए उनको, तभी गांव कस्बे के लोग बाहर आएंगे। एमएस कहां से निकल के आए हैं, है ना, अगर वो आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने उनको बैक किया होगा।
1: बिल्कुल।
0: पत्रकारों को और ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका और अदा कर सकते हैं।
1: सर, आपने अभी तक 4 ओलंपिक, 4 एशियन गेम्स, 4 कॉमनवेल्थ और साथ साथ हॉकी और क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर अप किए हैं, तो अब तक का कवर किया हुआ सबसे इमोशनल मैच कौन सा रहा आपका, और क्या कुछ चुनौती भी रही इस मैच को कवर करते वक्त?
0: मुझे ध्यान है नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप में कर रहा था, एक मैच था जहां इंडिया खेल रहा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।
1: जी,
0: किसी को ये आइडिया नहीं था, एटलीस्ट मेरे प्रोड्यूसर को भी ये नहीं मालूम था कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चले जाएगा। और ये बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था।
1: जी जी।
0: भारत सेमीफाइनल में 1975 से पहुंचा ही नहीं था। और उस मैच में सब कुछ अनोखा घट रहा था।
1: जी।
0: हमारा कमेंट्री बॉक्स जहां था उसके ऊपर जो छज्जा लगा हुआ था काफी आगे था, लेकिन इतना आगे नहीं था कि वहां से अगर पानी आए तो हम बच जाएं। इत्तेफाक से पानी आना शुरू हुआ, लाइव प्रसारण चल रहा था, पूरा देश सुन रहा था।
1: जी।
0: इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, पानी जब बरसा तो वहां टेम्परेचर था उस समय 6-7 डिग्री, हम भीग रहे थे, लेकिन कमेंट्री करनी थी, हम खड़े हो गए उसके बावजूद हम भीग रहे थे।
1: क्या बात है।
0: वो कमेंट्री हमें करनी थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मेहनत कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने सब टीमों के खिलाफ आधा दर्जन गोल मारे थे, तो भारत के खिलाफ पहला गोल हुआ था सेकंड हाफ में।
1: जी।
0: पहले हाफ में हमने ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर रोका था, शुरू के 35 मिनट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 35 मिनट तक रोक लेना, और मेरे दिमाग में जो था वो मैंने बोला, तो बाद में बहुत सारे श्रोता है जानकार तो बोले ऐसा कैसे संभव है, भारत अपने मैच पहले ही हार चुका था, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कैलकुलेशन भी उनको बताया मैंने कि इस तरीके से भारत सेमीफाइनल पहुंच सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया को हराना असंभव जैसा था।
1: जी जी।
0: बड़े प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, लेकिन बरसते पानी में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला हाफ बराबरी पर रुक गया ऑस्ट्रेलिया को, मेरे लिए वो यादगार मैच था क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व था।
1: जी जी।
0: और भारत के लिए बरसते पानी में कमेंट्री कर रहा था।
1: जी जी।
0: 6 डिग्री टेम्परेचर में मैं अभी भी जब आपसे बात कह रहा हूँ तो वो समय याद आ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: भारत ने पूरी जान लगाई, ऑस्ट्रेलिया 4-0 से वो मैच जीता, लेकिन वो सारे जो गोल हुए थे वो सेकंड हाफ में हुए थे, भारत ने कड़ी टक्कर दी थी।
1: क्या बात है, आपसे बात करके खुद हमें भी रोमांच सा हो आया है।
0: जी।
1: और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति जो है वहाँ इतने बड़े मंच पर साक्षी है उस मैच का। सर, चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे जो नए बच्चे हैं जो खेल पत्रकार बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: बच्चे बहुत समझदार हैं।
1: जी।
0: बच्चे जानकारी रखते हैं, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है।
1: जी।
0: इसके लिए थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा जानकारी रखें। पत्रकारिता एक साधारण जॉब नहीं है, उस पर खेल पत्रकारिता जो डेटा के ऊपर, जो आंकड़ों के ऊपर, जो खिलाड़ी के या खेल के पूरे करियर के ऊपर आपके काम को सामने लाता है, तो वहां आप गलत या भ्रामक या अतिशयोक्ति नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
0: अगर सामने वाले ने 6 विकेट लिए हैं 19 रन देकर, तो आपको 19 रन देकर 6 विकेट ही लिखने होंगे। आप ये नहीं लिख सकते आम पत्रकार की तरीके से कि उन्होंने बहुत सारे विकेट ले लिए। जैसे हमारे यहाँ आता है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, वहां तो तादाद तय है, संख्या तय है। आपके डेटा जो है वो सही हो, सही आकलन हो, हवा में बात ना हो, ये खेल पत्रकार की सबसे बड़ी जवाबदारी है। ईमानदारी से काम करे, नो डाउट ये मंच आपको खूब सारा सम्मान देगा, और कहते ना अब तो खूब सारा पैसा भी दिया करता है।
1: सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है कि हम कि कुछ और हम बहुत सारा आपसे जाने, लेकिन अब समय जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है। तो श्रोताओं, आज का दिन है उनके नाम जो हमारे जज्बातों को शब्द देते हैं, दुनिया भर के खेल पत्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज हम मना रहे हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। प्रशांत सिंगर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी आज के दिन की हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं।
0: बहुत सारा धन्यवाद आपको, आपके संस्थान को और बहुत सारे पत्रकारों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में तमाम सारी ऊंचाइयां लेकर आए, आपके जीवन में एक नया संकल्प पैदा हो, ऐसे हम आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
1: धन्यवाद सर, और आपने भी आज हमें इतनी सारी रोचक जानकारियां दी हैं, जो अनुभव हमसे साझा किए हैं वो बहुत ही अच्छे थे, जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाते हैं आमजन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के अतिथि प्रशांत सिंगर सर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर और खेल समीक्षक। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
3: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल शक्ति के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू दादू दादू कहाँ हो आप? दादाजी, हमारे कॉलेज में रक्षा प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान हुआ था।
2: अरे अरे अरे बेटा, एक मिनट पहले आराम से बैठ जाओ।
1: दादू सुनो तो, वहाँ पर मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL का नाम सुना था और सर कह रहे थे कि ये संस्था भारत की सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। दादू, क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएंगे ना?
2: हाँ हाँ जरूर बेटा, आज मैं तुम्हें इसी संस्था की कहानी सुनाऊंगा।
1: ओके दादाजी।
2: हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो आराम से। देखो बेटा, इसने भारत को मिसाइल निर्माण में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: अच्छा दादाजी, यानी आज की कहानी वैज्ञानिकों, मिसाइलों और देशभक्ति की होगी?
2: हाँ बेटा, और साथ ही ये कहानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के सपनों और भविष्य से भी जुड़ी हुई है।
1: तो फिर दादाजी, सबसे पहले ये बताइए कि BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
2: भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को की गई थी। उस समय भारत ये समझ चुका था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जो देश में ही आधुनिक मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण कर सके।
1: दादाजी, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के बारे में जाना था। वो भी देश की रक्षा यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, है ना? तो क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड उससे अलग है?
2: बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हें हमारी पिछली चर्चा अच्छी तरह से याद है बिटिया।
1: वो तो है दादाजी।
2: वास्तव में BEL और BDL दोनों ही भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां BEL मुख्य रूप से रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है, वहीं BDL का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार की मिसाइलों, टॉर्पिडो और हथियार प्रणालियों का निर्माण करना होता है बेटा।
1: तो दादाजी, BDL का मुख्यालय कहाँ पर है?
2: ये बेटा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। और मजे की बात ये है कि ये आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक माना जाता है।
1: हैदराबाद? ये तो वही शहर है दादू जहाँ पहले से कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान भी हैं।
2: हाँ बेटा, सब कुछ याद है तुमको। हैदराबाद को भारत की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बिटिया। यहाँ DRDO की कई प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान केंद्र और अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयां स्थित है। इसी कारण BDL के विकास में भी इस शहर की विशेष भूमिका है।
1: लेकिन दादाजी, एक बात अभी भी मेरे मन में।
2: पूछो।
1: जब मिसाइलें और हथियार दूसरे देशों से खरीदे जा सकते थे, तब भारत को अपनी अलग संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
2: इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारी परीक्षा कल है, तुम्हें पढ़ाई के लिए किताब चाहिए। अगर वो किताब तुम्हारे पास है तो तुम जब चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें हर बार किसी दूसरे से किताब मांगनी पड़े तो क्या होगा?
1: तो ये हो सकता है कि समय पर किताब ही ना मिले।
2: बिल्कुल, ऐसे ही अगर परीक्षा के ठीक पहले कोई दोस्त किताब देने से मना कर दे, तब
1: तो दादू परेशानी और बढ़ जाएगी ना।
2: हाँ बेटा, यही स्थिति किसी देश की सुरक्षा की भी हो सकती है। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहे तो संकट के समय उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। युद्ध या आपातकाल के समय हथियारों, मिसाइलों और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है बेटा। अब ऐसे समय में यदि विदेशी आपूर्ति रुक जाए तो देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है कि नहीं?
1: यानी अपनी मिसाइलें खुद बनाना सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है दादाजी।
2: हाँ मेरी प्यारी बिटिया, यही सोचकर भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और आज आत्मनिर्भरता की दिशा में BDL की स्थापना भारत का एक अहम और बड़ा कदम है। तुम जानती हो जब BDL की स्थापना हुई तब उसका उद्देश्य केवल मिसाइल बनाना नहीं था बेटा, इसके पीछे एक बड़ा राष्ट्रीय सपना था।
1: कैसा सपना दादाजी?
2: यही कि भारत की अपनी रक्षा तकनीक स्वयं विकसित हो, भारतीय वैज्ञानिकों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर मिले, विदेशी निर्भरता कम हो, देश की सुरक्षा और मजबूत बने। इसके अलावा सबसे जरूरी कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार और अनुसंधान के अवसर भी पैदा हो।
1: तो दादाजी, BDL केवल एक संस्थान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक जरूरी हिस्सा है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने।
1: दादाजी, क्या सन 70 के उस समय भारत के पास मिसाइलें बनाने का अनुभव था?
2: मेरे ख्याल से बेटा बहुत नहीं था, बहुत कम अनुभव था। लेकिन भारत के पास प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे DRDO और BDL ने मिलकर ऐसी तकनीकें विकसित की जिनकी बदौलत आज हमारा भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है, जो आधुनिक मिसाइल प्रणालियां खुद विकसित और निर्मित कर रहा है।
1: यानी आज जिन मिसाइलों पर हम गर्व करते हैं ना दादाजी, उनके पीछे सालों की मेहनत और कई सारे वैज्ञानिकों का समर्पण छिपा है।
2: बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, और यही बात हमें प्रेरित करती है कि अगर लगन, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का भाव हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता।
1: दादाजी, अब मैं जान गई हूँ कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं थी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। दादू, अब ये बताइए ना कि BDL किन किन आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करता है और उनमें कौन सी अद्भुत तकनीकें काम करती हैं?
2: लगता है तुम्हारे अंदर भी एक वैज्ञानिक जाग रहा है।
1: हाँ दादू।
2: अच्छी बात है, अब हम भारत की मिसाइल शक्ति की दुनिया में चलते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लो, मिसाइल कोई आम हथियार नहीं है, ये विज्ञान, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है।
1: दादू दादू दादू, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना, रुचि को समझ में नहीं आया।
2: अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि तुम जैसे जो विद्यार्थी विज्ञान और तकनीक में रुचि रख रहे हैं उनके लिए ये क्षेत्र बहुत रोमांचक है।
1: अब समझे। तो अब बताइए कि हम सबसे पहले किस मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं?
2: सबसे पहले सुनो बेटा आकाश मिसाइल के बारे में। कल्पना करो कि कोई दुश्मन विमान या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करे, ऐसे समय में उसे रोकने का काम करती है आकाश मिसाइल। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है,
1: यानी यह जमीन से छोड़ी जाती है और आसमान में उड़ते लक्ष्य को नष्ट करती है। दादू, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है।
2: बिल्कुल सही बेटा, आकाश मिसाइल में अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली लगी होती है, ये लक्ष्य की गति, दिशा और ऊंचाई का लगातार विश्लेषण करती रहती है।
1: यानी ये केवल ताकतवर नहीं है बल्कि मेरे जैसी बुद्धिमान भी है।
2: बिल्कुल भाई, हमारी प्यारी रानी बिटिया तो बुद्धिमान है ही।
1: वो तो है।
2: हाँ बेटा देखो, आधुनिक युद्धों में केवल शक्ति नहीं बल्कि सटीकता और बुद्धिमत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
1: दादू, मैंने अस्त्र मिसाइल का नाम भी सुन रखा है।
2: हाँ हाँ बेटा, अस्त्र भारत की अत्याधुनिक हवा से हवा में ही मार करने वाली मिसाइल है। इसे लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाता है बेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऐसे लक्ष्य को भी नष्ट कर सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं देता।
1: अच्छा।
2: हाँ।
1: लेकिन जब लक्ष्य दिखाई ही नहीं देता तब मिसाइल उसे खोजती कैसे होगी?
2: यही तो इसकी अद्भुत तकनीक है। अस्त्र में अत्याधुनिक सेंसर, रडार और मार्गदर्शन प्रणाली होती है बेटा। ये दुश्मन के विमान से आने वाले संकेतों को पहचान लेती है और उसी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है।
1: वाह, जैसे कोई बाज दूर बैठे शिकार को पहचान लेता है।
2: बिल्कुल वैसा ही।
1: अच्छा दादू, और ये नाग मिसाइल क्या है?
2: नाग मिसाइल को विशेष रूप से दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है बेटा। तुमने टैंक देखे हैं?
1: टैंक गणतंत्र दिवस की परेड में देखे थे दादाजी मैंने।
2: हाँ हाँ,
1: पर ये तो बहुत मजबूत और भारी होते हैं।
2: हाँ बेटा, आधुनिक टैंकों पर मोटी बख्तर बंद परत होती है, लेकिन नाग मिसाइल उन्हें भी भेद सकती है। इसे फायर एंड फॉरगेट तकनीक से बनाया गया है बेटा।
1: फायर एंड फॉरगेट तकनीक?
2: हाँ
1: दादू, ये किस तरह की तकनीक है?
2: इसका मतलब है कि बेटा, एक बार लक्ष्य निर्धारित करके मिसाइल छोड़ दी जाए तो वो स्वयं लक्ष्य का पीछा करती है, उसे बार बार नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती।
1: दादू, ये तो बड़ी कमाल की मिसाइल है। अच्छा, और ये हेलेना मिसाइल का नाम तो बहुत आधुनिक सा लगता है।
2: क्योंकि ये वास्तव में बहुत आधुनिक है बेटा।
1: अच्छा,
2: हेलेना को हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। ये दूर स्थित टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में बहुत सक्षम है बिटिया। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर ऊंचाई से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे में हेलेना जैसी मिसाइलें सेना को बड़ी जीत दिला देती हैं।
1: आकाश आसमान में काम करती है, नाग जमीन पर काम करती है और हेलेना हेलीकॉप्टर से काम करती है। लेकिन दादू, समुद्र में क्या होता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, समुद्र की सुरक्षा के लिए टॉर्पीडो का उपयोग किया जाता है। टॉर्पीडो पानी के भीतर चलने वाला एक विशेष हथियार होता है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्ध पोतों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। बीडीएल हल्के और भारी दोनों प्रकार के टॉर्पीडो का निर्माण करता है बेटा।
1: यानी बीडीएल धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देता है।
2: एकदम सही बेटा, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।
1: दादू, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मिसाइलें सोच भी सकती है।
2: एक तरह से तुम सही कह रही हो बेटा।
1: अच्छा?
2: हाँ हाँ, आज की आधुनिक मिसाइलों में लगे कंप्यूटर प्रति सेकंड हजारों गणनाएं करते हैं। वे ये तय करते हैं कि लक्ष्य कहाँ है, उसकी गति कितनी है, दिशा क्या है, उसे पकड़ने के लिए किस मार्ग से जाना चाहिए। इसीलिए आधुनिक मिसाइलें अत्यंत सटीक होती जा रही हैं बेटा।
1: तो दादाजी, क्या एक मिसाइल बनाने में केवल इंजीनियर ही काम करते हैं?
2: नहीं नहीं बेटा, इसके पीछे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की पूरी टीम काम करती है। सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, भौतिक वैज्ञानिक, गणित कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, एरोस्पेस इंजीनियर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ, रोबोटिक्स इंजीनियर, यानी विज्ञान की अनेक शाखाएं मिलकर एक आधुनिक मिसाइल का निर्माण करती है बेटा।
1: दादू, ये तो कमाल है भाई, मुझे तो ये जानकर बहुत अचंभा हो रहा है। मैं तो सोचती थी कि मिसाइल बनाने का काम केवल कुछ इंजीनियर ही करते होंगे, लेकिन यहाँ तो विज्ञान की इतनी सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं।
2: बिल्कुल बेटा, वास्तव में किसी भी बड़ी तकनीक के पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और वर्षों का अनुसंधान छिपा हुआ होता है। एक मिसाइल केवल धातु, ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का समूह नहीं होती, बल्कि ये देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होती है।
1: दादू, क्या भारत ने हमेशा से मिसाइलें बनाई है?
2: नहीं नहीं बेटा, भारत को क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था।
1: अच्छा?
2: जिसका नाम था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत अपनी विभिन्न प्रकार की मिसाइलें स्वयं विकसित करे, और ऐसा हुआ भी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां विकसित की गई बेटा।
1: दादू, क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी योगदान था?
2: बहुत बड़ा योगदान था बेटा। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। उनका मानना था कि यदि भारत को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना होगा।
1: दादाजी, मैंने उनके बारे में पढ़ा था। डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारण सा जीवन जीते थे।
2: हाँ बेटा, वे केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि महान शिक्षक भी थे। वे हमेशा विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते रहते थे।
1: सही कहा दादाजी आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ये कारखाने सामान्य फैक्ट्रियों जैसे होते हैं?
2: नहीं नहीं बेटा, रक्षा उत्पादन इकाइयां अत्यंत आधुनिक और सुरक्षित होती हैं। यहाँ हर प्रक्रिया का कड़ा परीक्षण किया जाता है। कई स्थानों पर रोबोट भी कार्य करते हैं। कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें अत्यधिक सटीकता के साथ पुर्जों का निर्माण करती है।
1: रोबोट? सचमुच?
2: हाँ हाँ, आज BDL अपने कई उत्पादन कार्यों में रोबोटिक्स का उपयोग कर रहा है बेटा। कुछ ऐसे कार्य जिनमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, उन्हें रोबोटिक अधिक कुशलता से कर सकते हैं। इससे गुणवत्ता भी बढ़ती है और समय की बचत भी होती है।
1: अच्छा दादू, मैंने हाल ही में इंडस्ट्री 4.0 शब्द सुना था, क्या इसका भी BDL से कोई संबंध है?
2: बिल्कुल, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक बुद्धिमान बनाना। और इसमें शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण, स्मार्ट मशीनें, स्वचालित उत्पादन। BDL भी इन आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने उत्पादन को और अधिक उन्नत बनाता जा रहा है बेटा।
1: दादू, आजकल AI की भी तो बहुत चर्चा होती है ना? क्या रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है?
2: हाँ बेटा, दुनिया के अनेक देश अब AI आधारित रक्षा प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। AI की सहायता से लक्ष्य पहचानना आसान होता है, निर्णय लेने की गति बढ़ती है, सुरक्षा प्रणाली अधिक सक्षम बनती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। और इसी दिशा में BDL भी विभिन्न संस्थानों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रहा है।
1: अच्छा दादाजी, क्या युवा भी इसमें योगदान दे सकते हैं?
2: क्यों नहीं, आज भारत में अनेक युवा स्टार्टअप चला रहे हैं। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं भी शुरू की हैं बेटा। युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता नई तकनीकों पर लगातार कार्य कर रहे हैं।
1: दादू, आपने पहले IDEX का नाम लिया था?
2: हाँ हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, IDEX। ये एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है कि युवा नव प्रवर्तक और स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीकें विकसित करें। BDL भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेता है बेटा।
1: दादू, फिर भी किसी एक देश के लिए सब कुछ बना लेना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो क्या आज भी कुछ उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं?
2: हाँ, एकदम सही कहा बेटा तुमने, कुछ विशेष तकनीकें अभी भी आयात की जाती हैं, लेकिन भारत तेजी से देशीकरण की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। BDL लगातार ऐसे पुर्जों और तकनीकों को भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहा है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।
1: और इसके फायदे क्या क्या होंगे?
2: लाभ ही लाभ है बेटा, विदेशी मुद्रा की बचत, रोजगार में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान का विकास, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती और निर्यात की नई नई संभावनाएं।
1: तो क्या भारत अपने रक्षा उत्पाद दूसरे देशों को भी बेचता है?
2: हाँ बेटा, आज भारत केवल आयातक नहीं है, निर्यातक भी बन रहा है। भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, इससे अनेक देशों की रुचि भारतीय प्रणालियों में लगातार बढ़ती जा रही है बेटा। रुचि बिटिया, अब तुम भला किस सोच में पड़ गई?
1: दादू, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो अगला सवाल है ना, वो तो बच्चों वाला है।
2: अच्छा,
1: पर पूछ लेती हूँ कि क्या वैज्ञानिक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं?
2: नहीं नहीं बेटा, अधिकांश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जिज्ञासा, अनुशासन, निरंतर सीखने की आदत और असफलताओं से कभी ना घबराना, समझी?
1: समझ गई। अच्छा ये बताइए,
2: हाँ,
1: कि आने वाले भविष्य की मिसाइलें कैसी होंगी?
2: बहुत रोचक सवाल है। भविष्य में हम देख सकते हैं अधिक बुद्धिमान प्रणालियां, AI आधारित निर्णय क्षमता, अत्यधिक सटीक लक्ष्य भेदन, तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, मानव रहित युद्ध प्रणालियां, उन्नत सेंसर तकनीक।
1: और संभव है कि इसमें भी कुछ तकनीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में आज के विद्यार्थी भी शामिल होंगे भविष्य में।
2: बिल्कुल ऐसा हो सकता है बिटिया, याद रखो हर बड़ा आविष्कार एक छोटे प्रश्न से शुरू होता है। हर वैज्ञानिक कभी ना कभी एक जिज्ञासु विद्यार्थी था और हर महान उपलब्धि के पीछे सीखने की निरंतर इच्छा होती है।
1: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि विज्ञान केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा, प्रगति और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
2: और यही कारण है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं केवल मिसाइलें नहीं बनाती, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच को भी मजबूत करती हैं।
1: सच कहूं दादू, अब तो मुझे विज्ञान और भी रोचक लगने लगा है।
2: और यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है बिटिया। जब तुम गणित का कोई प्रश्न हल करती हो, विज्ञान का कोई सिद्धांत समझती हो या कंप्यूटर पर कोई नया प्रयोग करती हो, तब तुम भी उसी ज्ञान की दुनिया में कदम रख रही होती हो जहां से भविष्य के वैज्ञानिक और इंजीनियर निकलते हैं। कौन जाने आने वाले वर्षों में भारत की किसी नई मिसाइल, नई रक्षा उपकरण और नई तकनीक के पीछे तुम्हारा भी योगदान हो।
1: ओ दादू, आपका बस चले ना तो आप तो मुझे आज के आज ही वैज्ञानिक बना दे। लेकिन कम से कम आज मैंने ये तो जाना कि आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है।
2: बिल्कुल बेटा, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं हमें यही तो सिखाती हैं कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के बल पर कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन सकता है।
1: दादाजी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे इतना कुछ बताया।
2: अरे बाप रे, तुम्हारी बातों के चक्कर में मेरी चाय का जाने क्या हाल हुआ होगा। चलो चलो चलो चलो, जल्दी से घर चलो बेटा।
1: चलिए चलिए, आपकी चाय पीने का समय हो गया है।
2: हाँ बेटा।
3: श्रोताओं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे किसी और तकनीक के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले संस्थान के बारे में। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र भगवती सक्सेना
2: और दीपक नेमा
3: को दीजिए आज्ञा।
2: नमस्कार।
3: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित गुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: हॉलैंड के राजा का छल, डच कंपनी का कूटनीतिक मुखौटा। 17वीं शताब्दी में दुनिया सम्राटों और शक्तिशाली शासकों का एक नक्शा थी, जहां सत्ता शीर्ष से नीचे की ओर बहती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के व्यापारियों के लिए ये पहचान के एक मौलिक संकट जैसा था। VOC डच गणराज्य में स्थित एक निजी कंपनी थी, एक ऐसा राज्य जो प्रसिद्ध रूप से बिना किसी राजा के था। हालांकि एशिया के शाही दरबारों में व्यापारिक मामलों को राज्य के अस्तित्व से बेहद छोटा माना जाता था। शासक केवल अपने साथी राजाओं और सम्राटों के साथ ही शाही मामलों जैसे युद्ध, सैन्य सहायता और उत्तराधिकार पर चर्चा करना चाहते थे। इस भीड़भाड़ वाले कूटनीतिक अखाड़े में जीवित रहने के लिए डच गणतंत्रवादियों ने एक सोचे समझे वैश्विक धोखे का सहारा लिया। VOC के राजदूत नियमित रूप से खुद को एक गैर मौजूद हॉलैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे। उन्होंने जानबूझकर कंपनी के जटिल कॉरपोरेट ढांचे को छिपाया और इसके बजाय स्टैड होल्डर मॉरिस ऑफ ऑरेंज को एक संप्रभु सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया। वे स्टैड होल्डर की तस्वीरें और कूटनीतिक पत्र लाकर राजाओं की सभा में बैठने की जगह हासिल करने के लिए भ्रम पैदा करते थे। ये छल 1627 में जापान के टोकुगावा शोगुनेट में पीटर न्यूयत्स के मिशन के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। न्यूयत्स ताइवान में व्यापारिक विवादों को सुलझाने की उम्मीद में बड़ी भव्यता के साथ ईदो पहुंचे। हालांकि जापानी अधिकारियों की गहन पूछताछ के सामने उनका मिशन बिखर गया। जापानियों ने गौर किया कि न्यूयत्स के पत्रों पर बटाविया के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर थे, जिन्हें वे केवल जावा का एक जागीरदार मानते थे। शोगुनेट के सख्त पदानुक्रम में एक अधीनस्थ के अधीनस्थ का सीधे जापान के राजा को संबोधित करना असहनीय और अशिष्टता का कार्य था। जापानी अधिकारियों ने प्रसिद्ध रूप से ये निष्कर्ष निकाला कि जावा हॉलैंड के बराबर है और दूतावास को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यूयत्स मिशन की विफलता ने VOC को सिखाया कि वे शोगुन के साथ समान राज्य भागीदार के रूप में बातचीत नहीं कर सकते। हॉलैंड के राजा के झूठ को जारी रखने के बजाय डचों ने एक क्रांतिकारी रणनीतिक बदलाव किया। उन्होंने टोकुगावा राज्य के छद्म प्रजा के रूप में दर्जा स्वीकार कर लिया। उन्होंने शाही पत्र भेजना बंद कर दिया और इसके बजाय बाहरी दुनिया की खुफिया रिपोर्टों के रूप में लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करना चालू कर दिया। हॉलैंड का राजा का ये छल उस युग के इंटरैक्टिव डोमिनेंस को दर्शाता है, जहां यूरोपीय नव आगंतुकों को एशियाई कूटनीतिक रीति रिवाजों के अनुसार खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा, चाहे वो एक काल्पनिक सम्राट के बारे में उपयोगी झूठ हो या एक छद्म प्रजा के रूप में विनम्र समर्पण। VOC ने साबित कर दिया कि प्रारंभिक आधुनिक दुनिया में संप्रभुता का मुखौटा उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मसालों का माल। अंततः कंपनी की लंबी उम्र जहाज के डेक पर नहीं बल्कि पूर्व के राजनैतिक परिदृश्यों में फिट होने के लिए खुद को रीब्रांड करने की उसकी क्षमता पर टिकी थी।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुने कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका इतिहास फिर से आपके साथ आपके पास। अरे मगर आज हमारी तारीख कहीं दिखाई नहीं दे रही।
1: नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं आपकी तारीख रोज की तरह सही वक्त पर फिर आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ।
0: सही वक्त पर?
1: जी हाँ इतिहास जी, बिल्कुल सही वक्त पर। अरे भाई आप मुझे नहीं देख पाए, लेकिन मैं यहाँ आपकी नजरों से ओझल होकर छुप कर बैठी हुई थी।
0: अच्छा, तो आज किसी आजादी के मतवाले की कहानी सुनाने की बजाय कहीं आपका इरादा छुपा छुपी का खेल खेलने का तो नहीं है?
1: अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ आप ही ने तो कहा था ना कि आज आप एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जिनका नाम इतिहास के साथ साथ ब्रिटिश मुकदमों में भी बराबर में दर्ज है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें और अपने श्रोता साथियों को उन्हीं बंगाल के क्रांतिकारी आशित भट्टाचार्य के बारे में बताने वाला हूँ, यही मेरा इरादा है।
1: इसीलिए मैं छुपके देख रही थी कि गुप्त रहकर भी कैसे काम किया जा सकता है या अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश के क्रांतिकारी और भारत माँ के सपूत किया करते थे।
0: अरे वो इस तरह की लुका छिपी का खेल नहीं होता था भाई। देखो मैं बताता हूँ, तारीख ये सशस्त्र क्रांतिकारियों की अलग धारा का इतिहास है जिसमें पंजाब और बंगाल की एक अलग ही भूमिका है, अलग नेतृत्व है, जिन्हें भारत को आजादी दिलाने का एक अलग ही जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था।
1: वाह, जुनून था, दीवानगी थी, पागलपन था, और इतिहास इसी जुनून, दीवानगी और पागलपन ने हमारी आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना? और यही जुनून और पागलपन आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर क्रांतिकारियों में भी भरा हुआ था।
0: बिल्कुल सही, आशित भट्टाचार्य जैसे किशोर तब सामने आए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हजारों हजार छात्र जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का त्याग कर चुके थे गांधी जी के अहिंसक आंदोलन को असफल मान बैठे थे, लेकिन उनके सामने अभी भी क्रांतिकारी संगठन और गुप्त समाज के अपने कार्यभारों की रूपरेखा पर्चों और कलकत्ता के ही एक अखबार युगांतर के माध्यम से प्रस्तुत हो रही थी और किशोरों और नवयुवकों को भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।

0: आशित भट्टाचार्य महज 17-18 बरस की उम्र में ही हथियारों से लैस था।
1: सिर्फ शस्त्रों से ही नहीं तारी, बल्कि उनके दल पर एक और अहम जिम्मेदारी थी, संगठन के लिए कोष जमा करना। और चूंकि सशस्त्र क्रांतिकारी अपना परिचय गुप्त रखते थे, इसलिए वे आम जन या धनिकों के पास जाकर चंदा उगाही भी नहीं कर सकते थे और न ही किसी को लूट कर या ठग कर ही पैसा हासिल कर सकते थे। तो उनके सामने ले देकर एक ही रास्ता बचता था और वो था ब्रिटिश संस्थाओं की लूट। यही एक रास्ता था रकम उगाही का।
0: इसी कारण से आशित भट्टाचार्य और उनके दल ने बंगाल के गांव इटाखोला डाकखाने से निकलने वाले डाक थैलों को लूटने की योजना बनाई।
1: बिल्कुल, हम इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आशित भट्टाचार्य ने ये योजना ब्रिटिश सरकार पर हमले के लिए ही बनाई होगी। आम लुटेरा तो किसी को भी लूट सकता है, पर ये दल तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा से ओतप्रोत था। और आशित भट्टाचार्य और उसके साथी सशस्त्र क्रांति के ही एक अंग थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के जोश से भरा एक समूह थे। लेकिन एक बात है तारीख, ऐसे क्रांतिकारियों और देशमाता के सपूतों की कुछ असफलताओं का कारण यह भी था कि उनकी आम जनता के बीच कोई पहचान नहीं थी। अर्थात आम लोग ये नहीं पहचान पाते थे कि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है वो हमारी आजादी के लिए लड़ रहा है। गोपनीयता ने उन्हें आम जन से काट के रख दिया था। और दूसरी बात ये कि आक्रमण के अलावा उनके पास अन्य कोई आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं थे जिनसे आम जनता के हित जुड़े हों और जिससे वे सशस्त्र क्रांति को गलियों और चौराहों पर ला सकें।
0: पर्याप्त भौतिक साधनों से हीन पुलिस के निर्मम दमन के शिकार ये छुटपुट और अल्पसंख्यक भूमिगत गुप्त संगठन अपनी गतिविधियों में मुख्य रूप से छात्रों, गरीब शहरियों और बुद्धिजीवियों को लेने की ही कोशिश किया करते थे। आशित भट्टाचार्य खुद भी सिलहट गांव से पढ़ने आया था और एक गरीब शहरी छात्र था। और तो और उसके तीन और साथी भी टिपरा गांव के ही थे।

0: पहले तो आशित और उसके साथी प्रतिदिन निरीक्षण करते रहे और पता लगाते रहे। तब उन्हें पता लगा कि डाक के थैलों में बीमा किए हुए लिफाफे भी ले जाए जाते हैं जो पैसों से भरे होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि एक निहत्ता चपरासी ही अकेला इन्हें स्टेशन तक ले जाया करता है और इटाखोला से रेलवे स्टेशन के बीच एक जंगल भी पड़ता है। बस फिर क्या था, वही हमले की योजना बनाई गई।
1: और शायद यही वजह थी कि उन्होंने इटाखोला डाकखाने को लूटने की योजना बनाई।
0: बिल्कुल, ये दिन दहाड़े होने वाली लूट ही थी जिसका खामियाजा इस दल को आगे भुगतना भी पड़ा। वो सभी पकड़े भी गए और पहचान भी।

0: हाँ, तो चारों ने योजना बनाई और शस्त्रों से लैस होकर ईटाखोला डाकखाने के चपरासी का इंतजार करने लगे। और दूसरी तरफ से चपरासी भी निकल चुका था। डाकखाने के चपरासी का बयान था कि जब वो थैला लेकर डाकखाने से निकला तो सामने से एक युवक बोतल लेकर आता दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक और नौजवान पीछे से आया और चपरासी को धक्का देकर गिरा दिया। जब वो खड़ा होने को हुआ तब पीछे से उसके सर पर वार किया गया। वो फिर गिरा और तब एक झाड़ी के पीछे से चार नौजवान और निकले और डाक थैला लेकर भाग निकले। तब तक चपरासी बेहोश हो चुका था।
1: हाँ, और इस बयान से ये पता चलता है कि वो कुल मिलाकर 6 नौजवान थे, यानी कि दल 6 लोगों का था।
0: हाँ, आशित भट्टाचार्य और उसके 5 और साथी। कुछ और गांव वालों का बयान था कि चपरासी को मारकर थैला छीनकर भागते हुए इन लोगों को पास के खेत में काम कर रहे किसानों ने भी देखा। वो किसान आशित और उनके साथियों को पकड़ने के लिए शोर मचाते हुए भागे, जिसके कारण कुछ और गांव वाले भी आशित और साथियों के पीछे भागे। सारे लोग आशित और उसके साथियों के पीछे थे और बस यही वो पल था जब आशित ने पकड़े जाने के डर से कट्टा निकालकर गोली चला दी।
1: इसमें एक गांव वाला मारा गया जो कि एक सरकारी कर्मचारी था। आखिरकार गांव वालों ने इन युवकों को पकड़ ही लिया और बिना कुछ समझे बूझे पुलिस के हवाले कर दिया
0: और आशित और उसके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। आशित के 3 साथियों को उम्र कैद, 2 साथियों को कुछ समय का कारावास और आशित भट्टाचार्य पर जान लेने का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी की सजा सुनाई गई।

और इस तरह एक और आजादी का परवाना 2 जुलाई 1934 को फांसी पर लटकाया गया। उस समय इस योद्धा की उम्र मात्र 19 वर्ष थी। इस छोटे बालक ने इतनी कम उम्र में ही अपनी भारत माँ के लिए कुर्बानी देकर कई नवयुवकों के लिए मिसाल कायम कर दी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

रेडियो रिपोर्ट में आज हम आपको पहले लिए चल रहे हैं गांधी भवन में, जहां 30 जून को भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा, उनके संरक्षण, बदलते सामाजिक परिदृश्य में उनकी भूमिका पर केंद्रित विषय पर व्याख्यान हुआ।

0: ये व्याख्यान दिया देश के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी, भारतीय भाषाओं के विशिष्ट अध्येता डॉक्टर जी एन देवी ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए इस कार्यक्रम में।
1: जहाँ समुदाय आते हैं वहाँ भाषा होती है, फिर शब्द बोले या ना बोले, तो इंसान कब से भाषा बोलता होगा? इंसान ने ऐसा समुदाय कम्युनिटी कब बनाए? तो हो सकता है कि भोपाल का इतिहास शायद 3000 साल का होगा, क्योंकि यहाँ जो धान पकता है, द राइस विच ग्रोज हियर हैज ए हिस्ट्री ऑफ अबाउट 4,500 years। तो धान उगाते होगे तो इंसान होगे, इंसान होगे तो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी होगी तो भाषा होगी। कौन सी भाषा थी मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन थी, ये तो हम कह सकते हैं। तो कितने पहले से हम भाषाएं बोल रहे हैं, और ये केवल भारत की बात नहीं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कब से? तो उसका एक बहुत साइंटिफिक ये जवाब है कि तकरीबन 20 लाख साल पहले हम आवाज निकाल सकते थे, लेकिन उस आवाज की श्रृंखला बना के, एक कड़ी बना के, उसका कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे हम चिल्ला सकते थे, रुदन रो भी सकते थे बड़ी आवाज निकाल के, हंस भी सकते थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इंसान ने जो चीजें, जो शरीर के हिस्से आवाज के लिए नहीं बने हैं, ऐसे सभी शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल करके आवाज की किमिया पैदा की। आप सोचिए, हमारे जो होंठ है, दांत है, नाक है, जीवा जीभ है, गला है, इसमें से किसी भी, कोई भी ऑर्गन, कोई भी शारीरिक अंग ये भाषा के लिए नहीं पैदा हुआ फिजियोलॉजिकली। अन्य जानवरों में भी ये सब है, लेकिन जिसको जिसको जीभ है और गला है और दांत है और नाक है, ऐसे हर जानवर ने भाषा नहीं पैदा की। उसके लिए दिमाग है। दिमाग उत्क्रांति के प्रक्रिया में इस जानवर का, जिसे आज हम होमो सेपियन कहते हैं, वो होमो सेपियन बनते काफी, क्योंकि इस तरह के 3-4 और थे, नियंडरथाल भी थे, होमो इरेक्टस थे, और कोई कोई थे, लेकिन एशिया की बात करें तो ये 2-3 हमें। इसके दिमाग का जो इवोल्यूशन है, उत्क्रांति है, उसमें ये दिमाग, जिसे रिफ्लेक्सिव अथवा तो रिएक्टिव अथवा तो जो अपनी जो सोच सकता है और साथ साथ उस सोचने के बारे में सोच सकता है, ऐसा बना। इट्स ए वेरी यूनिक ब्रेन। बाकी अन्य जानवर ये सोच सकते हैं, उनके उनके दिमाग में भी ऐसी भावनाएं, तरल सोच आती है कि बहुत गर्मी है, या तो भूख लगी है, या तो गिरने का डर है, वगैरह वगैरह सब कुछ आता है, मेरे दोस्त आए हैं। लेकिन इस सोच के बारे में सोचना, ये दिमाग की प्रक्रिया, दैट इज गिवन ओनली टू ह्यूमन बीइंग्स, और पिछले 20 लाख साल में ये उत्क्रांत होता होता लगभग हमारे पहले 70 या 80 हजार साल पहले, आज से 70 या 80 हजार साल पहले, इस दिमाग के मदद से आवाज को, आवाज और ध्वनि को इकट्ठा लाके पूरे के पूरे वाक्य बनाना, ये किमया इंसान ने साध्य की थी। तो भाषा ये कितनी पुरानी है? बस 65-70 हजार साल ही पुरानी है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसी दुनिया अगर बिग बैंग से देखें तो 1400 करोड़ साल चलता है इतिहास, और केवल इंसान की, केवल जीव सृष्टि की निर्मिति भी 200-250 करोड़ साल पहले, उसमें से एक अब 70,000 years, दैट इज द पीरियड व्हेन लैंग्वेजेस बिगिन।

रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं रंगश्री लिटिल बैलेट रूप में, जहां मंगलवार को शोक शेर का नाटक का मंचन किया गया, जिसका निर्देशन किया विनोद राय ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रंगश्री लिटिल बैलेट रूप में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिन्होंने कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
1: जिन्होंने हमें जीवन में आसमान की बुलंदियों को छूना सिखाया।
0: अब हम बने उनका सहारा जो पहले थे हमारा सहारा।
1: बचपन में जिन्होंने दी हमें खुशियाँ, वृद्धावस्था में दें हम उन्हें खुशियाँ।
0: अपने वृद्धजनों के प्रति समर्पित रहें, वृद्धजनों का सम्मान करें।
1: शुरुआत आज से ही करें, अपने घर से ही करें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के साहित्य में हमें भारत की वर्तमान अवनति के कारण, उसकी वर्तमान परिस्थिति एवं उसके पुनरुज्जीवन के उपाय के संबंध में उनके विचारों को दर्शाती है। उनका साहित्य हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय कराती है।
1: आजकल हम विज्ञान की खूब दुहाई देते हैं और कहते हैं कि ये बात विज्ञान सम्मत नहीं है, ये गलत फहमी है आदि आदि। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता को नजरअंदाज कर हम पाश्चात्य आदर्शों के पीछे दौड़ते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 300-400 वर्ष पहले अस्तित्व में आए और आज तक समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। स्वामी जी ने हमें इन्हीं बातों की ओर ध्यान देने को कहा है और भारत के पतन के कारणों का विश्लेषण किया है।
2: पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो, और पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों का गला ऐसी क्रूरता से घोंटता हो। अब हमारा धर्म किस में रह गया है? केवल छुआछूत में। मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। हम उन्हें छूते भी नहीं और उन्हें दूर दूर कहकर भगा देते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? हे भगवान, कब एक मनुष्य दूसरे से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेगा? अतः धर्म से जाति भेद नहीं है, जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है। अतः धर्म का कोई दोष नहीं, दोष मनुष्यों का है। कर्म कांडों से उबरकर एवं दार्शनिकों की जटिल व्याख्या से दिशाहीन होकर लोग अधिकाधिक संख्या में जड़वादियों से जा मिले, यही जाति समस्या का सूत्रपात था एवं भारत में कर्मकांड, दर्शन तथा जड़वाद के मध्य उस त्रिभुजात्मक संग्राम का मूल भी यही था जिसका समाधान हमारे इस युग तक संभव नहीं हो पाया है। अवश्य ही जाति धर्म विलुप्त हो गया है, अतएव जिसे तुम लोग जाति धर्म कहते हो वो ठीक उसका उल्टा है। पहले अपने पुराण और शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ो, तब समझ में आएगा कि शास्त्रों में जिसे जाति धर्म कहा गया है उसका सर्वथा लोप हो गया है।
0: भारत के अधःपतन का कारण क्या था? जाति संबंधी इस भाव का त्याग, जैसे गीता कहती है, जाति नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ। आजकल का वर्ण विभाग यथार्थ में जाति नहीं है, बल्कि जाति की प्रगति में वो एक रुकावट ही है। वास्तव में इसने सच्ची जाति अथवा विविधता की स्वच्छंद गति को रोक दिया है। प्रत्येक हिंदू जानता है कि किसी लड़के या लड़की के जन्म लेते ही ज्योतिषी लोग उसके जाति निर्वाचन की चेष्टा करते हैं। वही असली जाति है। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और ज्योतिष इसे स्वीकार करता है, और हम लोग केवल तभी उठ सकते हैं जब इसे फिर से पूरी स्वतंत्रता दे। याद रखें कि इस विविधता का अर्थ वैषम्य नहीं है और ना ही कोई विशेषाधिकार ही। प्रत्येक मजबूत अभिजात्य वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त संप्रदाय जाति का घातक है, वो जाति नहीं है। जाति स्वतंत्रता दो, जाति की राह से प्रत्येक रोड़े को हटा दो, बस हमारा उत्थान होगा।
1: समाज के हर वर्ग को शिक्षित किए बिना जाति की उन्नति संभव नहीं। युवकों में भले बुरे की पहचान करने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए
2: जो लोग कहते हैं कि शिक्षित या गरीब मनुष्यों को स्वाधीनता देने से, अर्थात उनको अपने शरीर और धन आदि का पूरा अधिकार देने तथा उनके वंशजों को धनी और ऊंचे दर्जे के आदमियों के वंशजों के भांति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान सुविधा देने से उच्च गामी बन जाएंगे, तो क्या वे समाज की भलाई के लिए ऐसा कहते हैं अथवा स्वार्थ से अंधे होकर? जो बुरा है उसे हमें दूर करना है तथा जो अच्छा है उसे सुदृढ़ करना है। छात्रों को उनकी राष्ट्रीय विरासत के इन दोनों पक्षों में भेद करना अवश्य सीखना चाहिए। हर एक सांस्कृतिक विरासत के ये दो पक्ष या पहलू होते हैं। ये शिक्षा ही है जो इन दोनों में अंतर करने की क्षमता तथा जो बुरा एवं अप्रासंगिक तथा कमजोर करने वाला है उसे स्वीकार करने का साहस प्रदान करती है। शिक्षा के दौरान हमारे युवकों को सकारात्मक या रचनात्मक तत्वों को पहचानने तथा उन्हें सुरक्षित रखने एवं उन्हें अपने योगदानों से सुदृढ़ करने के पश्चात आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में अवश्य सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
0: मरी हुई जाति को कड़वी दवाई ही पिलानी पड़ेगी, फिर प्यार जताना होगा। दोनों ही पद्धति अपनानी है, स्वामी जी कहते हैं।
2: तुम्हारे देश का जनसाधारण मानो एक सोया हुआ तिमंगल या वेल मछली है, सदाचार संबंधी, जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है, भविष्य की उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वाले को धर दबाने में जो हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो? क्या तुम उस वैद्य की जगह ले सकते हो जो लाते मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने की कोशिश करता हो? मैंने जापान में सुना है कि वहां की लड़कियों का यह विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्यार किया जाए तो वे जीवित हो उठेंगी।
1: सबसे पहले भूखे भारतवासियों को खाना देना पड़ेगा, भूखे पेट भजन नहीं गाया जाता।
2: हमने राष्ट्र की हैसियत से अपना व्यक्ति भाव खो दिया है, फिर यही सारी खराबी का भी कारण है। हमें राष्ट्र को उसके खोए हुए व्यक्ति भाव को वापस लाना है और जन समुदाय को उठाना है। भारत को उठाना होगा, गरीबों को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा और पुरोहित प्रपंच की बुराइयों का निराकरण करना होगा। सबके लिए अधिक अन्न और सबको अधिकाधिक सुविधाएं मिलती रहें। पहले कूर्म अवतार की पूजा करनी चाहिए। पेट है वो कूर्म, इसे पहले ठंडा किए बिना धर्म कर्म की बात कोई ग्रहण नहीं करेगा, नहीं तो केवल व्याख्यान देने से विशेष लाभ ना होगा। पहले रोटी और तब धर्म चाहिए। गरीब बेचारे भूखों मर रहे हैं और हम उन्हें आवश्यकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे हैं। धर्मोपदेश से पेट नहीं भरता।
0: स्वामी जी ने कहा, सेवा भाव से सर्वहारा की सेवा करनी होगी। हम में दिखावा ज्यादा है, सब नाम कमाने के लिए सेवा का नाटक करते हैं।
2: आधी सदी से समाज सुधार की धूम मच रही है। मैंने 10 वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घूमकर देखा कि देश में समाज सुधारक संस्थाओं की बाढ़ सी आई है, परंतु जिनका रक्त शोषण करके हमारे भद्र लोगों ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे हैं, उन बेचारों के लिए एक भी संस्था नजर ना आए। यदि हम भारत को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उनके लिए काम करना होगा। हम कितने ही राजनीति बरतें, उससे उस समय तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि भारत का जनसमुदाय एक बार फिर सुशिक्षित, सुपोषित और सुपालित नहीं होता। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु शोक उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। राष्ट्र की भावी उन्नति विधवाओं को अधिकाधिक पति मिलने पर निर्भर नहीं, वरन आम जनता की अवस्था पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या उनका खोया हुआ व्यक्तित्व बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति नष्ट किए उन्हें वापस दिला सकते हो? ये काम करना है और हम इसे करेंगे ही।
1: जनता के मन में स्वाभिमान जगाना होगा। दलित इंसानों को भी आत्मसंतुष्टि की जरूरत है, उन्हें जगाना होगा। यही हमारा राष्ट्रीय व्रत है।
2: जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वो है कार्य और हम हैं उसके कारक। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा, सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा।
0: आज जनता को उपदेश नहीं, प्यार और संवेदनशीलता की जरूरत है। छोटे से छोटे व्यक्ति की भी समाज में उपयोगिता है।
2: सुधारकों से मैं कहूंगा कि मैं स्वयं उनसे कहीं बढ़कर सुधारक हूं। वे लोग केवल इधर उधर थोड़ा सुधार करना चाहते हैं और मैं चाहता हूं आमूल सुधार। हम लोगों का मतभेद है केवल सुधार की प्रणाली में। उनकी प्रणाली विनाशात्मक है और मेरी संगठनात्मक। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश मढ़ने का साहस नहीं कर सकता कि तुम्हें इसी भांति चलना होगा, दूसरी तरह नहीं। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो राम के सेतु बांधने के समय अपने योगदान स्वरूप थोड़ी बालू लाकर संतुष्ट हो गई थी।

0: बुराई का अंत आलोचना से नहीं होता। हमारे पूर्वज हमें डांटते नहीं थे, प्यार से आशीर्वाद देकर सिखाया करते थे। तभी स्वामी जी ने लिखा है,
1: ये अद्भुत राष्ट्र जीवन रूपी यंत्र युग युग से कार्य करता रहा है। राष्ट्रीय जीवन का यह अद्भुत प्रवाह हम लोगों के सम्मुख बह रहा है। कौन जानता है, कौन साहस पूर्वक कह सकता है कि यह अच्छा है या बुरा, और यह किस प्रकार चलेगा। राष्ट्रीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है देते जाओ, बस वो अपने ढंग से उन्नति करता जाएगा। कोई उसकी उन्नति का मार्ग निर्दिष्ट नहीं कर सकता। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे दूसरे समाजों में भी हैं। निंदा करने की भला आवश्यकता क्या, बुराई को हर कोई दिखा सकता है। मानव समाज का सच्चा हितैषी तो वो है जो इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का उपाय बताए। क्या भारतवर्ष में कभी सुधारकों का भाव था? क्या तुमने भारत का इतिहास पढ़ा है? रामानुज, शंकर, नानक, चैतन्य, कबीर और दादू कौन थे? ये सब बड़े बड़े धर्माचार्य जो भारत गगन में अत्यंत उज्जवल नक्षत्रों की तरह एक के बाद एक उदय हुए और फिर अस्त हो गए, कौन थे? इन सब ने प्रयत्न किया और उनका काम आज भी जारी है। भेद केवल इतना है, वे आज के समाज सुधारकों की तरह अपने मुंह से कभी अभिशाप नहीं उगलते थे, उनके मुंह से केवल आशीर्वाद ही निकलता था। इससे जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाता है। हम लोगों को अपनी प्रकृति के अनुसार उन्नति करनी होगी।
2: हर समाज का अलग अलग ढंग, अलग अलग संस्कार होते हैं। एक को दूसरे पर थोपने से अनर्थ हो जाता है। इसलिए सुधार के लिए हमें अपनी पद्धति, अपने संस्कार ही अपनाने होंगे। स्वामी जी का मत था,
1: विदेशी संस्थाओं ने बलपूर्वक जिस प्रणाली को हम में प्रचलित करने की चेष्टा की है उसके अनुसार काम करना व्यर्थ है। वो संभव है, मैं दूसरी कौमों की सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं करता, वे उनके लिए अच्छी हैं, पर हमारे लिए नहीं। वो उनके लिए जो कुछ अमृत है, हमारे लिए वही विष हो सकता है। पहले यही बात सीखनी होगी। अन्य प्रकार के विज्ञान, अन्य प्रकार के परंपरागत संस्कार और अन्य प्रकार के आचारों से उनकी वर्तमान सामाजिक प्रथा गठित हुई है, और हम लोगों के पीछे हैं हमारे अपने परंपरागत संस्कार और हजारों वर्षों के कर्म। अतएव हमें स्वभावतः अपने संस्कारों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, और ये हमें करना ही होगा।
0: भारत धर्म पर टिका है। भूखे संतप्त भारतीयों का एकमात्र सहारा धर्म ही है। उनका उद्धार आध्यात्मिक पथ पर ही संभव है।
1: मैं जीवन भर काम करता रहा हूँ, कम से कम काम करने का प्रयत्न करता रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के बल पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं होते,

0: व्याख्या करनी होगी। जन साधारण को प्रकृत धर्माचार का ज्ञान नहीं है, उन्हें सिखाने का बीड़ा स्वामी जी ने उठाया था, तभी वे लिखते हैं।
1: भारत के सभी समाज सुधारकों ने पुरोहितों के अत्याचारों और अवनति का उत्तरदायित्व धर्म के मथे मढ़ने की एक भयंकर भूल की और एक अभेद्य गढ़ को ढहाने का प्रयत्न किया। नतीजा क्या हुआ? असफलता। बुद्ध देव से लेकर राम मोहन राय तक सबने जाति भेद को धर्म का एक अंग माना और जाति भेद के साथ ही धर्म पर भी पूरा आघात किया और असफल रहे। सुनो मित्र, प्रभु की कृपा से मुझे इसका रहस्य मालूम हो गया है। दोष धर्म का नहीं है। मेरा यही दावा है कि हिंदू समाज की उन्नति के लिए हिंदू धर्म के विनाश की कोई आवश्यकता नहीं, और ये बात नहीं कि समाज की वर्तमान दशा हिंदू धर्म की प्राचीन रीति नीतियों और आचार अनुष्ठानों के समर्थन के कारण हुई, वरन ऐसा इसलिए हुआ कि धार्मिक तत्वों का सभी सामाजिक विषयों में अच्छी तरह उपयोग नहीं हुआ है। मैं इस कथन का प्रत्येक शब्द अपने प्राचीन शास्त्रों से प्रमाणित करने को तैयार हूं। समाज की ये दशा दूर करनी होगी, परंतु धर्म का नाश करके नहीं, वरन हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण कर।
2: हमारे रोम रोम में धार्मिक संस्कार रचे बसे हैं। भारत को जगाने के लिए उन्हीं संस्कारों का सहारा लेना पड़ेगा। भारत उसी भाषा को जानता है, समझता है। स्वामी जी ने कहा है,
1: भला हो या बुरा, भारत का वायुमंडल इसी धार्मिक आदर्श से बीसियों सदियों तक पूर्ण रहकर जगमगाता रहा है। भला हो या बुरा, हम इसी धार्मिक आदर्श के भीतर पैदा हुए और पले हैं। यहां तक कि अब वो हमारे रक्त में ही मिल गया है। हमारे रोम में वही धार्मिक आदर्श रम रहा है। वो हमारे शरीर का अंश और हमारी जीवन शक्ति बन गया है। क्या तुम उस शक्ति की प्रतिक्रिया जागृत कराए बिना उस वेगवती नदी के तल को, जिसे उसने हजारों वर्ष में अपने लिए तैयार किया है, भरे बिना ही धर्म का त्याग कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि गंगा की धारा फिर बर्फ से ढके हुए हिमालय को लौट जाए और फिर वहां से नवीन धारा बनकर प्रवाहित हो? यदि ऐसा होना संभव भी हो, तो भी यह कदापि संभव नहीं हो सकता कि यह देश अपने धर्ममय जीवन के विशिष्ट मार्ग को छोड़ सके और अपने लिए राजनीति अथवा अन्य किसी मार्ग का प्रारंभ कर सके। जिस रास्ते में बाधाएं कम हैं, उसी रास्ते में तुम काम कर सकते हो, और भारत के लिए धर्म का मार्ग ही कम बाधा वाला मार्ग है। धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है, हमारी उन्नति का मार्ग है, और हमारे कल्याण का मार्ग भी यही।

0: हमें हर बात के लिए आध्यात्मिकता का पथ अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शिराओं में वही रक्त बनकर दौड़ रहा है। उस रक्त को साफ करना होगा। स्वामी जी ने इसी बात को यूं समझाया है,
1: मेरे कहने का ये अर्थ भी नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किंतु मेरा तात्पर्य यही है और मैं तुम्हें सदा इसकी याद दिलाना चाहता हूं। ये सब यहाँ गौण विषय है, मुख्य विषय धर्म है। भारतीय मन पहले धार्मिक है फिर कुछ और। हमारी आध्यात्मिकता ही हमारा जीवन रक्त है। यदि ये साफ बहता रहे, यदि वो शुद्ध एवं सशक्त बना रहे, तो सब कुछ ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, चाहे जिस किसी तरह की ऐहिक त्रुटियां हो, चाहे देश की निर्धनता ही क्यों ना हो, यदि खून शुद्ध है तो सब सुधर जाएंगे। इस भांति भारत में सामाजिक सुधार का प्रचार तभी हो सकता है जब ये देखा जाए कि उस नई प्रथा से आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में कौन सी विशेष सहायता मिलेगी। राजनीति का प्रचार करने के लिए हमें दिखाना होगा कि उसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन की आकांक्षा आध्यात्मिक उन्नति की कितनी अधिक पूर्ति हो सकेगी।
2: स्वामी जी ने समझ लिया था कि राजा महाराजाओं का समय लद रहा है, समाजवाद का युग आने वाला है।
1: सब बातों से यही प्रकट हो रहा है कि समाजवाद अथवा जनता द्वारा शासन का कोई स्वरूप, उसे आप चाहे जिस नाम से पुकारें, उभरता आ रहा है। लोग निश्चय ही ये चाहेंगे कि उनकी पार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वे कम काम करें, उनका शोषण ना हो,

0: युद्ध ना हो और भोजन अधिक मिले। इस बात का हमारे पास क्या प्रमाण है कि ये अथवा दूसरी कोई सभ्यता, जब तक कि वो धर्म पर, मनुष्य के भीतर के शुभ पर आधारित ना हो, स्थायी होगी? केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर दे सकता है। अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है।
1: अच्छी बातों का अनुकरण करना ठीक है, पर अंधानुकरण नहीं, अपनी स्वतंत्रता कायम रखना है।
0: हमारा उद्देश्य है सभी को, प्रत्येक को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का अधिकार प्राप्त कराने में सहायता करना। धर्म को बिना हानि पहुंचाए जनता की उन्नति, इसे अपना आदर्श वाक्य बना लो। दूसरे का अनुसरण करना सभ्यता की निशानी नहीं है, यह एक महान पाठ है जो हमें याद रखना है। अनुकरण करना हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता, वो तो मनुष्य के अधः पतन का लक्षण है। उसी प्रकार तुम भी करो और औरों से उत्तम बातें सीखकर उत्तम बनो। जो सीखना नहीं चाहता वो तो पहले ही मर चुका है। औरों के पास जो कुछ भी अच्छा पाओ सीख लो, पर उसे अपने भाव के सांचे में ढाल कर लेना होगा। दूसरे की शिक्षा ग्रहण करते समय उसके ऐसे अनुगामी ना बनो कि अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठो। भारत के इस जातीय जीवन को भूल मत जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारतवर्ष के सभी आदिवासी यदि अमुक जाति की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जाति के आचार व्यवहार आदि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता।

0: सुधार का अर्थ है समस्त जाति का सुधार। निम्न तबकों के सुधार के बिना जातीय सुधार संभव नहीं, तभी वे लिखते हैं,
1: जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जो चिरंतर निर्झर बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्जवलतर, महत्तर और पहले से भी और ऊंचा उठाओ। गत शताब्दी में सुधार के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं, उनमें से अधिकांश केवल ऊपरी दिखावा मात्र रहे हैं। उनमें से प्रत्येक ने केवल प्रथम दो वर्णों से ही संबंध रखा है, शेष दो से नहीं। विधवा विवाह के प्रश्न से 70% भारतीय स्त्रियों का कोई संबंध नहीं है। और देखो, मेरी बात पर ध्यान दो, इस प्रकार से सब आंदोलन का संबंध भारत के केवल उच्च वर्णों से ही रहा है, जो जन साधारण का तिरस्कार करके स्वयं शिक्षित हुए हैं। इन लोगों ने अपने अपने घर को साफ करने में कोई कसर नहीं रखी, पर इसको सुधार नहीं कहा जा सकता।
2: दलितों को सहायता करने का मतलब है उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की सीख देना, फिर वे अपनी उन्नति स्वयं कर लेंगे। स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी।
1: हमारा संघ दीनहीन, दरिद्र, निरक्षर किसान तथा श्रमिक समाज के लिए है, और उनके लिए सब कुछ करने के बाद जब समय बचेगा, केवल तब कुलीनों की बारी आएगी। प्रेम द्वारा तुम उन किसान और श्रमिक लोगों को जीत सकोगे। अपनी आत्मा का अपने उद्योग से उद्धार करो, ये सब परिस्थितियों में लागू होता है। हम उनकी सहायता इसलिए करते हैं जिससे वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें। जिस क्षण उन्हें अपनी अवस्था का ज्ञान हो जाएगा और वे सहायता तथा उन्नति की आवश्यकता को समझेंगे, तब जानना कि तुम्हारा प्रभाव पड़ रहा है एवं तुम ठीक रास्ते पर हो। किसान और श्रमिक समाज मरणासन्न अवस्था में है, इसलिए जिस चीज की आवश्यकता है वो ये है कि धनवान उन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सहायता दें। फिर किसानों और मजदूरों को अपनी समस्या का सामना और समाधान स्वयं करने दो।
0: सभी अच्छे काम करने के लिए समाज सुधार करने में रक्त लगता है। संपूर्ण भारत को शिक्षित करने में सदियां बीत जाएंगी, पर यही एक रास्ता है।
1: अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है, काफी लंबा समय लगता है, और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी। कहां हैं वे लोग जो सुधार चाहते हैं? पहले उन्हें तैयार करो। सुधार चाहने वाले लोग हैं कहां? इन अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अत्याचार के समान दुनिया में कोई और अत्याचार नहीं। मुट्ठी भर लोग जो सोचते हैं कि कुछ बातें दोषपूर्ण हैं, राष्ट्र को गतिशील नहीं कर सकते। राष्ट्र में आज प्रगति क्यों नहीं है? क्यों वो जड़ भावापन्न है? पहले राष्ट्र को शिक्षित करो, अपनी निजी विधायक संस्थाएं बनाओ, फिर तो कानून आप ही आ जाएंगे। जिस शक्ति के बल से, जिसके अनुमोदन से कानून का गठन होगा, पहले उसकी सृष्टि करो। आज राजा नहीं रहे, जिस नई शक्ति से, जिस नए दल की सम्मति से नई व्यवस्था गठित होगी, वो लोक शक्ति कहां है? पहले उसी लोक शक्ति को संगठित करो। अतएव समाज सुधार के लिए भी प्रथम कर्तव्य है लोगों को शिक्षित करना, और जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता, तब तक प्रतीक्षा करनी ही होगी।
2: जनता को किताबी शिक्षा नहीं, जीवन निर्मात्री शिक्षा देनी होगी, जिससे भारत एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उठ खड़ा हो सके।
1: लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा ना दी जाए, तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए, नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं कि अंतर्द्वंद होने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर पचा ना सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें और मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को पचाकर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है। इसलिए हमारा आदर्श यह होना चाहिए, कि अपने देश की समग्र शिक्षा का भार अपने हाथों में लेने और जहां तक संभव हो राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का विस्तार करें।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
0: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। रात्रि के 10 बजने वाले हैं, अब हमारी ये सभा समापन की ओर है। तो चलते चलते हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी 3 जुलाई शुक्रवार को आप हमारी सुबह की सभा में कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह जब हमारी सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनिएगा हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 का वक्त होता है श्रोताओं कार्यक्रम वतन का राग का। कल यूसुफ मेहर अली पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम। सुबह 8:30 सुनिएगा आमने सामने। कल इस कार्यक्रम में बघेलखंड लोक गायकी पर चर्चा की है मनीषा चतुर्वेदी ने लोक गायक शशि कुमार पांडे से। सुबह 9 सुनिएगा वागर्थ कार्यक्रम। कल इस कार्यक्रम का विषय है वर्तमान परिदृश्य और धर्मपाल। विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर उर्मिला शिरीष। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम जो की आधारित होगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर। सुबह 10 नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी सुनिएगा कार्यक्रम परिक्रमा में। 10:30 का वक्त होगा हिंदोस्तान हमारा कार्यक्रम का। कल ये कार्यक्रम आधारित होगा झलकारी बाई पर। दिन में 11 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। श्रोताओं कल इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं हबीब तनवीर को। दिन में 11:30 सुनिएगा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से हमारी कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए और दीजिए इस सभा से अनुमति पूर्वक हले को नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।